छलका ये जाम रफ़ी साहब की आवाज़ में आपने आपके आपको हम सुनाए हैं इस तरह से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए देखते हैं ये गीत फिल्म दिल ही तो है का एक बार फिर। कौन जाने अब की नाकूद है, लेकिन कोई और गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। इस तरह से आ रहा है

तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, हमने पेश की वही फिल्म दिल ही तो है में से निकाल कर। अब की बार तो इन्होंने नहीं कूदा। बहरहाल आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चुन किए मीटर पर, आप सबका हृदय से स्वागत है। चलिए आप सबका स्वागत करते हुए हम पेश कर रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

आई शुरू मेरा वतन जापान लता जी आपको सुनाए हैं और कार्यक्रम में हमने चलाए हैं। आप सबका स्वागत है जो लोग चून की मीटर पर। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुना रहे हैं ये गीत इस तरह से, बस ध्यान दे के सुनिए।

कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। मैं थी मुकेश, द हार्ट थ्रब ऑफ मिलियंस, आपको सुनाइए ये शानदार गीत, जबकि आप भी सुन रहे हैं और मैं भी चला रहा हूँ, आप सबका हृदय से स्वागत है। आप सबका स्वागत करते हुए तो सुनिए, मैं आपको ये सुना रहा हूँ इस तरह से, लता जी है, जी हाँ लता जी है, फिक्टोरिया 2003।

थोड़ा सा ठहरो लता जी की आवाज़ में पेश किया गया फौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, क्या ख्याल है अगर साथ साथ चलने के वादा की जाए तो इस तरह से।

न थो छोड़ेंगे दामन तुम्हारा वहाँ तक। ये शानदार गीत चला हमने पेश की रवि साहब आशा जी की आवाज़ में, और उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ख्याल है, प्रेम प्यार मोहब्बत में तो लोग बहुत वादे करते हैं लेकिन कभी निपता है कभी नहीं। लेकिन चलिए सुनते हैं कि एवरग्रीन किशोर कुमार क्या कह रहा है इसके बारे में।

शायद होगा जो, शायद कोई होगा जो ये फिल्म नहीं देखे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 95% लोग ये फिल्म अवश्य देखे होंगे। गीत में तो आपने नाम सुने, जूली, जूली फिल्म का नाम है, राजेश रोशन के साज पर फिल्म जूली में से निकाले हैं, एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं। चलिए कार्यक्रम बढ़ाते हुए, तो क्या ख्याल है अगर आपको ये गीत सुनाऊं, इसे सुनिए, क्योंकि ये गीत बहुत नहीं चलता है और ये गायक का गीत बहुत भी नहीं चलता है, लेकिन आप तो आज तो हम आपको अवश्य सुनाएंगे, बस अंदाज़ा लगाइए आवाज़ किसकी है।

जी हाँ, आशा जी, आशा जी के साथ कौन था आप अंदाज़ा लगाए होंगे, सुबीर सेन। जी हाँ, सुबीर सेन की आवाज़ में ये गीत था। आशा जी के साथ एस महेंद्र के साज पर हमने पेश की फौन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, और वो है क्या ख्याल है, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये शानदार गीत और हमने पेश की बस फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में जब भी जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। तो अगर आप भी हैं मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है अगर ये चलाया जाए

बस शारदा जी, बहुत देर न समुचिए वरना पासा पलट ना जाए कहीं। बहरहाल फिर भी आपको सुनाएं शारदा जी के साथ ये शानदार गीत हम पेश किए। तो अगला गीत, ये गीत भी बहुत दिन हुए होंगे शायद आपने नहीं सुने, तो चलिए हम आपको सुनाते हैं। कार्यक्रम में यशुदास।

फिल्म चितचोर में से निकाले हैं येसुदास जी, येसुदास जी आपको सुनाए हैं ये कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है रफ़ी साहेब सुमन कल्याणपुर जी। हाँ, रफ़ी साहेब सुमन कल्याणपुर, बस क्या ख्याल है, फिल्म फिल्म फिल्म फिल्म चांद और

रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर, ये दोनों मिल के आपको ये शानदार द्विवेद सुनाए हैं। चलिए घड़ी पर देखूँ जी, हाँ अभी थोड़ी समय बाकी है तो हम पेश करते हैं ये गीत। ये गीत भी बहुत दिन हुए होंगे शायद आपने नहीं सुने, अगर हालिम सुने होंगे

तो आपने तो सुन ही चुके हैं कि प्यार की कभी कोई हार नहीं होती है। एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए ये कार्यक्रम में।

उम्र के भी हज़ारों को याद आएंगे, उम्र के भी हज़ारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों के सेवा में विजयंती का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नए मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को हम बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं, हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं, हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस साल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं, और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में यानी 12 बजे तक मैं आप सभी की सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी।

बेताब से भी आप सुन रहे थे ये सुंदर सा गीत। और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो एक भजन है, और ये भजन हम पेश करते हैं आप सभी सुनने वालों के लिए और सभी दुखी प्राणियों के लिए।

जिस सुंदर शब्द जिन हमने पेश किए हैं आप मैं तो एक ख्वाब हूँ इस ख्वाब से तू प्यार न कर। मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी हिमालय की गोद में।

मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी हिमालय की गोद में। किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं, तुम बिन जाऊँ कहाँ।

मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे तुम बिन जाऊँ कहाँ कि दुनिया में आके कुछ ना फिर चाह सम कभी तुमको चाह के अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों लता जी की आवाज़ में आप सुनेंगे इस बार और फिल्म का नाम है कति पतंग गीत का बोल है न कोई उमंग है न कोई तरंग है मेरी जिंदगी है क्या एक कति पतंग है

0: घंटी के आइकन पर मेरे आने वाले।
1: अभी आप सुन रहे थे ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या इकती पतंग है। उपहार है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं माझी नैया ढूंढे किनारा।

अभी आप सुन रहे थे माझी नैया ढूंढे किनारा। मुकेश जी की आवाज़ में हमने ये गीत पेश किए हैं। फ्रॉम द मूवी उपहार से आपने सुने हैं। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पर आप सभी ने चुन किए हैं सुनने वालों, और मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं। जो उनकी तमन्ना हो बर्बाद हो जाए।

अभी आप सुन रहे थे जो उनकी तमन्ना हो बर्बाद हो जा। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, और मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। एक बहुत सा सुंदर गीत हमने चुन कर रखे हैं आप सभी के वास्ते। लेकिन ये गीत शुरुआत करने से पहले मैं ज़रा आप लोगों को बता दूं कि आधे घंटे तक लगातार हमने कुछ सेंटीमेंटल सॉन्ग्स आप सभी के वास्ते पेश किए हैं, और अब कुछ बदलाव हम लाने वाले हैं प्रोग्राम में। तो चलिए ये गीत हो जाए आप सभी के वास्ते।

अभी आप सुन रहे थे अरे आने वाले आ तू देर ना लगा, और फिल्म का नाम है कहीं और चल। लता जी आपको सुनाने वाले थे। एक फूल दो माली से हम पेश करते हैं सुनने वालों, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर।

एक फूल दो माली से भी आप सुन रहे थे सुनने वालों, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, हो गए तेरे हो गए ये ना पूछो कब क्यों और कहाँ। फ्रॉम द मूवी यानी द टाइटल फ्रॉम द मूवी कब क्यों और कहाँ से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। चलिए मिलकर सुनते हैं प्रोग्राम में

अभी आप सुन रहे थे हो गए तेरे हो गए प्यार में तेरे खो गए ये ना पूछो कब क्यों और कहां। द टाइटल फ्रॉम द मूवी कब क्यों और कहां से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते लता मंगेशकर जी आपको सुनाने वाले थे। रुक जा ए हवा फ्रॉम द मूवी शागिर्द से हम पेश करते हैं।

रुक जा ए हवा, थम जा ए बहार, भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। और ज़रा सा हम देखे तो सीता और गीता, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं एक और गीत है ये, जिसमें कुछ हवा की बातें आती है। तो चलिए मिलकर सुनते हैं

0: अभी आप सुन रहे थे हवा के साथ साथ घटा के संग संग और साथ ही चलो। घड़ी की ओर जबकि हम देखते हैं तो ठीक यानी समय हो चला है विज्ञापन का, तो चलिए मिलकर सुनते हैं विज्ञापन।
1: Destiny Events presents Unforgettable Melodies of Bollywood Nagme with all renowned artists from Mumbai. Sarigama Pa winner Ishita Vishwakarma.
0: Farar hai film ka naam aur इसी फिल्म से हम पेश करते हैं जिंदगी क्या है यारों की बारात।

फ्रॉम द मूवी फरार से हमने पेश किए है द माइटी मुकेश जी की आवाज में जिंदगी क्या है यारों की बारात सहमों की बारात। एक हसरत थी कि आ चल का मुझे प्यार मिले

एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले। अभी आप सुन रहे थे द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी जिंदगी और तूफान। सुनने वालों, एक बार फिर से फिल्म फरार से हम पेश करते हैं एक बहुत सा सुंदर गीत है, ये संसार है एक नदिया। क्षमा करना सुनने वालों, यानी फरार नहीं, रफ्तार है फिल्म का नाम। चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे संसार है एक नदिया फ्रॉम द मूवी रफ्तार से हमने पेश की है मुकेश जी की आवाज में। सुनने वालों, बोल रे कठपुतली डोरी कौन संग बांधी, लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी कठपुतली से हम पेश करते हैं।

बोल रे कठपुतली डोरी कौन संग बांधी, फ्रॉम द मूवी कठपुतली से हमने पेश किया है। लता जी आपको सुनाने वाले थे। सुनने वालों, तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की कोई मेरा हो गया। लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी उजाला से। चलिए मिलकर सुनते हैं।

तेरा जलवा जिसने देखा हो तेरा हो गया। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी उजाला से हमने पेश किया है, सुनने वालों लता जी आपको सुनाने वाले थे। दिन सारा गुजारा तोरे अंगना, फ्रॉम द मूवी जंगली से आप सुनेंगे लता जी के साथ में, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।

दिन सारा गुजारा दोरे अंगना। अभी आप सुन रहे थे लता गीजी के साथ में, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी जंगली से हमने पेश किए हैं। सुनने वालों आ तू आ जरा दिल में आ, फ्रॉम द मूवी फूलों की सेज से हम पेश करते हैं। लता जी के साथ में मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं।

फूलों की से छह फिल्म का नाम इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। लता जी के साथ में मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे आ तू आ जरा दिल में आ। अय्या सुकू सुकू

जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है, कहानी ना समझो। अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा।

अय्या करूँ मैं क्या, सुकु सुकु अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, फ्रॉम द मूवी जंगली से हमने पेश किए हैं, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला ना करो तुम सज धज के। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी राजकुमार से हम पेश करते हैं सुनने वालों, और ये गीत खास करके मांग की ये है मून जी बोध जी, अपनी प्यारी प्यारी प्रीतमा माला जी के वास्ते बहुत बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ।

सर अपना ये प्यार मोहब्बत

यदि हम एक सरल विचार याद रखें तो जीवन अधिक खुशहाल और तनाव मुक्त हो सकता है। हमें वो सब कुछ नहीं मिल सकता जो हम चाहते हैं, लेकिन हमें वो सब कुछ मिलेगा जिसके हम हकदार हैं। फिर हम इस पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं मित्रों? विश्वास क्यों नहीं करते हैं? और हम दूसरों से बहुत ही चतुर और अनुचित तरीके से दूसरों से लेने की राह पर बढ़ते जा रहे हैं, जिससे दूसरों को दुख और दर्द महसूस हो रहा है। भाई बहनों, ये याद रखना कि जो आपने बोया है आपको उसकी कटाई करनी होगी, और ये बात हर किसी पर लागू होती है, हर किसी पर लागू होती है, ये मत भूलें।

दोस्तों, मोमबत्तियों की ऊंचाई अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो एक जैसी चमक देती है। ये आपकी पद नहीं है, लेकिन गर्माहट आती है जो आपको चमकाती है। मित्रों, पद खो सकता है, लेकिन आपका ज्ञान और योग्यता नहीं खो सकती है, और कोई भी इसे आपसे छीन नहीं सकता है, नहीं छीन सकता है। मित्रों,

भाई बहनों, दो पल की जिंदगी के दो नियम याद रखना। दो नियम। पहला, किसी को प्यार देना सबसे बड़ा उपहार है, और दूसरी बात, किसी का प्यार पाना सबसे बड़ा सम्मान है। और कृपया ध्यान दें मित्रों कि क्रोध में किसी को कुछ शिकायत कर देना विचार करनी योग्य है, विचार करनी योग्य है। बेहतर होगा कि चिंता करने से आज का दर्द दूर नहीं होता, ये आज की शांति छीन लेता है। तो चिंता क्यों करे जब चिंता से आपकी जीवन बेहतर नहीं हो सकती है, नरक बन सकते हैं, तो चिंता क्यों करे। चिंता से बहुत बीमारी उत्पन्न होते हैं आपके शरीर में, तो जरा संभल के रहे मित्रों, संभल के रहे।

है बहनों, हर कोई अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन हर कोई में कुछ अच्छा है। हर कोई कभी भी हर किसी के लिए एक निश्चित छवि नहीं रखना है, क्योंकि लोग अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं। इसीलिए आपको कभी भी किसी के बारे में पहले बुरा नहीं सोच लेना चाहिए। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं मित्रों, बुरा नहीं सोचते हैं दूसरों के बारे में, तो आप एक अच्छे इंसान हैं और आप खुद भी एक अच्छा काम कर रहे हैं, ये मत भूलें।

और नई सुबह का नया नजराना, ठंडी हवा लेके आए पैगाम हमारा। जागो उठो तैयार हो जाओ, जागो उठो तैयार हो जाओ, खुशियों से भरे रहे आज का दिन तुम्हारा। सभी सुनने वालों को एक बार फिर राम राम, नमस्ते। धर्म करम फावन हिंदुस्तानी के सुबह के भजन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। फावन के फूल टीम की ओर से आप सभी को एक शुभ दिन प्रकट।

ओम नमः शिवाय। ये धर्म कर्म का प्रोग्राम जो चल रहा है, अगर आप इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हो तो कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 से 5 तक, दिल्ली से 5 to 8 to 8, फिर से 5 पर आपको तार करना है।

श्री कोडन श्याम इस प्यासी अखियन प्यासी रे। दादा हेमंत कुमार के मीठी आवाज में अभी ये सुंदर सा भजन आपने सुना। माइटी मुकेश तैयार हो गया है, वो भी एक भजन फरमाएंगे आप सभी के लिए। और फाहुन के टीम की ओर से आप सभी को एक शुभ दिन प्रगत हो। जो भी करना है सोच समझ कर कीजिए। अगर आप नौकरी का तैयारियां कर रहे होगे तो आराम से कीजिए, और अगर आप नौकरी का शुरुआत कर लिए होगे तो वो भी प्रेम और प्यार से होना चाहिए। दोस्तों, जहाँ पर प्रेम और प्यार नहीं वहाँ पर कुछ नहीं है दुनिया में।

एक मात स्वामी कथा मुकेश जी के आवाज में भी आप इस भजन को सुना। दादा हेमंत कुमार के आवाज में एक दूसरा भजन में तैयार करके रखा हूँ दोस्तों, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर देरे जोड़ी। ये माफ कीजिए दादाजी नहीं है लेकिन मशहूर गायक प्रदीप कुमार, और ये पुरानी काफी पुराना भजन है। हम सब मिलके इस भजन को सुनेंगे।

मेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर धीरे झोली तूने रात गवाई सो के माइटी मुकेश के ये भजन है। और ये भजन जो मैं अभी आपके लिए पेश करूंगा ये फिल्म में नहीं आया है दोस्तों, ये एक नॉन फिल्म भजन है और काफ़ी पुराना भजन भी ये है। और ये भजन अगर आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि वाह, ये भजन तो बीते हुए दिनों में हम सब हमेशा सुनते थे। मुकेश जी की आवाज़ में ये भजन सुनेंगे।

क्या भजन था मुकेश जी की आवाज़ में, हम सब मिल के भजन को सुना। फाहन हिंदुस्तान रेडियो की सुबह के भजन कार्यक्रम धर्म करम आप सुन रहे हैं। मैं गवालो रखवालो मैया माता जी का भजन है, और ये भजन राफी साहेब पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी के आवाज़ में आप सुनेंगे।

कृष्ण भजन अभी आपने सुना राफी साहब के आवाज में। धर्म कर्म प्रोग्राम में आपके बाहर एक ओल्ड गोल्डन सॉन्ग है, ये पुराना बहुत काफी पुराना नहीं फिर भी, किशोरदास हसीनों का पुजारी किशोर कुमार के आवाज में, किशोर कुमार और साथियों के आवाज में ये भजन आप सुनेंगे।

फिल्मी भजन भक्त प्रेमियों के लिए मैं पेश करता हूँ। वैसे तो बहुत से लोग हैं जो भक्ति नहीं करता, फिर भी भजन से बहुत संबंध रखता है। हमेशा सुबह सुबह भजन सुनते हैं और कभी कभी जब मौका लग जाता है तो फिर भी भजन सुनते रहते हैं, वो भी अच्छा बात है। भजन सुनने से दिल साफ रहता है, दिल में चैन आता है। काल का पहिया या लाल का पहिया घूमे भैया, राम कृष्ण हरी मना दे, दादाजी की आवाज़ में।

भूल न पापी मगर पाप के, भूल न पापी मगर पाप के, ज्यादा नहीं दुकान चले, रामकृष्ण हरे रामकृष्ण हरे। अब की बार ओ जग के पालन हारे, लता दीदी के आवाज में।

उज्जक के पालनहार के बाद ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे वंस अगेन लता दीदी के मीठी आवाज में ये भजन आप सुनेंगे। धर्म कर्म फाहो हिंदुस्तान रेडियो के सुबह के भजन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। अगर आप ये भजन कार्यक्रम स्पॉन्सर करना चाहते हो तो तार कीजिए 0 से 5 2 2 फिर सिर्फ

0: ओ पालनहारे फिल्मी भजन अभी आप सुन रहे थे धर्मक्रम फाउन इंसानी जो कि सुबह के भजन के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।
1: हर काम के लिए हर अपर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl।

का हैप्पी स्टेशन फा हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। लगभग एक घंटे तक आप सुनेंगे तेरे होतों के फूल। आप जानते हैं दोस्तों, जब प्यार मोहब्बत होता है तो नजर पड़ता है आँख पर और आँख के बाद तुरंत होठ पर। जी हाँ, ये प्यार मोहब्बत की कहानी है। फिर भी जब होत है दोस्तों तो फूलों की तरह तो हमेशा रहता है, और यही होत तो अच्छी बात करते हैं, कभी कभी बुरे बात पर। कोई बात नहीं, होत तो होत होते हैं। तेरे होठों के फूल जो है प्यारी प्यारी।

तेरे होठों से तेरे होठों के फूल प्यारी प्यारी। क्या बात है दोस्तों, ये होठों की कहानी लगभग एक घंटे तक मैं पेश करूँगा। तेरे होठों के तेरे लाली को, तेरे होठों को तेरे लाली को, तेरे जोन को घरियाली को, माइटी मुकेश की आवाज़ में आप सुनेंगे।

तेरे होठों को तेरे लाली को, तेरे होठों को तेरे लाली को, ये नासुक नासुक होठों में कैसी बात है, ऐसी बात है जो जो दबाए के चले आए।

हो तुम्हें ऐसी बात जो दुहाई है दुहाई, होत होत होत तेरे होठों के फूल आप सुने हैं आपकी हैप्पी सीजन फा होने निस्ताई दे रही हूँ राजन के साथ। अब की बार होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर लो। ये होठों से छूने वाला बात जो है दोस्तों ये सिर्फ नहीं संगीत में होना चाहिए, हकीकत में भी जब दो होठ आपस में मिल जाता है तो क्या मज़ा रहता है। जगजीत सिंह की आवाज़ में

तेरे होठों के फूल, तेरे होठों के फूल, होठों पे बस, होठों पे बस तेरी नाम है। जिस तरह से एक एक सोट एक हेम्थ का क्लोप खाद जो है उसमें सिर्फ एक बटन जाते हैं, उसी तरह से ये होठ जो है सिर्फ तेरी ही नाम लेते हैं, एक दूसरा नाम का मौका नहीं है।

मेरे प्यार में, तेरे प्यार में पागल हो सुबह शाम, होठों पे तो सिर्फ तेरी नाम है, दूसरा नाम कहाँ से आ सकते हैं। होठों डो होठ खिले, डो होठ हिले, एक गीत सुना। तेरे होठों के फूल

जबडो होते हिलते हैं तो न सिर्फ गीत का आवाज आते हैं, एक दूसरा आवाज भी अंदर से आते हैं दोस्तों। आपकी बार तेरे मेरे होठों पे, तेरे मेरी होठों पे मीठी मीठी गीत मिटवा।

तेरे होठों के फूल, तेरे होठों के फूल आप सुने हैं। अगर आप, अगर आपका ख्वाहिश है, अगर आपका ख्वाहिश है हो चुमने को लिए, तो आप ये गीत सुनने के बाद कीजिए, अभी मत, थोड़ा से रुक जाइए।

ख्वाहिशें क्या ख्वाहिश है, हर पल मेरे होठों पर, हर पल मेरे होठों पर सिर्फ तेरी नाम है, क्या ये मेरी प्रेम की कहानी है।

होठों को तारीफ करते करते मुझे डर है कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को नजर न लग जाए। हो सकता है

न करो तो आईना कहीं खुद का नजर न लग जाए, वो भी हो सकता है। सरा संभाल के ये प्यार मोहब्बत कहानी आप अभी सुन रहे थे फाहन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए।

आप ही का हैप्पी स्टेशन 5 हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। काम जो आपको रेडियो के से लेकर आना है, कांटेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 7 5 2 8 4 0 या 9 7 3 7 2 0 0 पर आप तार कीजिए। तारकरण में दोहराता हूँ, अपन अखेंडा में लिख कर रख लीजिए आज नहीं तो कल के लिए 0 7 5 2 8 4 0 या 0 7 3 7 2 0 0 तारकरण नंबर है। शान दोस्तों, शान एक गायक है लेकिन शान को एक बैंड का एक ग्रुप भी है, एक म्यूजिक ग्रुप है दोस्तों, और उसी म्यूजिक ग्रुप के आवाज़ में आप म्यूजिक सुनेंगे और शान के गला से आप ये गीत को सुनेंगे।

शान, मिस्टर शान की मीठी आवाज में अभी आपने सॉन्ग को सुना, फावन हिंसानी दुबाप चुन है दोस्तों, उदित नारायण। उदित नारायण आपको फरमाएंगे कि हवाओं ने ये कहा, और जैसे आप सभी को मालूम है कि हवा भी आवाज़ देता है दोस्तों, लेकिन कहता है हवा वो मुझे मालूम नहीं है। आशा रखता हूँ कि आपको ये गीत सुनकर पता लग जाएगा कि हवा कहता है और हवा ने क्या कहा, आपको खुद मालूम हो जाएगा। आप खुद सुनिए दिल और जान से।

उदित नारायण पद्मश्री, उदित नारायण के मीठे आवाज में भी आप ये गीत को सुना। दोस्तों, जानू मेरी जान, तू मेरा मैं तेरा, या तू मेरी मैं तेरा, जाने सारा हॉलांत। दोस्तों, ये फिल्म शान का सॉन्ग है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन काम किया है परवीन बाबी के साथ। आप सभी को मालूम है कि दोनों में प्यार मोहब्बत था, फिर भी परवीन बाबी जो है वो डिप्रेसिव हो गया था, और जब डिप्रेसिव हुआ तब कई लोग के बारे में अनबन कहा, और कहा कि भारत की सरकार जो है उन्हें भी फॉर द रेक्टर एडाक किया था, उसका मूड खराब हो गया था। सो लेकिन उसी समय पे एक पार्टी पे परवीन बाबी ने गया, और अमिताभ बच्चन उसी समय पर सुपरस्टार चुना गया। तो परवीन बाबी से सवाल किया गया कि आप क्या ये बात से सही है कि अमिताभ बच्चन सुपरस्टार चुना गया? तो परवीन बाबी ने कहा, अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार नहीं है, सुपरस्टार का पद अगर देना है तो धर्मेंद्र को दीजिए, देवानंद को दीजिए, ऋषि कपूर वगैरह का नाम लिया तो उसके तीखन अमदद प्यार मोहब्बत अब नहीं था, और डिप्रेसिव हो गया था। ठीक से देखा जाए तो उसको आप भी नाराजी नहीं मान सकते, इस बात पर कोलक नहीं ले सकते हैं, वो नहीं जानते थे वो क्या कहते। फिर भी जो इसके दिल में आया वो कहा, जानू मेरी जान। ये दोनों लॉफर्स दोस्तों, परवीन बाबू बाबी और साथ ही साथ अमिताभ, दोनों का फिल्म शान का सॉन्ग।

प्रेमी अमिताभ बच्चन परवीन बाबी का फिल्म शान का सॉन्ग अभी आपने प्रोग्राम में सुना। उदित नारायण एक बार फिर प्रोग्राम में, लेकिन उदित नारायण के साथ रहेगा विनोद राठौर और साथ ही साथ अलका याग्निक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक पर। और ये गीत आनंद बख्शी ने लिखा है। दोस्तों आप जानते हैं, एक गीत जब तैयार होता है तो गीत का लिखार कोई होता है, जो लिखता है गीत को स्क्राइफर, वो भी एक कलाकार है, लेकिन लोग उसका नाम नहीं लेते हैं। जब एक गीत नहीं लिखा जाता तो उदित नारायण अलका वगैरह वगैरह लोग गीत कैसे गाते, तो एक स्क्राइफर का तालीफ किया जाहिर किए करने को, इसलिए कि एक स्क्राइफर जो है वो बैठ कर दिन रात सोचते हैं क्या लिखूँ और जाकर गीत बनाते हैं। और एक गायक गीत को गा लेता है, बढ़िया आवाज़ है तो गा लेता है। फिर भी आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत है तेरे बिना दिल।

बिन दिल लगता नहीं मेरी जान, वाह वाह क्या बात है दोस्तों। अगर दिल लगाना है तो एक जगह पर दिल लगा लीजिए, दो जगह दिल लगाएंगे तो आगे चलकर पछताना पड़ेगा। आदमी है जो चार जगह दिल लगाता है वो भी होता है, हो सकता है भी। दोस्तों राजकुमार एक एक्टर था, जब वो कुछ कहते थे तो लोग ध्यान से सुनते थे कि अब क्या बोली। तो फिल्म मॉडल इंडिया जब बना, बहुत पॉपुलर हो गया राजकुमार, उसके बाद चारों बगल से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट आने लगा। तो एक रात एक शाम के बात है, जब वो अपने दोस्त प्रकाश अरोरा और उनके पत्नी के साथ इवनिंग ड्राइव पर निकले थे। इस दौरान वो एक पान स्टोर पे रुके, उसी समय वहाँ कुछ लोग आए, और जब वहाँ पर लोग आए तो राजकुमार को परेशान करने लगे। कुछ देर तो राजकुमार बर्दाश्त करते करते रह गए, फिर भी जब बात उन्हें सहन शक्ति से भर गए तो उन्हीं ने बात या पलट कर जवाब देने लगा। आप जानते हैं राजकुमार का मुंह जो है वैसे सबसे मोच कफाला, तो वो जवाब देने लगा, फिर लड़ाई हुई। लड़ाई का शुरुआत हो गया दोस्तों, और एक शख्स ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दुख के बात है दोस्तों, लड़ाई के समय और किसी ने नहीं देखा कि वो शख्स जो मर गया उन्हें किसी ने मारा, राजकुमार ने मारा या उसके दोस्तों ने, लेकिन वो शख्स दुनिया को छोड़ चल गए। और एक साल तक मामला चलता रहा, राजकुमार का प्रॉब्लम था एक साल तक, और काम नहीं कर सकता था। फिर भी ये बात जज के सामने पेश किया गया और राजकुमार को फ्री हो गया। राजकुमार को कहा गया कि आपने काम नहीं किया, फ्री हो गया। मैं नहीं जानता राजकुमार किया या नहीं किया, फर्दाख्त था। और आप जानते हैं फिर भी उन दिनों के बात है या इन दिनों के बात है, जब लोग पॉपुलर होते थे तो उन्हें बहुत कम सज़ा भी मिलते थे। तो उसके बाद राजकुमार को यहाँ से फिर कॉन्ट्रैक्ट मिलने के शुरुआत हो गया। आप जानते हैं 3 जुलाई 1996 तक के बात है, जब राजकुमार का मृत्यु हो गया था मुंबई में। तो फिल्म हमराज का सॉन्ग है, राजकुमार और सिमी दोनों के आवाज, दोनों फिल्म में काम किया। और ये गीत महेंद्र कपूर, पद्मश्री महेंद्र कपूर के आवाज़ में आप सुन

नीले गगन के तले धरती पर पाँव पड़े राजकुमार के बारे में मैंने कहा भी दोस्तों, और अब की बार एक सॉन्ग मैं तैयार करके रखा हूँ, फिल्म चलते चलते का सॉन्ग है, अभिजीत एंड अलका दोनों के मीठी आवाज़ में आप सुनेंगे शाहरुख खान एंड रानी मुखर्जी का फिल्म चलते चलते का सॉन्ग।

तौबा ये नसारे, तौबा नसार के बाद लाखों है यहाँ दिलवाले, फिर प्यार नहीं मिलता। कैसा बात है दोस्तों, लाखों है दिलवाले फिर प्यार नहीं मिलता। हाथ में फूल ले लो, देखो कैसे प्यार मिल जाएगा। फिल्म किस्मत का शौक है, विश्वजीत बबीता फिल्म में काम किया दोस्तों। विश्वजीत एक न सिर्फ एक एक्टर था, लेकिन अभी तो जियत है, मैंने कहा उनका एक्ट के समय पर, न सिर्फ एक एक्टर था लेकिन एक प्लेबैक सिंगर था दोस्तों। कई गाना वो गाए हैं, हॉलैंड देश में शो दिया है, सूरीनाम में भी शो दिया है। तो विश्वजीत का फिल्म किस्मत का सॉन्ग है, जो निकटिंग आख्तन शास्त्र में फिल्म जो रिलीज हुआ, और महेंद्र कपूर पद्मश्री महेंद्र कपूर के आवाज़ में आप सुनेंगे। लाखों है यहाँ दिलवाले फिर प्यार नहीं मिलता।

डुएट सॉन्ग का बात जब हुआ दोस्तों, तो कुमार सानू आलका के साथ सबसे ज़्यादा डुएट पेश किया है या गाए है, और सभी डुएट में से एक डुएट है आज पहली बार दिल के बात की है। एल्बम तड़ी पार का सॉन्ग है और हम सब मिलके सुनेंगे फिल्म तड़ी पार का सॉन्ग आज दिल के बात। आज पहली बार दिल के बात की है।

हम यार है तुम्हारे, यकीन कीजिए यकीन कीजिए, हम यार है तुम्हारा अगर यकीन नहीं है तो आप तार करके अभी बातचीत कर सकते हैं। यकीन के साथ दोस्तों, हम यार है तुम्हारे।

हम यार है तुम्हारे। यकीन कीजिए, यकीन के साथ मैं भी कहता हूँ कि हम यार है तुम्हारे। याद आ रहा है, तेरी याद आ रहा है दोस्तों, उन दिनों की बात है जब बप्पी लहरी ने कदम रखा था सॉन्ग वर्ल्ड में। तो मिथुन का फिल्म था डिस्को डांसर, इसी फिल्म का सॉन्ग है। और बात यह है कि उन दिनों में के बात है जब किशोर कुमार एक टॉप पे था दोस्तों। हर एक फिल्म में उसका गीत होता था, लेकिन किशोर कुमार मिथुन के लिए गीत नहीं गाना चाहता था। जो फिल्म में मिथुन काम करते थे उसमें किशोर कुमार कभी गाना नहीं गाना चाहते थे। बात यह था कि किशोर कुमार का औरत दोस्तों का बीबी जोगीता बली जो थी, उन्हें मिथुन हम खोल के हिंदुस्तानी बोली ला, यहाँ देखिए उसे फंसे है, ओके मिथुन भगा ले गया रहा। तो इसी कारण ना मिथुन के हर एक फिल्म जब निकलता था तो किशोर कुमार इनकार कर देते थे, उसका फिल्म में गाना नहीं पेश करते थे। फिर भी पपीदा, जी हाँ दोस्तों, पप्पी लहरी के नाम से हम ज़्यादा अभी उन्हें पुकारते थे, उन्हीं का सॉन्ग है, हम सब मिलकर सुनेंगे।

जा रहा है पपीरा बप्पी लहरी दोस्तों। बप्पी लहरी भी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी पाया और पप्पी लहरी जितेंद्रा का 12 हिट्स फिल्मों में भी गीत को पेश किया। सभी फिल्म से एक फिल्म था फिल्म हिम्मत वाला, हम सब मिलकर सुनेंगे। नैनों में सपना, किशोरदा, लता मंगेशकर और बप्पी, सभी के आवाज़ में आप सॉन्ग सुनेंगे।

संजना पे दिल आ गया फिल्म हिम्मत वाला। अभी जो सॉन्ग भी आपने सुना वो किशोर और लता का गीत था, लेकिन बप्पी लहरी इस फिल्म में भी प्लेबैक किया है। बप्पी लहरी जी हाँ दोस्तों, बप्पी लहरी को नहीं 1987 तक में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में इनका नाम आया, इसलिए कि एक साल के अंदर मेरदान होने तक तक फिल्म जी हाँ दोस्तों 180 से ज़्यादा गाना एक पेश किया है एक साल के अंडर में। मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग बप्पी लहरी के आवाज़ में एक सॉन्ग और हम सब मिलकर सुनेंगे।

इतना कमजोर मत बनो, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए।

मेरे नसीब में कोई नहीं। ये गीत दोस्तों जो मैं पेश करता हूँ, आप ये फिल्म जो देखे होंगे, हेमा मालिनी का फिल्म है और उन दिनों में टॉप एक टॉप एक्ट्रेस थी हेमा मालिनी। आप जानते हैं हेमा मालिनी का शादी नहीं हुआ लेकिन धर्मेंद्र से उनका शादी हुआ है।

Ja, Pika, heb je steeds een vaarhond in de stand radio op zo'n hippogram? Gito ka sangam, Rajan ke saad. Dunia me logo ko dhoka kabi ho jata hai. Mijn sosta ho, dunia me har ek insaan ko dhoka jo ek bar hoga. Ji ha, dosto, har ek insaan dhoka dunia me jo ek bar khaya hoga. To, R.D. Burman ka song hai, Rajesh Khanna Mumtaz film mein kaam kiya. Aur aap jante hai, superstar Rajesh Khanna. उन दिनों में एक रजेश खन्ना के अलावा एक दूसरा स्टार नहीं था जो इतना भीड़ भड़का से आपर फिल्म पेश करते थे. अब मुमताज जो कदम रखा फिल्मी दुनिया में तद्दारा सिंह के साथ वो काम करते थे, तो उसके बाद ये भी आगे बढ़ना चाहता, लेकिन बहुत से फिल्म प्रोड्यूसर्स इन्हें नहीं लेना चाहता था. सोचा था ये दारा सिंह के साथ फिल्म बनाते हैं, एक दूसरा अलहदा तरह के फिल्म है. फिर भी जब ये कदम रखा दोस्तों मुमताज, तो उन्हें आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते चला गया एक टॉप एक्ट्रेस भी थी उन दिनों में. रजेश खन्ना एंड मुमताज का फिल्म दुनिया का सॉन्ग है, दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता था.

ही बातों में होना है जो हो जाता है, आंखों ही आंखों में।

दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है दोस्तों, एक गायकी है ये है दोस्तों, वो गायक जो अपने मीठी आवाज़ों से फिल्मी दुनिया में हर एक लोग को पागल बनाया, जी हाँ पागल रखा, पागल बना के छोड़ा, वो थी लता दीदी। जब फिल्म वो कौन थी बना और ये गीत जब गाया लग जा गले फिर ये हंसी रात हो न हो, तो फिल्म प्रोड्यूसर ने कहा ये गीत अच्छा नहीं लगता है, फिर भी लोग के कहने पर ये गीत रख दिया इस फिल्म में और ये गीत जाकर एक हिट, ये सॉन्ग जो है लग जा गले एक प्राइज भी पाया इसी फिल्म में। हम सब मिल के सुनेंगे नाइटिंगेल लता मंगेशकर के आवाज़ में ये सॉन्ग।

लग जा गले के बाद दोस्तों फिल्म दीदारी यार, फिल्म दीदारी यार एक फिल्म जो जितेंद्रा ने खुद लिखा और उसमें काम किया ऋषि कपूर के साथ। जितेंद्रा ने राफी का सॉन्ग इस फिल्म में प्लेबैक किया और एक्ट किया और ऋषि कपूर किशोरदा का गाया हुआ गीत फिल्म में एक्ट किया। तो बात यह है दोस्तों, ये फिल्म बनाते बनाते बहुत दिन लग गया, फिर भी फिल्म के शुरुआत में जब बातचीत हुआ तो

रुपी चाहिए। तो जाकर जितेंद्र से कहा, जितेंद्र 20,000 रुपी दिया और जाकर किशोर कुमार को दे दिया, और फिर 20,000 दिया जाओ इन्हें राफी साहब के दो दे। तो राफी साहब के जो पैसा 20,000 लेके गया, तो राफी साहब ने पैसा देखा और 4,000 जेब में रख लिया, 16,000 फिर दे दिया मैनेजर को, जाओ जीतू को ये पैसा दे दो। तो वैसे तो जितेंद्र और राफी दोनों दोस्त थे, और वह उसी दिनों से लेकर जब तलुक राफी साहब जीवित था तब तलुक जितेंद्र और राफी एक बड़े दोस्त आपस में थे दोस्तों। और आप जानते किशोर कुमार के हरदम पैसा काम रहता, इसलिए कि उसका शादी 4 बार हुआ और राफी साहब को शादी, उसका शादी राफी का ब्याह तो सिर्फ दो बार हुआ, लेकिन किशोर चोई माल दे तो चाहता है एंगल चोई माल फिर दर्शन आँख दर्शन ले के मारू दिन तक दर्शन लेके जेब में रख लिया। उसी फिल्म का एक सॉन्ग मैं पेश करूँगा, फिल्म दीदारी यार का सॉन्ग है, किशोर कुमार एंड लता दोनों के आवाज़ों में आप सुनेंगे।

फिल्म धुरंधर से ये सुंदर सा गीत हमने सुने हैं, आज के प्रोग्राम में शामिल किया गया है अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में।

पीएस रावत, नहीं नहीं नहीं, म्यूजिक दिया है पीएस रावत और संगीत का लिखने वाला है शैतान सिंह। शैतान सिंह ये गीत लायरिक्स जो लिखे हैं और गायक है प्रकाश रावत, प्रकाश रावत जो रावर, जी हाँ, दिल में।

अच्छा लगता भी ऐसा नया संगीत सुनने के लिए, और ये सब सेलेक्ट किया है आपके लिए और पेश हो रहा है अभी का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।

0: वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। सुनने को
1: सारेगामा कारवां द परफेक्ट गिफ्ट
0: फॉर, सुनने के लिए बहुत उत्सुक रही आप भी। आपने फोन करके और कहा तो यहाँ से आपके लिए भी पेश हो रहा है।

धुरंधर फिल्म धुरंधर से रणवीर इसमें अपना कला दिखाए हैं। इस बार सुनेंगे सैयारा से।

इस बार है ये आंखें गीत का बोल है।

ये आंखें ये आंखें गाकर सुना दी हमको शाहिद मालिया। शाहिद मालिया के आवाज़ में ये सुंदर गीत हमने श्रवण की है और गीत का लेखक जो है शिल्पा अग्रवाल, शिल्पा अग्रवाल ये लायरिक्स जो लिखे हैं भी सुंदर लगता है सुनने के लिए ये नए गाने जो हैं। इसमें अपना रंग है, अपना चमक है। समय रुकने वाला नहीं है, जो रुक जाओगे तो पछड़ जाओगे, अंतविकलंग में पीछे रह जाओगे, पर समय तो जाएगा, तो वक्त के साथ चलना है, यही समझदारी है।

जीते हो किसी ने देश तो किया, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज़ के लिए इस दुनिया में सहमों और दिलों को सीता है। सुनने वालों की सेवा में सादर सा प्रेम नमस्ते आदाब राम राम सत श्री अकाल। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है VVV फाउन FM पर, वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर। घड़ी पर देखा जाए तो करीबन 2 मिनट व्यतीत हो चला है, 12:02 ऊपर 12, और ये लाइव कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है देन हाफ शहर से। जो बीमारे लाचारे तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है, जिनके घर में कोई शादी हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयाँ पेश है। मुझसे पहले कार्यक्रम पेश कर रही थी शांता जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं

के तरफ से और मैं अपने तरफ से आपको भी एक शुभ शाम पेश कर रहा हूँ। शांता जी बहुत बहुत धन्यवाद। आहिस्ता घर जाइए। सौंदरदाह है यहाँ बृहस्पतिवार 4 जून है और आप तत्पर है। जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आप दुनिया के जो भी कोने में होंगे, आपका हृदय से स्वागत करते हुए। आप लैपटॉप से सुन रहे हैं, रेडियो से सुन रहे होंगे, इंटरनेट द्वारा कोई भी यंत्र से आप सुन रहे होंगे, आपको हृदय से स्वागत कर रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो यहाँ पर देन हाँ शेयर से। जैसे मैंने कहा दौंदरदा फिर यून है, 4 जून है और आप तत्पर हैं। मैं रहूँगा करीबन 3 बजे तक और 3 बजे के बाद हमारे सभी सहयोगियों मिलके आपकी सेवा में रहे। तो लीजिए पहला सिलेक्शन हम पेश कर रहे हैं, इस तरह से आ रहा है।

शोला उल फुत का भड़का दे, ये शानदार गीत चला है रफ़ी साहब की आवाज़ में। और आशा जी फिल्म औरत में से निकाले हैं निकिती सैफ ने सस्तख। जी हाँ, निकिती सैफ ने सस्तख का ये फिल्म है और हमने पेश की ओवर पावन हिंदुस्तानी रेडियो शाम के कार्यक्रम, जबकि आप भी सुन रहे हैं, मैं भी यहाँ बैठा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते हैं भैया चांद रघुनाथ मुझे वेलकम कह रहा है। भैया चांद रघुनाथ आपको भी मैं बहुत वेलकम कह रहा हूँ, आपको एक शुभ शाम पेश किया जा रहा है। और धन्यवाद। और खिसला जी को भी, भैया चांद रघुनाथ खिसला जी दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ये अगला गीत हम चलाने वाले हैं, बहुत प्यारा गीत है। और तो लीजिए ये गीत भैया चांद रघुनाथ के नाम कर देते हैं। भैया चांद रघुनाथ खिसला जी हमने प्लेयर में रख चुके हैं, बस चलो ये गीत आपके नाम पे चला देते हैं। सुरेश वादकर जी है, फिल्म रूही में से निकाल रहे हैं, बहुत प्यारा नंबर है।

खूबसूरत तेरा चेहरा फान हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में हमने पेश की फिल्म रूही में से निकाल कर सुरेश वाडेकर जी की आवाज़ में। और ये गीत हमने पेश की भैया चांद रघुनाथ को धन्यवाद दे रहे हैं और खिसरा जी को, इन दोनों के नाम हमने पेश की ये शानदार गीत। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं, आप भी हैं और मैं भी हूँ और एक दो लोग और सुन रहे हैं, लेकिन उनका नाम मुझे पुकारना नहीं चाहिए लेकिन उन्हें पता तो चल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए इस तरह से आ रहा है

वाह क्या बात है रफ़ी साहब की, ये गीत हम आपको सुनाए हैं और निकाले हैं फिल्म बिखरे मोती में से, निगति ए नसीफ तक 1971 का ये फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर हमने चलाया है शाम के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो क्या ख्याल है जमाए ये भी आपको सुनाऊँ। ये एक डाकू का फिल्म है, जी हाँ, फिल्म लुटेरा, फिल्म लुटेरा में से नकार रहे हैं लता जी, और चलो हम आपको सुनाते हैं इस तरह से। कहाँ गया या ओके फिल्म लुटेरा में से लता जी और साथी

लता जी, क्या आवाज में ये शानदार गीत हम आपको सुनाए ऊपर फावनी हिंदुस्तानी रेडियो फिल्म लुटेरा में से निकाल कर। लेकिन ये पता नहीं कि उन दिनों या पुराने ज़माने में भारत में सेपी रात थे या नहीं, यानी समुद्री डाकू थे या नहीं, पता नहीं। समुद्री डाकू का ये फिल्म है लुटेरा, जो इंडिया ने बनाए कभी और हमने पेश की ऊपर फावनी हिंदुस्तानी रेडियो। चलो देखते हैं, जी हाँ देखते हैं अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। देखते सूत्रमेर से, तो सूत्रमेर से मीला जी ने तार किए। मीला जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक शुभ दिन कहा जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से, और हमने प्लेयर में तो रखे हैं, तो चलो ये गीत सुना देते हैं इस तरह से। मीला जी के लिए

मैं तू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए, फिल्म दिल ने पुकारा में से ही निकाल कर हमने पेश की निगेटिन सेशंस का ये गीत, और हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और ये गीत हमने पेश की है सुतरमेर के रहने वाली मेला जी के लिए, और भैया मंसूर के लिए शुभकामना के साथ। मेला जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं, तो क्या ख्याल है? जी हाँ, आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो चलो सुनते हैं। फिल्म जंगली में से निकाले हैं शंकर जय किशन के साथ पर ये शर्मिला टैगोर और शमी कपूर का कमाल है।

0: दीवाना हुआ बादल, ये शानदार गीत हमने पेश की। लेकिन शुरू में हमने कहा था फिल्म जंगली, लेकिन फिल्म जंगली का नहीं है, लेकिन ये है फिल्म कश्मीर की कली की। लेकिन बीच में हम रोकना नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं कहा। फिल्म कश्मीर की कली में से निकाल कर ओपन एयर के साज पर नहीं था ये, और हमने पेश की ओवर फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो। चलो देखते हैं अमस्टरडम। अमस्टरडम से तार किए श्रीमान हीरा प्रसाद जोधा, श्रीमान हीरा प्रसाद जोधा और उनकी धर्मपत्नी वती, श्रीमान हीरा प्रसाद जोधा और उनकी धर्मपत्नी वती के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ शाम पेश कर रहे हैं। तो चलो इनके लिए ये भी एक क्या गीत चला देते हैं। इस तरह से आ रहा है हीरा प्रसाद जोधा और उनकी धर्मपत्नी वती के लिए।
1: पूछो
2: दिल की बात।

एक बात पूछूं या बोलो, लता जी और रफ़ी साहब मिलके आपको सुनाए हैं फिल्म कठपुतली में से निकाल कर नीख दें ए ने सैफ तख का ये गीत कल्याण जी आनंद जी के साथ पर हमने आपको सुनाए हैं। और ये गीत चला देखते हैं आमस्टरडम, आमस्टरडम के रहने वाला श्रीमान हीरा प्रसाद जोधा और उनकी धर्मपत्नी मोती के लिए। हीरा प्रसाद जोधा और धर्मपत्नी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद पेश किया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से। और मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप भी उतनी दूर दराज से और फिर भी तार किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम सुन रहे हैं श्रीमान हीरा प्रसाद जोधा और उनकी धर्मपत्नी युवती। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है चलो हम ये आपको सुनाते हैं, इस तरह से आ रहा है।

हाँ जी, उदित नारायण और साथी मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश किए मोहब्बतें में से निकाल कर। जी हाँ, यतीन ललित के साज पर हमने पेश किए हो फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है, ये है इस तरह से आ रहा है।

0: cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Groningen bepaald. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo ernstig gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gehouden. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio. Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
3: www.vahonfm.nl पर आप चुने जो लोग चुन की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है और शाम के कार्यक्रम है आप सुन रहे हैं फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो तो अगर आप तत्पर हैं आपका हृदय से स्वागत है आप जहां भी होंगे जो भी कर रहे होंगे जिस देश में भी होंगे और कार्यक्रम फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो का सुन रहे हैं और वीवी द्वारा वहां पर और इंटरनेट द्वारा आपका हृदय से स्वागत है तो चलिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत

फिल्म हंसते जख्म में से हमने निकाले हैं, तुम जो मिल गए हो। और रफी लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाएं ये गीत उफ़ाहन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊं? जी हाँ, सुन लीजिएगा, क्योंकि ये गीत जहाँ तक मेरा ख्याल है बहुत दिन हुए मैंने भी नहीं सुने हैं। फिल्म आत्माराम ने से निकाल रहे हैं, और रफ़ी साहब की आवाज़, जी नहीं, लता जी की आवाज़ में हम पेश करने वाले। इसे ध्यान से सुनिए, इस गीत में बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, क्या ख्याल है? चलो सुनते हैं। थोड़ी देर ध्यान से सुनिए,

0: तुम्हारे बिन गुजारे हैं कई दिन अब ना गुजरेंगे। लता जी, मैं तो भूल ही गया था कि रफ़ी की आवाज़ भी इसमें है। रफ़ी साहब और लता जी मिलके आपको ये शानदार दुएत सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जहाँ तक मेरा ख्याल है बहुत दिनों बाद हमने ये गीत सुने हैं, 7-4-5 साल हो गया होगा, और शायद हमारे सहयोगी ने आपको सुनाया होगा, तो मेरा बदनसीबी है। बहरहाल ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ।
1: दुनिया में जो ले हिम्मत से काम।
0: महेंद्र कपूर जी,

आपने सुने महेंद्र कपूर जी आपको सुनाए कि बड़ा आदमी कौन है, हमने निकाल कर आपको सुनाए इस तरह से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। आपको तो ये गीत हमें यही बताता है कि सूट बूट पहन लेने से, टाई यानी जैकेट के ऊपर एक दास बांध लेने से, महंगा जैकेट पहनकर या कुछ सोने का चेन लटकाकर और बड़े गाड़ी में चलना, 70-80 हज़ार का गाड़ी में चलना, ये वो बड़ा आदमी नहीं है। बड़ा आदमी वो है जो दिल से है, किसी को चाहे, उनका दिल बड़ा है, पैसा बड़ा नहीं। तो यही गीत महेंद्र कपूर जी आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो हमने पेश की। चलिए अगला गीत इस तरह से आ रहा है, ये तो प्यार करने वाले सिखाते हैं कि कैसे प्यार किया।

जी फिल्म उपासना में से निकाले हैं। हाँ आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूं, लता जी और रफ़ी की आवाज़ में आपको सुनाएगा निगती एन सैफ तख। 1971 का ये गीत हमने पेश किया ओवर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और तो सुनिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं, इस तरह से आ रहा है।

वो है ज़रा खफा खफा। जी हाँ, ये शानदार दिवस चला फिल्म शागिर्द में से निकाल कर हमने आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जबकि आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए, आपका स्वागत करते हुए हम पेश कर रहे हैं एक गीत आयशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में, फिल्म हरे कांच की चूड़ियाँ में से निकाल कर हम ये गीत आपको सुना रहे हैं। और देखा जाए हाँ, ये फिल्म में विश्वजीत ने काम किया है और नैना शाहू किशोर शाहू की सुपुत्री यानी बेटी है। तो आप ये सोचोगे ये नैना शाहू कौन है और किशोर शाहू कौन है। किशोर शाहू प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, लेकिन किशोर शाहू ने फिल्म गाइड में वो पति का रोल किया है वहीदा रहमान का। वहीदा रहमान ने पति का रोल जो किया है किशोर शाहू, वही किशोर शाहू उनकी बेटी है ये। तो चलिए गीत हम आपको सुनाते हैं इस तरह से।

क्या बात है, ये शानदार प्यारा दुएत हम आपको सुनाए हैं ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं मैं चला रहा हूँ। आप सबका स्वागत करते हुए प्लेयर में हमने गीत रखे हैं। कहाँ गया? जी हाँ, कहाँ गया? हाँ, ये मिल गया। चलिए देखते हैं, माइत मुकेश, माइत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, सोनिक ओमी के साज पर फिल्म बेटी में से निकाला है इस तरह से।

0: ये किया किया रे दुनिया वाले फिल्म में से हम निकाले 1969 का ये फिल्म है और हमने पेश की वो फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत, जी हाँ, सोनी कोमी के साज पर फिल्म ब्यूटी में से निकाले हैं। अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, चलो प्रेम पुजारी की ओर बढ़ते हैं। प्रेम पुजारी में देवानंद का कास्ट है और वहीदा रहमान, तो ये प्यारा गीत हम आपको सुनाते हैं। बहुत ज़बरदस्त गीत है, कौन संग्रह ये गीत नहीं गाया है इस तरह से।
1: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स सारेगामा.com से।

लता जी आपको सुनाए रंगीला रे फिल्म प्रेम पुजारी में से हमने ये गीत निकाले हैं। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं। हाँ, फिल्म वो दिन याद करो, फिल्म वो दिन याद करो में से निकाल रहे हैं द मैन विद गोल्डन वॉइस और लता जी।

मोहब्बत की कहानियाँ सुनाने लगे है जवानियाँ, ये शानदार गीत हमने पेश किए ओवर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। चलो देखते हैं, शहर रोम से इटाली से तार किए हैं श्रीमान यूसुफ, हमारा सहयोगी यूसुफ और सीला। शुभकामना के साथ आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि इतने दूर दराज से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और तार भी किए हैं। वहाँ निगरन तो इंतखराद है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ कितना होगा देखते हैं। यहाँ हाँ यूस, यहाँ 17 अखराद है करीबन। तो लीजिए शुभकामना के साथ। और कल शीला जी की जन्मदिवस था, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से, सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, मैं अपने तरफ से और यूसुफ की तरफ से शीला जी को हार्दिक बधाई शुभकामना पेश करते हुए चलिए शीला जी के लिए ये गीत मैं चला रहा हूँ।

मानो या ना मानो लता जी, माइथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए कार्यक्रम में ये शानदार गीत, और हमने पेश की ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, और ये गीत हमने चलाए हैं, तार किया गया है यूसुफ के जरिए।

0: advocatenkantoor.
1: आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चुन की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए, आपका स्वागत करते हुए मैं चला रहा हूँ, आपको चला भी नहीं रहा, सुना भी रहा हूँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ पर फिल्म अनीता में से निकाल कर। ये एक डरावनी फिल्म थी, लेकिन इतना डरावनी नहीं थी, बहरहाल थोड़ी बहुत डरावनी थी। फिल्म अनीता में से निकाल कर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ।

ना बाबा ना बाबा पिछवारे बुढ़ा खांसता लता जी आपको सुनाए लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर फिल्म अनीता, फिल्म अनीता में से निकाल कर हमने चलाए हैं। और अनीता जी के बाद, नहीं फिल्म अनीता जी के बाद चलो हम सुनाते हैं आपको ये गीत।

लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार, सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं। जी हाँ, क्या ख्याल है, इस तरह से आ रहा है रवि साहब की आवाज़ में जाना पहचाना गीत, जानी पहचानी आवाज़, जानी पहचानी संगीत है।

वाह क्या बात है, ये छेड़खाने वाली गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलते हैं, मैं तुम्हें कैच द हार्ट ऑफ मिलियंस आशा जी के साथ एक बार मुस्कुरा दो निक दी तुम्हें सी में। तो 1972 का ये फिल्म, जहाँ तक मेरा ख्याल है इस फिल्म का म्यूजिक दिया गया है ओपन नैयर के जरिए, जरा देखो तो सही है। जी हाँ सही है।

दिल पर जानी दिल तोड़ तोड़ आशा जियो मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म एक बार मुस्कुरा दो में से निकाल कर नहीं तुम सही फन तक 1972 का ये गीत हमने पेश किया ओपी के साज पर। अगर ओपी ही से हम चल रहे हैं तो लीजिए एक बार फिर ओपी नैयर के साज पर इस बार आशा जी ये धमाकेदार गीत फिल्म होंगकोंग।

अमेरिकन 363 को 1962 फिल्म होंगकोंग में से निकाले हैं और ये गीत चला ओपन एयर के साज पर हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलो देखते हैं प्लेयर में हमने ये गीत रखे हैं तो क्या ख्याल है। इस तरह से मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

लता जी और माई टू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। क्या ख्याल है? जी हाँ, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ। हाँ, एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी, लता जी और किशोर कुमार की आवाज़ में इस तरह से।

प्रेम नगर है ये अपना, और एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी फिल्म प्रेम नगर में से, यानी टाइटल सॉन्ग में से हमने निकाले हैं और हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। इससे पहले जो गीत चला हम बस यूं ही बोलने वाले थे, लेकिन मुझे खांसी आ गया इसीलिए हमने कुछ नहीं कहा और गीत चला दिए, तो क्षमा करना। हाँ, मुझे खांसी आ गया तो मैं रुक गया तो मैंने गीत चला दी। बहरहाल शाम के कार्यक्रम है और आप भी हैं, मैं भी हूँ, तो क्या ख्याल है। हाय जी, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, फिल्म दिल ही तो है में से है।

ये टाइटल सॉन्ग हम आपको सुनाएं, माइटी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, फिल्म दिल ही में तो है, दिल ही तो है में से निकाले हैं और हमने पेश किए। देखते हैं, धीरे धीरे समय भी हो रहा है कि हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन इजाज़त चाहने से पहले हम आपको एक गीत सुनाते हैं। ये फिल्म है वीर भीमसेन का, यानि जो महाभारत का भीम था उसी का फिल्म है ये, वीर भीमसेन निकतिन फिरन सस्तक। लेकिन महाभारत का एक टुकड़ा इस फिल्म में आया है और उसी फिल्म से हम ये गीत निकाल रहे हैं। एक प्रेम प्यार मोहब्बत का गीत है। महेंद्र कपूर जी, काफ़ी दिन हुए होंगे आप ये गीत नहीं सुने हैं, तो लीजिए, हम जहाँ तक मेरा ख्याल है तो मैं आपको ये गीत सुना रहा हूँ महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में। फिल्म नेकती फिरन सस्तक, फिल्म है फिल्म वीर भीमसेन।

महेंद्र कपूर जी और आशा जी मिलके आपको सुनाए हैं निकती फिरें से अस्तक का ये गीत, फिल्म वीर भीम सेन में से निकाल के हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। घड़ी पर देखूं तो 9 मिनट बाकी 3 बजने में, जहां तक मेरा ख्याल है मैं आपको एक गीत और सुना सकता हूं, तो लीजिए ये धमाकेदार गीत इस तरह से।

अफसोस है कि मुझे ये गीत यहाँ थोड़ी देर रोकना पड़ रहा है, क्योंकि देखूँ तो 7 मिनट बाकी है 3 बजने में। यहाँ तक था ये कार्यक्रम जो मैंने पेश की ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, और जो जो लोगों ने तार किए ऐप किए हैं उन लोगों के नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि वो नहीं चाहते हैं, लेकिन अब तो जो ऐपर से 1, 2, 3 ऐपर से उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और नाम भी नहीं लेना चाहिए, आपको शुभकामना, एक शुभ दिन पेश है। और उसके बाद देखते हैं तार किया था भैया चांद्र गुनाथ, उनके धर्मपत्नी हिसला जी, सूत्रमेर के रहने वाली मीला जी, और अम्सरदाम के रहने वाला श्रीमान हीरा जोधा और उनकी धर्मपत्नी वती जी, और फ्रांसी अदरस से रोम से तार किए यूसेफ और शीला जी। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ।

अच्छा, तो यहाँ तक था यह कार्यक्रम जो मैंने पेश की, इस उम्मीद के साथ आप सबको पसंद आया होगा, बाकी के लोग जो है। और मैं आपसे मिल रहा हूँ आने वाला सोमवार को, यानी यहाँ सोमवार को। तो मुझे तब तक इजाज़त दीजिए। मेरे बाद अब सुनोगे विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़, और न्यूज़ के बाद हमारे सहयोगी मिल के आपकी सेवा करेंगे। हाँ, रविवार के रात्रि को मैं फिर आपसे मिल रहा हूँ 8 बजे रात्रि को। तब तक भैया यूसुफ भी अपने फकांसी आदरा से आ जाएगा। तो रविवार को यानी सोमवार को करीबन 8 बजे मैं आपसे मिल रहा हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, सभी को एक शुभ शाम पेश किया जा रहा है पावन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, और मैं अपनी तरफ से आप सबको शुभ शाम पेश कर रहा हूँ।

जरूर तेरे प्यार में क्या क्या होता है। अरिजीत सिंह, निकिता बच्चन, अमिताभ बच्चन इस फिल्म में काम किए हैं। और दोस्तों हम चलते हैं और अपना प्रोग्राम को लेकर आगे और कहते हैं जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का प्रोग्राम है सुनाना मेरा काम, बस सुनते जाओ इस दिल के दास्तां भी बड़ी अजीब होती है। इस दिल की दास्तां भी बड़ी अजीब होती है, बड़ी मुश्किल से इस खुशी नसीब होती है, किसी के पास आने पर खुशी हो ना हो।

पर दूर जाने पर बड़ी तकलीफ होती है ना यारो, दूर जाने से बड़ी तकलीफ होता है ये हम नहीं कहता है, ये दिल के आवाज कहते हैं कि अब जिसके जिए में आई वही प्यार रोशनी, अब जिसके ये मन आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सारे आम रख दिया है और चलते हैं, मोहब्बत इनायत कर्म देखती है। और फिल्म के नाम है बहारे आने तक, अनुराधा पौलवार और पंकज उदास क्या कहते हैं।

मोहब्बत इनायत कर्म देखते हैं। आओ जा आप लोग जानते हैं प्यार भरी गीतों की बहार प्रोग्राम जोनी नंबर वन का है और कहते हैं फिर वही दिल की वो फिर वही दिल की गुजारिश फिर वही उनका गुरूर फिर वही उनकी शरारत फिर वही मेरी कसूर दोस्तों कि तेरी खामोशी चला देती है इस दिल की तमन्नाओं को तेरी खामोशी जला देती है इस दिल की तमन्नाओं को बाकी सारी बातें अच्छी हैं तेरे तस्वीर में। हम चलते हैं मेरे सवाल का जैजाना और का ये गीत है आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों यहाँ से मेरे सवाल का एक गीत हमने आप सबको सुनाए हैं प्यार भरी गीतों की और बाहर प्रोग्राम हमारा यहाँ से चलते हैं और आगे को तो प्यार भरी बातें तो करना हमारा ही काम है यारो कि काश उसे चाहने के अरमान न होता काश उसे चाहने की अरमान नहीं होता मैं होश में रहती हुए अंजाम नहीं होता ना प्यार होता किसी पत्थर दिल से हमको या फिर कोई पत्थर दिल इंसान ना होता दोस्तों नौकीर वसमोय काश उसने चाहने का अरमान ना होता काश उसे चाहने का अरमान न होता मैं होश में रहती हुए अनजान न होता न प्यार होता किसी पत्थर दिल से हमको या फिर कोई पत्थर दिल इंसान न होता तो हम चलते हैं मिले तुमसे बिछड़ के हम मेरी साजन और फिल्म के नाम है सलामी अलकायग्निक कुमार शानू

मिले तुमसे बिछड़ने के और मेरे साजन दुआ करना। अलका याग्निक का ये गाया हुआ सॉन्ग है कि दोस्तों कि अगर मैं भी मिजाई से पत्थर होता, अगर मैं भी मिजाई से पत्थर होता तो खुदा होता तो तेरे दिल होता। बहुत आसान है पहचान इसकी, अगर दुखता नहीं है तो दिल नहीं है, अगर दुखता नहीं है तो दिल नहीं है। ये तो सच बात है दोस्तों, अगर दिल है तो दिल टूटता भी है, और अगर दिल है तो दिल रोता भी है, और अगर दिल है तो दिल प्यार भी करता है। मुझे रिश्तों के लम्हे कटारों से क्या मतलब, मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से क्या मतलब। और कोई दिल से हो मेरे तो एक शख्स की काफी है। तो हम चलते हैं कि रब्बा क्या जानते हैं, रब्बा तो सब कुछ जानते हैं। और आओ सुना जाए कि यहां पर मिशन मजनू क्या कहते हैं।

0: कबूल है
1: और कबूल हो गया है, और अगर कबूल हो गया है तो जाने सब तैयार ठीक ठाक हो गया है। लेकिन कभी कभी किसी के प्यार जो है वो बहुत दूर रहते हैं दोस्तों, और जगत दूर दूर रहते हैं तो दिल में बहुत सा दर्द होता है, सोच होता है, रात को लोग सो नहीं पाते हैं कि कहते हैं कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती, ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती, बस तेरे पास आने को मेरा जी चाहता है, टूट कर सारी दुनिया के रस्मों रिवाज को तुझसे अपना बनाने को जी चाहता है। तो दूरी के मतलब ये है दोस्तों कि तेरे वजूद के खुशबू बस है मेरी सांसों में, तेरे वजूद के खुशबू बस है मेरी सांसों में, ये और बात है कि नजर से दूर रहते हैं तो हम चलते हैं। ओ सनम, ओ हमारी सनम, ओ हमारी सनम, उदित नारायण की ओर हम चलते हैं और पामेला जैन की ओर, जिसमें बॉबी देओल और लारा दत्ता ने काम किए हैं कि ओ सनम मेरा सनम।

ओ सनम और ओ सनम दोस्तों, और ओ सनम में क्या क्या होता है आप लोग भी जानते हैं कि कभी कभी नहीं कभी कभी बहुत ज्यादा हो चुका है जो लोग प्यार में धोखा देते हैं। दिस प्रोग्राम भैया, इस प्रोग्राम जो है ये सिर्फ लवर्स के लिए है और प्यार भरी गीतों के बाहर प्रोग्राम हमारा है, और उसमें कभी कभी लोग धोखा भी दे देते हैं, बेवफाई भी करते हैं, तो हम भी उस लोग को याद करते हैं जो दिल तोड़ दिया है, या तोड़ते हैं और जो सोचते हैं दिल तोड़ने को कि तेरे ख्याल से दिल से मिटाया नहीं अभी, तेरी ख्याल दिल से मिटाया नहीं अभी, बेवफा मैंने तुझको बुलाया नहीं अभी, हमसे ना करिए बातें यू बेरुखी से सनम, हमसे ना करिए बातें यू बेरुखी से सनम, होने लगे हो कुछ कुछ बेवफा से तुम, हम चलते हैं तेरे नाम धोखा रख दुन नाराज हो गए हो क्या, तेरा नाम धोखा रख दू नाराज हो गए है क्या। अरिजीत सिंह के

0: कि मेरे बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: और तेरा नाम धोखा रख दूं और तुम नाराज हो गया है क्या कि कहते हैं हमने ना मोहब्बत मिली, हमें ना मोहब्बत मिली, और हमें ना मोहब्बत मिली ना प्यार मिला, हमको जो भी मिला बेवफा यार मिला। अपने तो बन गई तमाशा जिंदगी, हर कोई मकसद का तलगार मिला। कि कहते हैं दोस्तों प्यार में धोखा होता है, तूने ही लगा दिया इल्जाम इस बेवफाई, अदालत भी तेरे ही, गवाह भी तू ही थी। तो हमारे यारो, और हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं, और ये गीत है प्यार का दोस्तों, प्यार का सॉन्ग है, बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला।
2: जब हम बड़े हो जाएंगे तो मुझसे शादी करेगी?
3: हाँ।
2: प्रॉमिस?
3: प्रॉमिस।
2: तो फिर मैं अभी आया।
3: ओफो, ये फिर कहाँ चला गया?
2: तो फिर साइन कर इस पे।

0: क्या कर रहे हो तुम?
1: हाँ याद है ना,
0: तुमने प्रॉमिस किया था।
2: ये क्या बचपना है, मेरी शादी हो रही है।

बेदर्जी से प्यार का सहारा ना मिला कि वो तारों की तरह, वो तारों की तरह रात भर चमकते रहे, हम चांद से तनहा सफर करते रहे। वो तो बीते वक्त उम्मीद आना ना था, वो तो बीते वक्त उन्हें आना था। हम यूं ही सारी रात करवते बदलते ही रहे। और यहाँ से एक गीत और हम आप लोग को सुनाने जाते हैं, और वो गीत क्या है, अब नाम मोहब्बत के लेन तो आया है गुलाम। उदित नारायण अलका यांगनी फिल्म के नाम है गुलाम। दोस्तों गुलाम फिल्म का नाम है। एक लम्हे के लिए मेरा नजरों के सामने आया, एक मुद्दत से माने खुद को आईने में नहीं देखा।

कहते हैं ना कोई किसी से दूर होता है, ना कोई किसी से दूर होता है, ना कोई किसी के करीब होता है, वो खुद ही चल के आता है जो किसी का नसीब में होता है। हमारे सुनने वालों, ये बात है कि अगर जो आपके नसीब में ये हो तो वो खुद ही चल करे, वो खुद ही चल करे आएंगे। कि जिंदगी की हर तमन्ना पूरी नहीं होती, कि जिंदगी की हर तमन्ना पूरी नहीं होती, तकदीर की कोई भी मजबूरी नहीं होती। तो हम चलते हैं, क्या तुम्हें पता है हमारे दोस्तों, क्या तुम्हें पता है अए गुलशन, अए गुलशन, क्या तुम्हें पता है, आओ सुना जाए।

0: for more entertainment.
1: और क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, फिल्म के नाम है दिल है बेताब, उदित नारायण का गाया हुआ, और ये सॉन्ग है हमारे दोस्तों कि कहते हैं कभी उदास हो जाए, कभी उदास हो जाए तो बताना मुझे, कभी उदास हो जाए, कभी उदास हो जाए तो बताना मुझे, फिर से अपना दिल देंगे तुम्हें खेलने के लिए। वाह वाह वाह, अपना दिल आपको हम देंगे खेलने के लिए। और फिर कहते हैं कि तेरा साथ है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरे हर मुस्कान से मिली मुझे खुशी है, तेरी हर मुस्कान से मिली मुझे खुशी है, मुस्कुराते रहना इस तरह हमेशा, क्योंकि तेरे ही मुस्कान में मेरी जान बसी है। तो चलते हैं, तू प्यार तो प्रीत पराया धन फिल्म के नाम है, राकेश रोशन हेमा मालिनी ने इसमें काम किए हैं, आओ सुना जाए।

Wat een romantische zong. Tu piar, tu priet. Film ke naam hi piara, paraya dhan dosto. Paraya dhan se is romantic song ko humne nikaal kare. Aur aap log ke कानो तुक रेडियो फोन के माध्यम से और हमने पहुंचा दिया है। अगर मोहब्बत नहीं थी तो बता दिया होता, अगर मोहब्बत नहीं होती तो बता दिया होता, तेरे एक चुप ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तो मोहब्बत में तो लोग बर्बाद होते हैं भी दोस्तों, और कहते हैं कौन कहता है, कौन कहता है ताजमहल बनाने के लिए पैसा नहीं मिलती, कौन कहता है कि ताजमहल बनाने के लिए दौलत नहीं मिलती। ताजमहल बनाने के लिए दौलत तो मिलती है, मगर मोहब्बत करने के लिए मुमताज नहीं मिलती। तो ये बात तो है ना हमारे यारो। तो हम चलते हैं और एक रोमांटिक सॉन्ग है लव गैम्बलर कुमार शानू साधना सरगम का, हम उनसे मोहब्बत करते हैं।

हम उनसे मोहब्बत, हम उनसे मोहब्बत करके और लव कैम्बलर कुमार शानू साधना सरगन का ये सॉन्ग थे दोस्तों। और हम चलते हैं कुछ आंखें की ओर। और आंखें क्या कहते हैं, आंखें कहते हैं, आंखें चाहती है दीदार करना, आंखें चाहती है दीदार करना, दिल चाहता है प्यार करना, क्या बताऊं इस दिल को आलम, नसीब में लिखा है इंतजार करना। तो दोस्तों आपको हम सुनाएंगे एक गीत, और वो गीत क्या होगा आप खुद ही सुनिए कि मेरी चाहत देखनी है तो मेरे दिल पर, मेरी चाहत देखनी है तो मेरे दिल पर अपना दिल रख कर देख, तेरे धड़कन ना बजा दूं तो मेरा मोहब्बत ठुकरा देना। तो आंखें के ओर हम चलते हैं, और जब किसी से प्यार करना है तो मत भूल जा दोस्तों कि रास्ता उसका दिल में बनाना है तो उसके आंख में से रास्ता बनाकर उसका दिल में उतर जाना। आओ मिलकर सुना जाए अनुराधा पौडवाल का ये सॉन्ग।

और तेरी नैना मेरे नैनों से, और वो क्या कहते हैं, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें कहते हैं कि जब भी देखता हूँ तुम्हें लगता है, जब भी देखता हूँ तुम्हें लगता है ये दिन नया है, निगाहें तुमको देखने चाहती है, मेरे दिल को ये क्या हुआ है। दोस्तों ये बात तो है ना, मिलने तो हजारों लोग थे जिंदगी में, पर वो सबसे अलग था जो किस्मत ने नहीं था। तो हम चलते हैं आज की बहारों की मलिका।

मलिका अभिज्ञा बताचार्या, दस्तूर फिल्म का नाम है रोमांटिक जोन। तो दोस्तों हम चलते हैं और एक गीत की ओर कि दिल में तुम्हारी अपना कभी छोड़ गए, दिल में तुम्हारी अपना कभी छोड़ जाएंगे, आंखों में इंतजार की लकीर छोड़ जाएंगे हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। हम चलते हैं एक गीत की ओर, नाना करते इकरार कर लिया है।

लिया और अपना दिल दे दिया। और ये जो गीत आप लोग को प्लेयर पे रख दिया है, उंगली में अंगूठी है और अंगूठी में नगीना है, ये तो आप लोग सब जानते ना। आ मिलके इस गीत को सुना जाए।

और भीगी रात निकली 65 का ये फिल्म है दोस्तों। हम और आगे को लेकर अपना प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हम अपनी गीतों को और आगे को बढ़ाते हैं, हम चलते हैं। यूं ही तुम मुझसे बात करते हो, अगर बात करना है तो दिल से करो, ऊपर मन से करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। नई हंसी जीवन का ही फिल्म है, फिल्म के नाम है सच्चा और झूठा, जिसमें राजेश खन्ना मुमताज ने काम किए हैं। आओ सुना जाए।

और क्या बात करती हो राजेश खन्ना का और मुमताज का ये रोमांटिक सॉन्ग यानी फिल्म थी। और दोस्तों आज हम आप लोग को फिर भी रोमांटिक प्यार भरी गीतों की यानी सॉन्ग आपके हम सुनाएंगे और रेडियो फहम के माध्यम से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं। और दोस्तों देखा जाए और कितनी दिनों बाद आज हम आप लोग को फिल्म पकीसा का एक गीत सुनाएंगे। और ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म थी जिसमें मीना कुमारी, राजकुमार, अशोक कुमार ने काम किए थे। और आज हम आप लोग को इस गीत को कितने दिनों बाद सुनाएंगे। नेहती हों का ये सॉन्ग है।

और ये गीत फिल्म पकीसा का निकाले हुए गीत सॉन्ग हम आप लोग को कितनों दिनों बाद आप लोग को हमने सुनाए हैं। और दोस्तों हम और आगे को बढ़ते हैं, कहते हैं कि ये हम तुम चोरी से और चोरी में छिछोरी हो जाते हैं और तोरी में क्या क्या ना हो जाते भैया, चोरी में क्या क्या न हो जाते हैं। और ये है फिल्म धरती कहे पुकार का ये सॉन्ग है जितेंद्र नंदा और नाइटिंगेल लता जी और करोड़ चुराने वाला मुकेश माइती मुकेश का ये सॉन्ग है। आओ सुना जाए।

और ये तुम जो हम तुम चोरी से और बने भी है कौंची एक डोरी से जइयो कहाँ ले हुजूर। उसके बाद में हमारे दोस्तों आप लोग जानते हैं हमारा प्रोग्राम का नाम है सच्चाई मजेदार समाचार, जो हर शुक्रवार को शाम को 6 से 7 बजे तक हम 6 से 9 बजे रात्रि तक चलाते हैं, मंगलवार को 5 से 7 बजे तक और रविवार को दिन में 1 बजे हम अपना यानी प्रोग्राम को चलाते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं कौन दिशा से मैं लेके चला रे भतुया, नदिया का पार नदिया के पार फिल्म के नाम है। हेमलता जसपाल सिंह इस गीत को रविंदर जैन के सॉन्ग में और इस गीत को गाया है, एक बहुत मस्त भरी प्यार भरी गीत है। फिल्म के नाम है नदिया के पार नीह दिन होंद एंतुन तख्त का ये गीत है। और आओ मिलकर ये गीत को सुना जाए, ये गीत हमें बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, हमें ही आशा उम्मीद है कि आपको भी ये गीत अच्छा जरूर लगेंगे। आओ सुना जाए।

0: और मन ने भरमाए और जाके रे बस्तुया कौन दिशा में लेके चला रे बस्तुया। नदिया कपारी फिल्म का नाम है। हेमलता इस गीत को गाया है और हम चलते हैं दोस्तों अपना प्रोग्राम लेकर आगे। और ये है इस फिल्म किशोर जी का गाया हुआ ये सॉन्ग है और आओ मिलकर सुना जाए कौन सा फिल्म का गीत है अभी हमें पता चली गई तो हम आप लोग को बताएंगे दोस्तों कि ये कौन सा फिल्म का ये गीत है। लेकिन इसमें काम किया है लीना चंद्रवरकर और संजीव कुमार। गम का फसाना लेना, गम का फसाना लेना। तो आओ सुना जाए ये कौन सा गम है और कौन सा फसाना है हमारे दोस्तों। ये रोमांटिक मूवी का सॉन्ग है, क्लासिक सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाते हैं। आओ सुना जाए।
1: हाय गम का फसाना बन गया अच्छा
2: अच्छा जी,
1: एक बहाना बन गया अच्छा
2: अच्छा।

और गम का फसाना बन गया। अच्छा, किशोर जी का गाया हुआ ये सॉन्ग है। हमारे दोस्तों, हम अगला गीत की ओर बढ़ते हैं और अगला गीत क्या होगा, आओ मिलके सुनाई गोरी तेरी गाँव बड़ा प्यारा। और कभी कभी जो गोरी लोन होता है वो गाँव में रहता है, देहात में रहते हैं, और ये गीत भी है गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा है। तो आओ सुना जाए इस गीत का। फिल्म का नाम है चित्त चोर नीघंती ससीवत का। ये गीत है, यूसुफ दास ने इस गीत को गाया है।

गोर गोरी तेरा गांव, ना सिर्फ तेरा गांव, तुम भी बहुत प्यारा है, तुम भी बहुत प्यारा है गोरी, जैसे तुम प्यारा है ऐसे तुम्हारा गांव भी प्यारा है। और इस फिल्म का नाम है चित्तचोर, जिसमें शरीना वहाब ने काम की है। और इसके बाद हम पुरानी गीतों की भान प्रोग्राम लेकर चलते हैं। सॉन्ग के नाम है दिल विल प्यार व्यार, अरे मैं क्या जानू भैया हम तो छोटा लड़का है। फिल्म के नाम है शागिर्द नहीं खती सीवने सस्तक का। और ये प्यार यार कुछ जाने भैया, अगर ये प्यार यार आपको मालूम है तो हमें आप लोग जरूर बतला देना, हमें भी मालूम नहीं है प्यार क्या होता है। तो आओ इस गीत से सुना जाए तो साइट मालूम हो जाएगा।

और ये दिल विल प्यार यार जॉनी के भी मालूम ना है दोस्तों, अगर आपको जो मालूम हो तो हमें जरूर बता देना कि ये दिल उल प्यार यार क्या होता है। अगर अगर आपकी दिल जो है जिसमें कुछ लिखा नहीं है, कोरा है, किसी आम के दिल में नहीं बसा है, तो ये गीत आपको सुनना चाहिए।

0: और मैंने भी खते मैं भी खते महबूब का नाम लिखा है हमारी यारो
1: तेरी हर
0: और दोस्तों आज भी आप लोग को हम कुछ पुरानी और मिले जुली गीत को हम सुनाएंगे, कोई बेवफाई या प्यार का शेर भी आप लोग को हम सुनाएंगे। यानी कि आजकल के ज़माना में बेवफाई एक काम हो गया दोस्तों, और बेवफाई बहुत लोग करते हैं और वो करके कभी पछताते नहीं हैं। तो जितने लोग बेवफा है उस सब के लिए हम ये गीत यहाँ से चलाएंगे, लेकिन कहेंगे जरूर तू हजार बार भी रोते तू मीना, तू हजार बार भी रोती तो मना लूंगा तुझे, मगर देख मोहब्बत से समय दो मोहब्बत के शामिल कोई दूसरा ना हो। समझ गए ले दोस्तों कि किस्मत या मेरे इम्तिहान ले रही है, किस्मत या मेरे इम्तिहान ले रही है, तड़प कर या मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफाई को वो इल्ज़ाम दे रहे हैं। तो हम चलते हैं एक भड़कते हुए और बेवफाई गीत है, फिल्म के नाम है ओ बेवफा, जिसमें अक्षय कुमार करीना कुमार ने काम किए हैं, करीना कपूर दोस्तों और सोनू निगम इस गीत को गाया है।

0: बबली जी,
1: कमज़ोर कोई नहीं होता जनाब, सब टाइम का खेल है। मेरी ओर से सुनने वालों को नमस्कार।
2: कमज़ोर तो कोई नहीं होता है लेकिन सब टाइम का खेल है, बबली जी ने जैसा कहा। फाहून हिंदुस्तान रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा एकदम नमस्कार। इस बार भी हम अपना कार्यक्रम लेके उपस्थित हुए हैं जो कि भगवान की गोद में सिर, कहानी का जो शीर्षक है इस प्रकार से। सो बढ़ेंगे धीरे से, क्यों ना जिन लोगों का मन उदासी है कुछ उनके लिए किया जाए। संजय जी,
3: उदास मन वालों को सभी को जो इस समय हर सप्ताह की तरह हम लोग वो गीत चलाते हैं, तो उदासी मन काहे को डरे तेरा राम जी करे बेड़ा पार, पहले वो चला दे तेरा जिंदर जी, फिर हम सब कार्यक्रम के लेकर आगे बढ़ने वाले हैं।
2: जरूर,

0: तेरा राम जी करे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे। राजेंद्र जी, आज का महत्व तो अभी हमने सुना है कि रोटी जीवन में उनका महत्व, ये तो एक काफी सरल विषय है मेरे को लगता है।
1: हाँ, रोटी का जीवन में जो महत्व है, उस कैसे महत्व है विषय तो सरल है, लेकिन चाहे जाने
0: तो
1: क्या महत्व रहा,
0: बस यही इसी के बारे में हम लोग उनका कार्यक्रम 2 घंटा चलेगा।
1: नहीं, उसके कार्यक्रम 2 हैं।
0: ओ ऐसा,
1: पहला तो है भगवान की गोद में सिर,
0: तो हम सब पहले छलांग लगाते हैं सिर की ओर,
1: सिर की ओर,
0: पर जो
1: पेट की ओर बाद में
0: ये बात हो जाता है। शांता जी, इस पे आपको क्या कहना कि रोटी जीवन में महत्व,
1: रोटी का महत्व जीवन में,
0: तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल?
2: रोटी महत्व जीवन के महत्व, हाँ, रोटी तो होना चाहिए,
0: रोटी तो होना चाहिए, ये तो
1: चावल
0: ये
1: से काम ना चले,
0: चावल से काम ना चले।
2: हाँ,
1: जो लोग रोटी ना जाने वो कहिए ना।
0: राजेंद्र जी, मैंने भी ये भी सुना है कि आज के कार्यक्रम के बाद हमें खाना है क्या खाना?
2: मोमोस। अब मोमोस क्या होता है मेरे को ना पता,
0: तो पहले वो तो हम सबको सुना दो कि क्या हम सब खाने वाले हैं।
1: हाँ, आज बबली जी कुछ जो कार्यक्रम के बाद मोमोस बनाने वाली है और चटनी उसके साथ।
2: हाँ, पूरी तैयारी करके आई है,
1: पूरी तैयारी करके भारत से सीख के सब आई है, तो देखते हैं क्या बनता है, जैसे बनेगा तो फिर अगला कार्यक्रम में बताया जाएगा।
0: पर राजेंद्र जी, इस बात को जब आज कार्यक्रम से पहले हम सब तैयारी हो रहे थे यहाँ आने को, तो हमने सुना कि मोमोस बनने वाला है, तो शांता जी से मैंने पूछा कि शांता जी आपको पता है क्या? तो शांता जी ने कहा कि वो पड़ोसिन का बेटी का नाम ऐसा था।
2: हाँ, उसका नाम ऐसी थी मोमो, पर ये मोमो नहीं, ये मोमोस है।
0: मोमोस तो ये खाने का पदार्थ है, और ये एक इंडियन चीज है या तमिल चीज है, किस कहाँ के ये है?
1: ये नेपाल के लोग इसको ज्यादा बनाते हैं, और इसका जो इंग्रेडिएंट्स है ये मैदा और अंदर पत्ता गोभी और गाजर इसके काट के भरा जाता है, और फिर इसमें मिर्ची का और टमाटर का चटनी हरा धनिया और हरी मिर्ची के साथ खाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका एक कॉम्बिनेशन है जो कि आजकल बहुत भारत में नेपाल में अच्छा, बहुत लोग इसको शाम के वक्त 4-5 बजे जैसे ऑफिस से घर जाते हैं उस समय खाते हैं। ये फुल मील नहीं है लेकिन ब्रंच जैसा है,
0: हाफ पियर की तरह,
1: हाफ पियर की तरह।
0: और ये आज बनाना, पर बबली जी आपको इसके बारे में कभी जानकारी था, क्योंकि आप तो भारत से हैं और इसके बारे में जानकारी था आपके?
3: जब मैं भारत में थी तो मैंने मोमोस का नाम नहीं सुना था,
1: तब मोमोस प्रचलित कम था।
3: हाँ जी, अब ये 20 साल में ज़्यादा प्रचलित हुए हैं।
1: हाँ, अभी थोड़ा ज़्यादा प्रचलित हो गया है और फास्ट फूड ज़्यादा लोग अभी खा रहे हैं।
3: हाँ जी, हाँ। तो मैंने भी नहीं खाया इसको।
2: और ये मोमो का सीजन होता है?
1: नहीं, सीजन कुछ नहीं होता है, ये तो
2: जब अच्छा लगे तब बना कर खाते,
1: जब अच्छा लगे तभी खाते हैं,
3: जैसे समोसा वगैरह खाते हैं वैसे मोमोस चाय के साथ खा सकते हैं।
0: इसमें मैं जोड़ देना चाहता हूँ कि देखिए, आज बृहस्पतिवार है, जून का 4 तारीख 2026, और बबली जी गत नवंबर में हम लोग गए थे वहाँ दार्जिलिंग, तो दार्जिलिंग में हम लोग खाए हैं मोमो खूब, और वहाँ कितने प्रकार के मोमो बनते हैं ना, तो जो वेजिटेरियन है उसके लिए भी बनते हैं, और हम लोग बड़ा मस्त खाए पिए वहाँ पर। तो ये एक पकवान है जो ज़्यादा तादाद में पहाड़ी इलाका में, यानी कि जैसे दार्जिलिंग है और कैलाश के और जो शहरों है पहाड़ पे, तो ज़्यादा उस तरफ क्या है, उस ओर हम बढ़ते हैं और फिर एक गीत के ओर।
1: पहला जो संदेश है वो इस प्रकार से है कि एक लड़की ने एक संत जी को बताया कि मेरे पिता बहुत बीमार हैं और अपने पलंग से उठ भी नहीं सकते, क्या आप उनसे मिलने हमारे घर पे आ सकते हैं? संत जी ने कहा, हाँ बेटी, मैं ज़रूर आऊँगा। संत जब उनसे मिलने उसके घर पर गए तो देखा कि एक बूढ़ा और बीमार आदमी पलंग पर 2 तकिया पर सिर रख कर लेटा हुआ है। लेकिन एक खाली कुर्सी उसके पलंग के सामने पड़ी थी। संत जी ने उस बूढ़े और बीमार आदमी से पूछा कि मुझे लगता है कि शायद आप मेरे ही आने की उम्मीद कर रहे थे।
0: ऐसा वो संत जो गए वो बूढ़े आदमी के पास, यानी कि जो बेटी ने अपने बाप के लिए मांग किए कि संत आ करके और जा करके उनके पिता जो बीमार है उनसे मिले।
1: उस वृद्ध आदमी ने कहा कि जी नहीं, आप कौन हैं? संत जी ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, मुझे ये खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास हो गया है। वो आदमी बोला, संत जी अगर आपको अगर बुरा न लगे तो कृपया कमरे का दरवाज़ा बंद कर दीजिए। संत जी को थोड़ी हैरानी तो हुई, फिर भी संत जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया।
0: तो राजेंद्र जी, इसे तो थोड़ा फुटकरिया जैसे बोलते हैं ना सरनामी में, तो ये बात हुआ शांता जी की, एक संत जो जाकर के एक बीमार आदमी के घर से गए पहुंचे, और मूल्य बात इसमें ये होता है कि उनके और यानी कि जहां पर वो लेट रहे थे उनके बगल में एक कुर्सी,
2: हाँ उकर सामने एक कुर्सी धरा है,
0: ऐसा रखा है।
2: हाँ, तो वो संत तो जो आए
0: इसमें, हाँ। इसमें है क्या कुछ कुछ खास बात? तो ये तो बिल्कुल वही बात पे चल जाता है कि जैसे आज का विशेषता रखा गया कि रोटी जीवन में महत्व क्या है, तो एक कुर्सी बेड के बगले में रखा है, उसमें कुछ मुझे तो नहीं लगता कि कुछ होने वाला है
1: ना, कुछ रहस्य रहा कुर्सी का,
0: रहस्य जो अभी हम सब, हाँ। सभी सुनने वालों को सुनाने वाला है। तो क्यों ना हम पहले गीत की ओर बढ़ जाते हैं?
1: जरूर,
0: क्योंकि रहस्य तो बस रहस्य रहना चाहिए ना।
1: हाँ,
0: क्योंकि क्यों उन्होंने कुर्सी बेड के बगले में रखे,
1: ये रहस्य है।
0: अभी तो इसी पे खाली ध्यान देते हैं।

0: राजेंद्र जी, इस गीत को सुन के मुझे मेरा पापा का ख्याल आ गया।
1: मुझे भी आ गया।
0: आपको भी? मैं हाँ। देख रहा था कि आप बिल्कुल एकदम वो गीत में चले गए थे।
1: हाँ।
0: और शांता जी, आपको?
2: हाँ, वो तो
1: आएगा ही।
2: वो है, माता पिता को कभी भूल नहीं पाओगे।
0: बबली जी, आप कैसा लगा ये गीत सुन को? अपना पापा का ख्याल आया कि नहीं?
3: गीत तो बहुत अच्छा है, इसमें अजय देवगन ने पापा का रोल किया है, जो एक दिमागी थोड़ा दिमाग से ठीक नहीं होते। हाँ, मेरे को भी अपने पापा की याद आ गई। मैं तो अपने पापा की सबसे लाडली बेटी थी।
0: पापा की लाडली बेटी थी। और शांता जी, आप?
2: मैं तो एक ही बेटी थी
0: पांच भाई के बीच में। और मुझे ये ख्याल आया राजेंद्र जी कि आज से बहुत साल हो पहले कि मैं अपने पापा के साथ और कंधा से बैठ करके घूमते थे। और अभी भी ख्याल है कि उस समय पे सूरीनाम में गाड़ी भी नहीं थे उतना ज़्यादा, पर कोई परिवार में गाड़ी होते थे तो बहुत
1: धनी माना जाता था।
0: तो हमारे परिवार में साइकिल था मेरे पापा को, तो साइकिल जिसके पास होते थे तो वो भी कुछ माना जाता था। तो हमें साइकिल से बैठा करके और ले गए थे, और जहाँ हम लोग के घर बनाया, ये सब पुराना ख्याल आ जाता है। ये बात है कि आज का विषय जो हम सब के ओर अभी बढ़ना है, जो बहुत सहज सरलता से दिया गया है आज का विशेषता, कि जीवन का और रोटी जीवन का महत्व, उस ओर अभी हम सब छलांग लगाने वाले हैं। पर संदेश कुछ आगे से और रखा जाता है, हम सब धीरे धीरे उस ओर चढ़ने वाले हैं। और ये बात हो जाता राजेंद्र जी
1: जी
0: कि यहाँ एक मैसेज आए कि जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। तो हमें कुछ ना कुछ संदेश आते रहते हैं, हम सुनाते रहेंगे, और क्यों ना हम धीरे धीरे ये जो हमारा विषय है आज, जो ज्योति, मैंने क्या कहा?
1: रोटी।
0: हाँ, पर रोटी कहना था, पर ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम जो 188 देशों तक सुना जा सकता है, और इस समय में कितने देशों में सुना जाता है, जो लाइव ब्रॉडकास्ट डेन हाग शहर हॉलैंड से और किया जाता है न्यूटन स्ट्रात 25 से। तो कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश में हम सब अभी आपको ऐसा संदेश और सुनाने वाले हैं, पर संदेश और भी है, उस ओर छलांग लगाने से पहले राजेंद्र जी क्यों ना हम और आगे बढ़ते हैं।
1: तो आदमी बोला, बीमार आदमी, कि दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक भी किसी को नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। दरअसल अपनी पूरी ज़िंदगी में ये जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है। लेकिन मैं हर रोज़ मंदिर जाता ज़रूर था, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था। लगभग 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मुझे मिलने आया। उसने मुझे बताया कि हर प्रार्थना भगवान से सीधे ही हो सकती है। उसी ने मुझे सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो और ये विश्वास करो कि भगवान खुद इस कुर्सी पर तुम्हारे सामने बैठे हैं। फिर भगवान से ठीक वैसे ही बातें करना शुरू करो जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो। वो हमारी हर फरियाद सुनते हैं। और जब मैंने ऐसा ही करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं रोज़ 2-2 घंटे तक ऐसा ही भगवान से बातें करने लगा।
0: राजेंद्र जी, इसमें तो कुछ और कहना है।
1: ज़रूर,
0: क्योंकि बबली जी, आपको क्या कहना है?
3: मेरे को कहना है, कौन हिसाब रखे किसको कितना दिया और कौन कितना बचाएगा, इसलिए ईश्वर ने आसान गणित लगाया, सबको खाली हाथ भेज दिया, खाली हाथ ही बुलाएगा।
0: तो राजेंद्र जी, ये भी संदेश है, और ये मूल्य बात ये है कि एक कुर्सी जो अपने बैत के सामने रखने से, और वो ये समझ रहे हैं कि उनके पास स्वयं भगवान,
1: ऐसा विचार था उनका,
0: उनका विचार था
1: कि इसमें भगवान बैठे हैं और मैं उनसे बातें कर रहा हूँ,
0: और रोज 2-2 घंटे
1: उनको उसी में आनंद आने लग गया,
0: उसी में आनंद आने लगा।
1: हाँ, लेकिन आगे जब उन्होंने ये बात अपनी बेटी को भी कभी नहीं बताई, अगर वो इस बात को उनको बता देते तो वो सोचते ये पागल हो गए,
0: रहस्य रखा,
1: ये रहस्य रखा।
0: राजेंद्र जी, इसमें ये भी कहा जाता है ना कि जो अपने आप जो ये, वैसे तो ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं बन रहा है, पर ये बात होता है कि जो भगवान में विश्वास करे, जो उनमें और अपना प्रार्थना आराधना से खूब प्रेम भावना से करे, तो उन्हें जो बांटे, जो बतावे कि हमने ये किया वो किया, तो उसमें आनंद नहीं मिलता है, फल नहीं मिलता
1: ना।
0: तो इसी प्रकार से वो रहस्य रखा,
1: रहस्य रखा।
0: तो क्यों ना हम आगे चलते हैं राजेंद्र जी?
1: हाँ, आगे एक सुंदर सा नगमा की ओर चलते हैं।
0: नगमा की ओर मेरे ख्याल से शांता जी कुछ कहने वाले हैं, तो पहले शांता जी कुछ कहे सुनाए।
1: सुनाओ शांता जी।
4: हम ये कहना चाहती कि लोग कहते रहते हैं और सुनने में भी आता है, फिर आज सोच रही हूँ कि ये भी बता दूं कि अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता,
0: अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता,
4: और बुराई के पीछे सभी जाते हैं
0: भागे भागे।
4: जैसे कि शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता,
0: हाँ,
4: और दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है,
1: घर घर जाना पड़ता है।
0: ऐसा होता है,
4: ऐसा होता है सच्चाई में और झूठ में,
0: सच्चाई और झूठ में ये हो जाता है। हाँ। राजेंद्र जी, इस पे तो मेरे को दिल कहता है कि कुछ और सुनाओ, क्योंकि ये बात होता है। बबली जी, आपको क्या लगता है, जैसे कि शांता जी ने कहे?
3: हाँ जी, दूध से सिर्फ हड्डियां मजबूत होती हैं।
0: हाँ। दूध से सिर्फ हड्डियों मजबूत होती है,
3: जबकि चाय से रिश्ते, दोस्ती और मोहब्बत।
0: तो चाय पे तो हम लोग जाते हैं, हम लोग सत्संग करते हैं तो चाय पे और जाते रहते हैं,
1: लेकिन मैं तो चाय पीता ही नहीं।
0: चाय नहीं पीता
1: कभी नहीं।
0: ऐसा नहीं, पर उसमें राजेंद्र जी, उसमें क्या खराबी है?
1: नहीं, चाय में खराबी नहीं, लेकिन चाय पीने से कुछ, एक तो जीभ का जो स्वाद है वो कम हो जाता है, और दूसरा जो बीमारियां उत्पन्न होती है
4: चाय से,
0: ऐसा
1: इसलिए, और लुब्रिकेशन सिस्टम जो बॉडी का होता है वो शिथिल हो जाता है, कम हो जाता है, और फिर जोड़ों में दर्द आने लगता है बुढ़ापे में। तो बचपन से ही अगर चाय न पियो तो ये सब चीज़ों से दूर रहा जा सकता है।
4: पर चाय कई तरीका का होता है ना, ये दूध वाला है, मलाई वाला है।
1: हाँ, मलाई वाला तो कोई चाय नहीं होता है, लेकिन दूध वाला चाय होता है।
0: तो ये संदेश भी हम सब और रख दिए गए हैं। राजेंद्र जी, गीत की ओर बढ़ते हैं, और गीत का बोल क्या है जो हम सब?
1: गीत का बोल है मेरे पापा।
0: तो आज ये भाग में बेटी जो अपने पापा के लिए संदेश और मांग किए है, और संत को अपने घर से बुलवाए हैं।

0: मेरे पापा बहुत ही, जो पापा के बारे में बात चल रहा था तो हमारे जो गाने चलते हैं वो भी अकॉर्डिंग टू वही होते हैं।
1: हाँ
0: तो शांता जी आप कुछ कह रहे थे।
1: हाँ पापा के याद आ गई। ऊपर से चाहे कितना भी गुस्सा कर लेना पापा, लेकिन अपने बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं पापा।
2: पापा
1: हाँ
2: ऐसा
1: बोलता नहीं है पर वो अपने अंदर से वो भावना उसका है,
2: भावना रखते हैं। हाँ। कि
1: ये मैं जाना खुद, ये मेरी अपना अनुभव है ना। हाँ जब मैं गई अपने बाप, मेरे बाप उम्र की हो गई थी तो मैंने सोचा रहा हो जाए अपने बाप से बात करूँ, तो अपने पापा से बात की। बात करते करते तो उसके आवाज़ में वो महसूस आई ना कि पिता नहीं कहते हम तुम्हें चाहते हैं, हाला जल्दी नहीं कहते आज, अब तो कहने लगे, पर पुराना पिता जो है हमारी पिता जैसे है तो हाँ, वो सब कम शब्द, ज्यादा बात नहीं करते थे।
2: सही बात, एक पिता हाँ। अपने बच्चों से ये नहीं कह पाते कि बेटा आई लव यू। हाँ। एक माँ कह देते हैं कि हाँ। बेटा आई लव यू, पर पिता नहीं कह पाता है ना।
1: हाँ।
2: पर उनके उनमें वो
1: उसका हृदय में बहुत समंदर है प्यार। हाँ हाँ इतना इतना अपने बच्चे से प्यार करते हैं पापा
2: ऐसा। और हाँ। ये भी बात है शांता जी की, एक बेटी जो इतना पिता से प्यार करता है और हाँ। बेटा, तो उसमें भी कुछ अंतर होता है।
3: बेटा कमती पापा से प्यार करता है, माँ से ज़्यादा करता है, और जो बेटी होती है वो अपने पापा से ज़्यादा प्यार करती है।
0: हाँ।
3: ऐसा देखा जाता है ज़्यादातर।
1: हाँ और कहते भी कि बेटी चाहे उसका विवाह हो जाए ना, फिर भी वो अपने माँ बाप के और अपने सास ससुर के बहुत ख्याल करते हैं।
0: ये तो
1: पूरा
0: है।
1: पूरा परिवार के तो यू।
3: अब बेटी को दोनों तरफ देखना पड़ता है ना।
1: हाँ।
3: मायके की तरफ भी देखना पड़ता है और ससुराल की तरफ भी देखना पड़ता है, उसे दोनों तरफ निभाना है।
1: दोनों तरह और प्यार भी करते हैं इतने जोर।
3: हाँ
1: कि जब कहते हैं कि सुख में साथी चाहिए, एक पिता कहते हैं कि सुख में साथी चाहिए और दुख में तो हमारी बेटी अकेले ही काफ़ी है।
2: तो ये हुआ बड़े बात राजेंद्र जी। शांता जी भी अपना संदेश और रखे, क्यों ना संदेश को आगे बढ़ाते हैं।
1: हाँ इस बात पे एक बात और कहूँगी कि हर घर में जो विवाहित जीवन है ना, उस घर में एक बेटी होना चाहिए, जाके कि ये पता चले कि जैसे कोई विवाह करके आए ना, कोई पत्नी आई पतो आई, तो वो भी किसी की बेटी है, तो अपन बेटी रहे तो उसका भी पता चले कि अगर अपन बेटी पे दुख पड़े तो इतना कैसा महसूस होवे है, ताकि हाँ जैसे कि हम विवाह करके दूसर बेटी भी आए अपने घर में तो उसके साथ भी कैसा बर्ताव करना चाहिए।
2: ये बात है शांता जी, बात ये हो जाता है कि कभी काल के कोई कोई परिवार में कुछ ना कुछ खटपट हो जाता है, पर ये इस पे ध्यान जब देवा जाए, क्योंकि दोनों इस कभी काल के लोग मजाक भी खूब करते हैं।
1: हाँ हाँ।
2: और पर अपना घर के बेटी तो औरों का आबादी, औरों परिवार को बढ़ाएगा, और दूसरे घर के बेटी जो हमारे परिवार को बढ़ाएगा।
1: हाँ।
2: इस पे जब ध्यान दिया जाए तो बस समझने के बात हो जाता है कि हमारा परिवार में कोई और जीवन को देने वाला है, तो औरों का और बेटी जो जा करके कर सकेंगे,
1: वंश बढ़ाता है,
2: वंश बढ़ाने के लिए। तो राजेंद्र जी क्यों ना हम कार्यक्रम को आगे और ले चलते हैं। कार्यक्रम के आगे ले चल करके हम सब पे हमें ध्यान देना है कि कमर्शियल और न्यूज नहीं है, थोड़ा समय
0: नहीं
2: है,
0: भी समय है, आगे बढ़ते
2: समय
0: हैं
2: है, तो आगे बढ़ा दे।
0: हाँ जैसे कि बात चल रहा था कि ये खाली कुर्सी क्यों रखा है, तो
1: हाँ, ये खाली कुर्सी क्यों रखा?
0: खाली कुर्सी का क्यों रखा होता
2: है, रहस्य क्या है उसका।
0: हाँ रहस्य तो बात चल पता चल गया कि वो भगवान से बातें करते थे
2: जी,
0: लेकिन जब ये बात संत ने सुनी तो उनकी आंखों में प्रेम भाव से आंसू बहने लगे,
2: आंसू का धारा।
0: संत जी उस बुजुर्ग से कहा कि आप सबसे ऊंची भक्ति कर रहे हो, फिर उस बीमार आदमी के सिर पर हाथ रखा और कहा अपनी सच्ची प्रेम भक्ति को जारी रखो, इसी प्रकार करते रहो। यानी संत जी अपने आश्रम में लौट गए, लेकिन 5 दिन बाद वही बेटी संत जी से मिलने आई और उन्हें बताया कि जिस दिन आप मेरे पिताजी से मिले थे वो बेहद खुश थे, लेकिन कल सुबह 4 बजे मेरे पिताजी ने प्राण त्याग दिए हैं।
2: यानी कि पिताजी का डेथ हो गया।
0: पिताजी का डेथ हो गया।
2: हो तो बात हो गया, थोड़ा मुसीबत। अब तो क्यों ना एक गीत की ओर बढ़ जाते हैं।
0: जरूर।

0: ये गीत सुन करके राजेंद्र जी थोड़ा मन भी इमोशनल हो गया, और एक बेटी ने अपने पिता का और ये संदेश जाकर के संत को सुनाते हैं, तो बबली जी इस पे आपको क्या संदेश है?
1: मेरा ये संदेश है, रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्तों में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। खुशियाँ तो चंदन की तरह होती हैं, दूसरों के माथे पर लगाओ तो अपनी उंगलियों में भी महक आ जाती है।
0: तो चंदन की तरह खुशी होते हैं। राजेंद्र जी संदेश,
2: बबली जी का जो संदेश था वो
0: इस
2: बहुत ही
0: पीछे के ओर भी देखना, पीछे के ओर भी देखना, क्योंकि शांता जी तैयार हो गया कहने को।
3: चंदन भी शीतलता देता है ना,
0: शीतलता
3: शीतलता, इसलिए ये जो माथे पे लगाते हैं। हम लोग भी जो मंदिर में जाते हैं तो एक तिलक ऐसे लगता है ना
0: जी,
3: तो जब लगते ही तो आप जरूर से महसूस कर लेते हैं कि वो ठंडक देता है,
0: ऐसा
1: ठंडक भी देता है। और जो लगाते हैं उनके हाथों में महक आ जाती है, और जिनके माथे पे लगाएंगे उनके माथे पे भी महक आ जाती
3: है। हाँ, वो तो भी न, कौन घिसता था राम को लगाने के लिए?
2: तुलसीदास।
3: तुलसीदास
2: करे रघुवीर
0: जी,
2: चित्रकूट के घाट पर पड़ी संतन की भीड़, तुलसी चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर।
3: हाँ,
0: और जैसे कि शांता जी इस पे थोड़ा सा और मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि उंगलियों से लगाना चाहिए तिलक ना, टीका आदि उंगली से लगाना चाहिए, हाथ से लगाना चाहिए। आजकल हम लोग लगाते हैं रुई से टिकिया,
2: हाँ,
0: उंगली से,
2: ये वाली उंगली,
0: हाँ जी,
3: रिंग फिंगर से
0: जी। तो राजेंद्र जी संदेश आगे क्या है?
3: वो ये जो चल रहा है ना संत के बारे में और पिताजी के बारे में, तो उसके बारे में ये कहूँगी कि नजरें तुम्हें देखना चाहे तो आँखों को क्या कसूर,
0: नजरें तुम्हें देखना चाहे
3: तो आँखों
0: के क्या, आँखों के क्या कसूर,
3: क्या कसूर। हर पल याद तुम्हारी आए तो सांसों का क्या कसूर। वैसे तो सपने पूछकर नहीं आते, पर सपने में आपको याद आते हैं तो क्या करूं। देखने की चाह तो हमारी क्या, तो हमारा क्या कसूर। तो जैसे कहानी में सुनाए ना कि वो पिता चेयर धर के कुर्सी धर के सामने और हरदम बात करते थे उस कुर्सी से, तो उस कुर्सी पे तो अभी हम नहीं कहेंगे, तो राजेंद्र जी बात में अब आगे बताइए।
0: हाँ, क्योंकि अभी रहस्य बाकी है,
3: रहस्य सबसे गुप्त बात अभी
0: बाकी, गुप्त बात सबसे बाकी है। पर राजेंद्र जी मैं देख चुका, देख रहा हूँ कि
2: रहस्य तो पता चल ही गया है, क्योंकि कुर्सी पे जो भगवान को बात करते थे, और लेकिन वो चार दिन बाद
0: नहीं, नहीं,
2: फिर चले गए।
0: पर जो अभी न्यूज के बाद में हम सब सुनाने वाले,
2: हाँ न्यूज के बाद,
0: क्योंकि है कुछ जो अभी हम लोग जानकारी सुनाने वाले।
2: हाँ वो तो है ही।
4: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
5: Miss Indian Beauty Pageant 2026. Op

0: और भी खूबसूरती और सुंदरता में भी फर्क है.
1: खूबसूरती और सुंदरता में भी फर्क
0: फर्क है. और खूबसूरती वो है जो सबको दिखाई देता है. खूबसूरती वो है जो सबको दिखाई देता है.
1: जैसे मैं अपना बाल झाड़ कर आया तो उसमें कुछ लगता कि नहीं? ये नहीं है
2: बाहर की खूबसूरती,
1: वो हुआ बाहर का खूबसूरती.
0: और सुंदरता जो है वो किसी किसी को नजर आती है.
1: सुंदरता जो किसी किसी को नजर आता है. तो राजेंद्र जी, हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सुख की ताला किसने लगाया है? पहले गीत चला देते.
0: हमने नहीं लगाई,
1: शांता जी ने ही लगाया. तो किसने लगाया? बबली, आपने लगाया? बबली जी,
2: नहीं, मैंने भी
1: तो राजेंद्र जी लगाया होगा.
3: हम तो कभी नहीं लगाते, हम तो सुख का चाबी खोल देते.

0: तो बबली जी आप कुछ सुनाने वाले हैं हम सबको, जरा सुना दीजिए ताकि हम सब छलांग लगा सके आज का विशेषता, क्योंकि आज का विशेषता क्या है आप भी सुना दो हमारे सभी सुनने वालों को।
1: आज के विषय है रोटी का जीवन में महत्व।
0: तो रोटी जीवन

0: मैन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद करता है, क्योंकि वृद्ध होगा तो बैठे बैठे सब सोचता है मैंने क्या किया जिंदगी में, किसके साथ निभाया किसके साथ नहीं निभाया।
1: हाँ ये बात सही है। ये जो लोग अगर आप देखोगे ना, अभी तो हमने इसको भी देख रहे थे राजेंद्र जी को, एक गीत चल रहा था तो वो उसमें गुम हो गए।
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो
2: बिल्कुल।
1: सब हमें ये कहूँगी कि जीवन में अगर कुछ करो तो ऐसा कुछ करो कि ये अवस्था आए जो अभी ने कहा आपने बबली जी,
0: वृद्ध अवस्था
1: जो आए तो अच्छे अच्छे कार्य सोचे कि हमारा जीवन भी सफल हो, कि बैठ के ना पछताए कि हमने ये गलत किया हमने वो गलत किया या इससे कुछ ऐसे अपशब्द कह दी, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि समय के अनुसार कभी वो जिसके साथ आपसे अपशब्द हो गए ना, वो उसको तो वो तो भगवान का प्यारा हो जाता है, तो आप उस गलत फैमिली से उस गलती हाँ गलत फैमिली आपके दिल
3: family
1: में
3: रहता है,
1: हाँ वो रहता है। तो इसलिए अगर चाहो तो अभी से अपना जीवन में अच्छा कार्य करें।
2: राजेंद्र जी ठहरो,
1: ये मेरा मत है, ये मेरा
2: सुंदर रूप से ये मेरा संदेश मत दिया है। इस पे तो मेरा दिल कहते कि संजय कह दे,
1: और अगर किसी से कुछ अनबन हो गए ना तो उससे अभी से माफी मांग ले, क्योंकि ये पता नहीं कि आप रहोगे या वो रहोगे रहेगा।
0: यानी आपके कहने का मतलब जो रिश्ते बिगड़ गए हैं उसको सुधार लो,
1: या किसी दोस्त से या किसी बच्चे से कुछ गलत फैमिली हो या कुछ छोटे में या किसी वक्त में कुछ बोल दिया होगा या थप्पड़ मार दिया होगा, या बेटा बाप से या बेटी को किसी से भी अगर उससे सुधार सको सुधार लो भाई, क्योंकि कहते हैं कि आलस वच्चे दूध दुयो फॉर योरसेल्फ।
2: बिल्कुल सच,
1: आपको वो डसेगा।
2: हाँ उसको जैसे नीदरलैंड्स में कहते वो कनाह करते।
1: हाँ कनाह करते।
2: राजेंद्र जी अगर आप अवसर दे तो मुझे भी कुछ कहने का।
3: जरूर जरूर।
2: पर शांता जी तो कह रहा कि मत कह।
1: ना कहो मैं मुतखिन खुई खवी तो मुत वहब।
2: सच राजेंद्र जी ऐसा हुआ कि एक बच्चे को आम के पेड़ से बहुत पसंद था, आम के पेड़ जाने ना।
1: हाँ हाँ।
2: तो आम के पेड़ कौन कौन आम सन्नाम में होता है ये तो
1: बहुत
2: सारे हैं, पर एक बच्चे को आम के पेड़ बहुत पसंद था। जब भी फुर्सत मिलती वो आम के पेड़ के पास पहुंच जाता, पेड़ के ऊपर चढ़ता, आम खाता खिलाता और थक जाने पर उसी के छाया से सो जाता था। उस बच्चे और आम के पेड़ के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया था। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उन्हें पेड़ के पास आना कम कर दिया। कुछ समय बाद तो बिल्कुल ही बंद हो गया। आम का पेड़ उस बालक को याद करके अकेला रोता था। एक दिन अचानक पेड़ ने उस बच्चे को अपनी तरफ आते देखा और पास आने पर कहा कि तू कहाँ चला गया था, मैं रोज तुम्हें याद किया करता था, चलो आज फिर से दोनों खेलते हैं। बच्चे ने आम के पेड़ से कहा, अब मेरी खेलने की उम्र नहीं है, मुझे पढ़ना है लेकिन मेरे पास फीस भरने के पैसा नहीं है। फीस कहते हैं कि स्टडी खर्च ना। पेड़ ने कहा कि तू मेरे आम लेकर बाजार में बेच दे, इससे जो पैसा मिले अपनी फीस भर देना। उस बच्चे ने आम के पेड़ से सारे आम तोड़ लिया और उन सब आमों को लेकर वहां से चला गया। उसके बाद फिर कभी दिखाई नहीं दिया। आम का पेड़ उसकी राह देखता रहा। एक दिन वो फिर आया और कहने लगे कि अब मुझे नौकरी मिल गया है, मेरी शादी हो चुकी है, मुझे मेरे अपना घर बनाना।

0: है। इसके लिए मेरे पास अब पैसा नहीं है। फिर आम के पेड़ ने कहा, तू मेरे सभी डालियों को काट कर ले जा, उसे अपना घर बना ले। उस जवान ने, जो बच्चा से बालक से जवान हो गया था, पेड़ की सभी डालियों काट ली और लेकर चला गया। आम के पेड़ के पास अब कुछ नहीं था, वो अब बिल्कुल बंजार हो गया था, एक वृक्ष जिसमें कोई डाल ही ना था, कोई उसे देखता भी नहीं थी। पर पेड़ ने भी अब वो बालक जो जवान हो गया था उसके पास फिर आएगा ये उम्मीद छोड़ दी थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ, अचानक वहां एक बूढ़ा आदमी आया। उसने आम के पेड़ से कहा कि शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही बालक हूँ जो बार बार आपके पास आता और आप हमेशा अपने टुकड़े काट कर भी मेरे मदद करते थे। आम के पेड़ ने दुख के साथ कहा, पर बेटे, मेरे पास अब ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं। वृद्ध ने आंखों में आंसू लिया कहा कि आज मैंने आपसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, बल्कि आज तो मुझे आपके साथ जो जी भर करके और खेलना है, आपकी गोद में सर रख करके सो जाना है। इतना कहकर वो आम के पेड़ से लिपट गया और आम के पेड़ की सूखी हुई डाल ही फिर से अंकुरित हो उठी। वो आम के पेड़ कोई और नहीं, हमारा माता पिता होता है। दोस्तों सुनने वालों, वो हमारे माता पिता होता है। जब छोटे थे उनके साथ खेलना अच्छा लगता था, जैसे जैसे बड़े होते चले गए, उससे दूर होते गए, पास भी तब आए जब कोई जरूरत पड़ती थी, कोई समस्या खड़ी होती थी। आज कई माता कई माँ बाप उस बंजारा पेड़ की तरह अपने बच्चों की राह देखते हैं, जाकर उसे लिपट जाइए, गले लग जाइए, फिर देखना वृद्ध अवस्था में उनका जीवन में फिर से अंकुरित हो उठेगा। यानी कि जा करके अपने माता पिता, क्योंकि माता पिता वो भगवान होते हैं ना, जो माता पिता नहीं होता तो हम कैसे होते। तो इस पे हमें इस बात को जानना है कि जैसे कि तुलसी को हम वृक्ष नहीं कहते, तुलसी माता कहते, गाय को हम गौ माता कहते हैं, और अपना माता पिता को हमें भगवान कहना, क्योंकि उनके कृपा से वो जो सुंदर काया जो सुंदर शरीर को हम सबको प्राप्त हुआ है, तो उन्हीं से प्राप्त हुआ है। तो जरूर जा कर के, ऐसा ना हो हम सब जाते हैं और फर्सोर किंग सोसे में आदि में तो माताएं कहते कि बेटी फ़ोन किया था अभी शाम को लेकर के और खाना लेकर के आने वाला है, जबकि ये बात पता चल जाता कि झूठ झूठ बोल रहा है। तो आप अपना आजी अपना नानी अपना और पुरखों के पास जाओ, खूब प्रेम भावना से रखो और उनसे अपना समय जरूर मनाओ। क्योंकि ये बात है कि हम बहुत भीड़ भाड़ में रह रहे हैं ना, पर ये भीड़ भाड़ कुछ नहीं साथ जाता है,
1: कुछ नहीं साथ जाता है। वही जय करे कहते कि हमने, मेरी ससुमा कहते कि कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जैस करा वही वैसा फल चाखा। जैसे आप अपने माता पिता से अब व्यवहार करेगा, अगर आप वृद्ध हो गए तो आपके बेटा बेटी भी आपसे वैसे ही व्यवहार करेगा।
0: बस यही बात हो गया शांता जी, बिल्कुल सही कहे आपने। तो आपको लग रहा है कि भाई हमें भीड़ भाड़ की जिंदगी में जीना है, हमें ये करना वो करना, तो ये करना वो करना जब समय आ जाए तो कुछ नहीं वो देखता है। तो जरूर अपने माता पिता अपने वृद्धों अपने नानी नाना के पास जाकर और अपना जो आज का विषय है रोटी जीवन का महत्व, राजेंद्र जी पहले गीत चला देते तो फिर छलांग लगाते हैं रोटी का जीवन का महत्व।
2: जरूर, जरूर।

0: बहुत ही जो सुंदर नगमा था तेरी उंगली पकड़ के चली, कुमार सानू ने गाया है एंड उदित नारायण जी ने। तो 1995 का फिल्म रहा और अलका याग्निक इसमें रहा। क्यों ना हम आज का जो कार्यक्रम है उसकी ओर छलांग लगा दिया जाए, संजय जी?
1: बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र जी, क्योंकि हमारे सभी सुनने वालों इस बात के, ये तो मैं संदेश ही ऐसा दिया है कि रोटी का जीवन में महत्व क्या है।
0: हाँ।
1: तो रोटी का जीवन में महत्व तो मैं बस यही लग रहा था कि कोई खास नहीं है, रोटी बेलना और बनाओ,
0: नहीं वो नहीं है।
1: वो तो बात नहीं है,
0: चलते उसी तरफ चलते हैं,
1: छलांग लगा देते।
0: रामेश्वर ने पत्नी के स्वर्गवास हो जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ सुबह शाम पार्क में टहलना और गप्पे मारना, पास के मंदिर में दर्शन करने को अपनी दिनचर्या बना लिया था।
1: तो ये रामेश्वर कौन था? वही चाचा।
0: हाँ, वो रामेश्वर ही दूसरा चाचा,
1: ताऊ का भाई।
0: ताऊ का भाई। हालांकि घर में उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, सभी उनका बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन आज सभी दोस्त चुपचाप बैठे थे। एक दोस्त को वृद्धा आश्रम भेजने की बात से सभी दुख थे। आप सब हमेशा मुझसे पूछते थे कि मैं भगवान से तीसरी रोटी क्यों मांगता हूँ, आज बता देता हूँ। कमल ने पूछा, क्या बहू तुम्हें सिर्फ तीन रोटी ही देती है? बड़ी उत्सुकता से एक दोस्त ने पूछा, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, बहू बहुत अच्छी हैं, असल में रोटी चार प्रकार की होती है।
1: रोटी चार प्रकार की होती है? तो ये बात हो जाता है कि मैदा, पिसान और कौन कौन चीज़ से रोटी बनती
0: है? उस प्रकार की नहीं,
1: मटेरियल की बात नहीं हो रहा,
0: मटेरियल का बात नहीं हो रहा है,
1: ये बात हुआ शांता जी,
0: बात
1: आपको पता
0: हो रहा है
1: चार प्रकार का रोटी होता है।
0: हाँ, तो बात दूसरी ओर जा रहा है कि सबसे स्वादिष्ट रोटी माँ की ममता की होती है, बात्सल्य होता है उसमें, बात्सल्य भरा होता है जिससे पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता।
1: माँ का बना हुआ रोटी,
0: माँ का बना हुआ रोटी। तो क्यों ना इसी बात पे हम एक सुंदर सा माँ का
1: पिटारा में हाथ, पिटारा जो शांता भर कर ले लाए।
0: हाँ, तो उसी की ओर बढ़ दिया जाए।

0: बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक दोस्त ने कहा 16 आने सच, पर शादी के बाद माँ की रोटी कम ही मिलती है। उन्होंने आगे कहा हाँ वही तो बात है, दूसरी रोटी पत्नी की होती है जिसमें अपनापन और समर्पण भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों भर जाते हैं। क्या बात कही यार, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। फिर तीसरी रोटी किसकी होती है, एक दोस्त ने सवाल किया। तीसरी रोटी बहू की होती है जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ कुछ स्वाद भी देती है और पेट भर भी देती है और वृद्धाश्रम की परेशानियों से भी बचाती है, यानी वृद्धा जो आश्रम होता है उसकी परेशानियों से भी बचाती है। थोड़ी देर के लिए वहाँ चुप्पी छा गई, लेकिन ये चौथी रोटी कौन सी होती है, मौन तोड़ते हुए एक दोस्त ने पूछा। चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिससे न तो इंसान का पेट भरता नहीं मन तृप्त होता है, और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए यार, क्यों ना हम एक सुंदर सा नगमा की ओर बढ़े और क्या करना चाहिए इसके बाद पता चले।
1: जी जरूर, क्योंकि अब रोटी का महत्व तो धीरे धीरे समझ में आने लगा। और ये बात होता है कि माँ का बनाया हुआ रोटी कुछ और होता है, और दूसरा रोटी कुछ और होता है, और तीसरा रोटी भी कुछ और होता है। पहले हम गीत की ओर बढ़ते हैं और फिर उसके बाद में और भी बातचीत किया जाएगा
0: जरूर।

0: बहुत ही सुंदर जो नगमा था। बात चल रही थी चौथी रोटी की, चौथी रोटी किसकी होती है, और इसके बाद माँ की हमेशा पूजा करो, पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन जियो, बहू को अपनी बेटी समझो और छोटी मोटी गलतियाँ नज़रअंदाज कर दो, बहू खुश रहेगी तो बेटा भी आपका ध्यान रखेगा। यदि हालात चौथी रोटी तक ले आए तो भगवान का शुक्र करो कि उसने हमें जिंदा रखा हुआ है। अब स्वाद पर ध्यान मत दो, केवल जीने के लिए बहुत कम खाओ ताकि आराम से बुढ़ापा कट जाए। बड़ी खामोशी से सब दोस्त सोच रहे थे कि वाकई हम कितने खुशकिस्मत हैं। तो संजय जी, आपने कुछ इस बारे में खुशकिस्मत की बात करनी है?
1: खुशकिस्मत है ये बात, बिल्कुल जरूर ये बात हो जाता है राजेंद्र जी, कि रोटी जो वास उस समय जो चार प्रकार के रोटी होता है, जैसे कि आपने संदेश दिया, पर अच्छा ये तो संदेश हुआ कि रोटी का महत्व। पर शांता जी, आप कैसा रोटी बनाते हैं?
2: ये साथ साथ ये जो अभी वृतांत राजेंद्र जी ने बताया ना, साथ साथ रोटी में क्या मैं कहना चाहती थी, भूल गई।
1: जिंदगी क्या है मत पूछो, जिंदगी क्या है मत पूछो, सवर गई तो तकदीर और बिखर गई तो तमाशा।
2: तमाशा, हाँ।
1: रोटी का बात हो रहा था, और जैसे कि आज का महत्व रखा गया कि रोटी का जीवन में महत्व क्या है, जिस प्रकार से राजेंद्र जी हम सबको चार प्रकार का रोटी होता है,
2: हाँ।
1: हम सबको अच्छी तरह से और ये संदेश को दिया, और इसमें जरूर लोग समझ गए होंगे कि इसका महत्व क्या है।
2: हाँ, रोटी के साथ जो हमने कहना चाहती थी कि रोटी के साथ ये भी उसमें आता है कि घर में बहू आता है, और बहू जो आए तो अपना अवस्था भी भीतर जा रहे।
1: जी सही बात, बहू जब आता है तो जान ले अवस्था भी बीता जा रहा है।
2: हाँ, तो उसके साथ हमको लेवल के ना बहू से और अच्छे दोस्त के साथ रहना, दोस्त की तरह रहना चाहिए, बेटी की तरह, दोस्त की तरह, ताकि उससे भी बोल बात कर सके। और आप तो वृद्ध हो जाएंगे तो वही काम आएगा,
1: बस वही काम आएगा। शांता जी, बड़ा सुंदर संदेश आज का है। बबली, आप इस पे क्या सुनाने वाले हैं?
3: मैं सुनाने वाली हूँ, सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, क्योंकि वो कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते।
1: ये भी संदेशों में संदेश आज है।
2: जैसे कि एक पुस्तक, एक ना ग्रंथ है,
1: ग्रंथ
2: है, हाँ। जो उसका एक लेखक नहीं बदलता है, वो है भगवत गीता।
1: भगवत गीता
2: के एक भी लिख नहीं बदलता,
1: एक भी लिख नहीं बदल जाता। राजेंद्र जी, अगला गीत की ओर हम बढ़ते हैं, और अगला गीत जो कम से कम रोटी के अंतर्गत हम सबको सुना दो, तो फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
0: दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, अगला गीत के जो बोल
1: चला देते हैं, और दाल रोटी का
4: ये समझो और समझाओ।

0: दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। अभी हमारे राजन जी जो कि भारत देश से जुड़े हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम को, और कार्यक्रम वो अपना कुछ संदेश देना चाह रहे हैं स्वयं सेवकों के लिए कि हमारे कुछ लोग हैं जो उनका तरफ से सबको नमस्कार है। इस प्रकार से आगे भी जुड़े रहेंगे और अपने कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अब बढ़ते हैं। लागी छूटे ना अब तो सनम, जैसे ही हमारा इस गाने की ओर कार्यक्रम बढ़ता है तो पता चलता है कि हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर आ गया है। हमारा जो कार्यक्रम रहता है 2 घंटे की, हमको 2 घंटे का टाइम मिलता है और उसी 2 घंटे में हमें पूरा करना होता है, तो हम क्यों ना बढ़ा जाए। लागी छूटे ना अब तो सनम। संजय जी अब आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
1: बस गीत चला देते राजेंद्र जी, क्योंकि समय पे पाबंदी हमें रहना है और हमारे कुलेखा साथी जो आकर के स्टूडियो में उपस्थित हो गए हैं तो उनका कार्यक्रम को भी अभी आगे,
0: तो हमारे जो कुलेखा है साथी है वो ऑलरेडी उपस्थित हो चुके हैं और हमें उनको भी समय देना है जी। तो हमारा जो आखिरी गाना रहा वो इस प्रकार से लागी छूटे ना अब तो सनम गीत के बोल हैं।

हाँ सुनने वालों, लागी छूटे ना और ये भी नहीं छूटेगा। और जैसे आपको पता है तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम को विराम को देने को आ गए हैं। और ज़रूर कहूँगी कि मौन रहना एक साधना है, मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। तो सुनने वालों, आपको आपके सेविका शांता की प्यार भरी राम

लागी छूटे ना अब तो सनम। जैसे इस गीत की ओर हम बढ़ते हैं तो सभी श्रोताओं को यही आभास हो जाता है कि हमारा जो कार्यक्रम है वो हमारे समाप्ति की ओर बढ़ गया है और इसके बाद हमारा समय होता है कमर्शियल ब्रेक की ओर। फाउन हिंदुस्तान के रेडियो के सभी श्रोताओं को, जो कि प्रोग्राम हमारा 188 देशों में सुना जाता है और सब श्रोताएं इसको बड़े ही प्यार से सुनते हैं, जीवन जीने की कला, ज्योति का प्रकाश, और ज्योति का प्रकाश में बहुत सारा हमें जीवन जीने की जो कला है वो सिखाई जाती है और हमारे एमबीसी की तरफ से भी सब लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिलती है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगली बार को। नमस्कार, धन्यवाद।

0: जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। हमारे कार्यक्रम में सहयोग दिए बबली आसरा जी, शांता खेमाई जी, हमारे पैनल के पीछे भाई और राजेंद्र सिंह जी, और मैं हूँ आपका सेवक संजय। बस यही कहना चाहूँगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेगा तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार।

सुनने वालों, मैं संजय आपके साथ जुड़े हुए और ये दावा के साथ कह रहा हूं कि आप चुने फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं। एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं संजय, क्योंकि पुलिंग स्त्रीलिंग में तो कभी गलती भी हो जाता है। विश यू अ वेरी गुड डे।

अगर आपका दिन एक शुभ दिन हो, यही आशा लेकर हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जुड़ गए हैं।

धुरंधर फिल्म से निकाला गया कि दिल ही ना माने ये, और कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, ज्यादा अच्छा ही होना भी गुनाह है, पता नहीं चलता लोग इज्जत कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक और सुंदर सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे और इसी प्रकार से नए नए न्यू सॉन्ग्स के ओर हम आज बढ़ चले हैं। देखते हैं क्या और नया गीत हमारे लिए है।

चुनरी चुनरी, ये सुंदर सा गीत जो कि एक न्यू यशे में रखा गया। और दोस्तों सुनने वालों, भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देते हैं। तो बस इस पे थोड़ा से ध्यान देना। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और सुंदर दिवस आपको रहे। Een hele vreugdige en gelukkige dag toegewenst.

क्यों, मैं तो थोड़ा बटन ज्यादा लेफ्ट की ओर घुमा दिया था या राइट की ओर पता नहीं, पर लाल जल रहा था। आप अपना रेडियो का बटन किस ओर घुमा रहे हैं, बस ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ।

सुंदर संगीत जो निकाला गया एक फिल्म जो 2025 में रिलीज हुआ। कहते हैं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाता है, जिंदगी बहुत आसान हो जाता है जब परखने वाले नहीं समझने वाला मिल जाते हैं। एक और नया सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे सुनने वालों, और आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। मौसम पता नहीं कैसे है, गर्मी है या सर्दी है, पर जरूर अपना चलने का व्यवस्था आज का भूलना नहीं, क्योंकि कहा गया है कि रोज हमें कम से कम 6 दर्शन स्थापन तो करना ही है, तो उस पे जरूर ध्यान देना। और यहाँ से फाहुन से हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीत

0: वेलकम टू द जंगल, ये फिल्म जो 2026 में है और इसमें से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो भोजपुरी में गाया गया है। और कहते हैं कि कुछ पंजाबी गीतों जो फिल्मों में चलाया जाता है आजकल, देखो भोजपुरी भी खूब जोर तोर से सहयोग दे रहा है बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री में। भोजपुरी जो सुरिनामी हमारे सुरिनाम भाषा से ज्यादा मिलते जुलते है।
1: अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है।

वापस आऊंगा। कहते हैं दोस्तों सुनने वालों की देखकर दूसरों की आनंदित होना स्वस्थ मन की पहचान है। देखकर दूसरों की आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। ये सुंदर सा संदेश रखने वाले ईश्वर सिंह जो भारत से हमारे लिए ये मैसेज को भेजा और आपके तक पहुंचा दिया गया।

एक फिल्म जिसमें आयुष्मान और भूमि जी ने अपना कला सा प्रदर्शन दिए। दोस्तों कहते भी कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है। एक और सुंदर सा गीत को मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है।

A great song, Hallelujah, जिसमें काम किए राम चरण, बुच्ची बाबू, श्रुति हसन और जानवी कपूर ने। तो ये बात कहा जाता है कि समय और बचपन दोनों ही यादों में सबसे सुंदर लगते हैं। तो क्यों ना हम एक और सुंदर सा सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं।

आर्यन खान और राशमिका मधाना अपना कला से प्रदर्शन दिया। ये सुंदर सा गीत जो निकाला गया न्यू सॉन्ग 2026 रोमांटिक सॉन्ग जो कि निकाला गया दिल पे तेरा नाम। दोस्तों सुनने वालों, हम इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। और भारत मोहन गार्डन से भाई ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है कि दुनिया में दो ही पौधे ऐसा है जो कभी मुरझाते नहीं। पहला जो निस्वार्थ प्रेम से और रहे, और दूसरा जो अटूट विश्वास।

तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर ने ये फिल्म में काम किए। दोस्तों सुनने वालों, मैं आपके साथ कुछ समय तक और व्यतीत करूंगा। एक और सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है, क्यों ना उस ओर बढ़ते हैं कि मुझको तुमसे प्यार हुआ।

इमरान हाशमी ने फिल्म में काम किए। दोस्तों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है, 2400 घंटा आपके साथ, जो हम सब जुड़े रहते हैं, हमारे सभी कोलेखा साथी अपने अपने समय पे और यहाँ उपस्थित होकर के कार्यक्रम को रखते हैं। किसी ने मेरे पास ये संदेश को भेजा है कि हद से ज़्यादा सीधा सादा होना भी ठीक नहीं है, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। तो आप खुद समझदार हो, समझ जाना क्या संदेश देना चाहते हैं। जो व्यक्ति ने हमें हमारे पास ये संदेश को भेजा है, एम फी नाम है उनका, हम एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।

ये ना पूछो कहाँ, बृहस्पतिवार के रात्रि का प्रोग्राम है और मैं संजय आपके साथ जुड़ा हूँ। फिर यूली और कल का दिवस खास दिवस है, एमिग्रेट सीदाख जो अनेक अनेक प्रांतों में और जाकर के जो यानी कि मनाया जाएगा। Het is meer een herdenkingsdag. Mij chali, Rafiji aur Lata ji ke awaaz mein ye sundar sa geet hum sab sune sunwalo. Dosto, ek acche aur ek bure din. एक अच्छे और एक बुरे दिन में बस एक ही अंतर है, वे है कि आपके नजरिया, आपके नजरिया, बस यही अंतर है। और उस पे हो सके तो जरूर काम करना, क्योंकि बुरे दिन बताकर नहीं गाते हैं।

0: जरूर बुरे दिन बताकर नहीं आते हैं और अच्छा दिन के लिए मेहनत कभी काल करना भी पड़ता है। बस नजरिया के बात है। कल सुबह जो ओबामा स्ट्रीट में जो ओबामा प्लेन पे हर साल की तरह कार्यक्रम जरूर रखा जाएगा, सुबह से कार्यक्रम वहां पर
1: के आलम में
0: अपने यानी कि माताओं पिताओं भाइयों बहनों जिसके जिस जिन्होंने इस बात पर कभी अपने जो पुरखों जो भारत से आए थे कभी उससे बात किए होंगे तो बहुत कम बचे होंगे, क्योंकि आजकल जो फैफ द सस द खे नरासी हमारे जो चल रहा है।
1: अभी जिंदा हो तो जी लेने दो,
0: और अभी जिंदा हो तो जी लेने दो, अगर जो अभी अपने आज ही आजा नानी नाना कोई भी होगा तो उनसे जरूर संपर्क करें, उनसे बात करिए कि हमारे पुरखों के बारे में कुछ बताइए ताकि आपको पता चल सके।

कहा जाता है कि भरी बरसात में तो पी लेने दो और हमें जीने दो, पर ये बात में मत रहना, क्योंकि कहा गया है कि आज तक किसी जो पीने में दिल रखे है क्या कभी छोड़ पाए हैं। तो दोस्तों, कुमार शानू और रूप कुमार के आवाज में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने। और देखा जाए कि आज एक शुभ दिवस आपके प्रस्तुत हुए, और ये मत भूलना कि अगर आप जो फिल्म शोले भी देखे होंगे तो उसमें जब अमिताभ बच्चन अपना दोस्त धर्मेंद्र जी के लिए उनके हाथ मांगने के लिए मौसी के पास पहुंचे, तो मौसी से सब अच्छे अच्छे बातें और कर रहे थे अपने मित्र के लिए, पर उसमें एक संदेश जो जावद अफ्तर का और सलीम जी का लिखा हुआ डायलॉग्स में से मौसी जी के आवाज़ में हम सब सुने कि आज तक किसी का जुआ और ना किसी का दारू छूटा है। तो इस पे ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि दारू पीने वाले भी हर बार अगर कुछ दिनों के लिए छोड़ने के भी कोशिश में रहते हैं तो औरों को बार बार सुनाते रहते हैं कि भाई मैंने तो छोड़ दिया, और चाहे आप उस पे ध्यान ना दो फिर भी वो आपसे इसी इशारा करते रहते कि मैंने छोड़ दिया है। दोस्तों, एक अगला सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़ते हैं।

आर रहमान के आवाज़ में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने। मसा कली जो फिल्म में काम किए हैं अभिषेक बच्चन और सोनम कपूर, फिल्म दिल्ली 6 से निकाला गया ये सुंदर सा गीत। और ये कहना चाहूंगा कि क्यों ना थोड़ा सा अलग बने, क्यों ना थोड़ा सा अलग बने, खुश रहने की सलाह ना देकर खुश रहने की वजह बने। क्योंकि सलाह देने के लिए तो बहुत होते हैं, पर खुश रहने की वजह बहुत कम है।

सुना है कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। जैसे कि अभी आपने सुने कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है।

पा लेने के बेचैनी और खो देने का डर, बस इतना ही जिंदगी का सफर है दोस्तों। और जो कभी कुछ आप पा गए,

होने का डर, क्योंकि कहा गया है पा लेने का बेचैनी और खो देने का डर। हम इसी में लगे रहते हैं, बस इतना ही जिंदगी का सफर कहलाते हैं।

नुसरत और राहत फतेह अली खान की आवाज़ में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने। दोस्तों, कहा जाता है कि पत्तों ने रंग बदला और वो गिर गए, पत्तों ने रंग बदला और वो गिर गए, वरना पेड़ को संभालने में कोई दिक्कत नहीं थी।

सिंह चड्डास फिल्म से निकाला गया। ये सुंदर सा गीत और जो अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने इस अपना आवाज़ दिए, फिल्म में काम किए हैं आमिर खान और करीना कपूर।

दोस्तों, ज़िंदगी जीने के लिए अनेकों तरीका क्यों ना हो, जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, और क्यों ना अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को संतुष्ट मिले और दूसरों को कष्ट ना पहुंचे। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है, बलाइस्त्रन फिया इंटरनेट। दुनिया के हर एक देश में इसे सुना जा सकता है।

कहते हैं कि जीवन में एक बात तो तय है, जीवन में एक बात तो तय है कि हमारे अनुसार तय कुछ भी नहीं है, और जो तय है उसका हमें आभास भी नहीं है।

अपना बनाने की कसम खाई है। नाइन्टीज के रोमांटिक सॉन्ग से निकाला गया।

अपना बनाने की कसम खाई है और जो कसम खाया जाता है तो ऐसा वैसा चीज नहीं है जिसे शायद आप सोचे कि कसम खा लिए हैं और चलो उसे भूल जाना, क्योंकि ना संघर्ष खत्म होता है और ना शिकायतें। ना संघर्ष खत्म होता है और ना शिकायतें। एक चीज तो जरूर है कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है हमारी उम्र। धीरे धीरे जो खत्म हो रहे हैं वो हमारे उम्र है। आज कुछ पुराने गीत और कुछ 90s के रोमांटिक सॉन्ग के साथ मैं आपके साथ जुड़े रहे। यही आशा लेकर कि जरूर कुछ न कुछ इसमें से आपको अच्छा लगे होंगे।

फन होम के हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। ले तो निकलिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 2 तक 7 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

0: अपना सीना थाने।
1: सुनो वालो, ये बात है कि भाई यूसुफ जी जो अपने ओर से कार्यक्रम में और सहयोग दे रहे हैं और उनके सहयोगी साथी यहाँ कितने उपस्थित हो गए हैं, शांता जी है, बबली जी है और मैं खुद भी उपस्थित हो गए हैं कुछ पुराने गाने के साथ। पर यूसुफ जी ये तो बताइए, समय चल रहा है 2024 और आप क्यों पुराने गाने के साथ उपस्थित हो?
0: पुराना गाना में और मजा है और हम वही जमाना के बात ही पुराना गाना के

0: सुनने वालों कुछ पुराने गीतों के साथ हमारे भाई यूसुफ जी। जो हम सबके सफर की दुनिया में लेकर जाने वाले हैं। भाई यूसुफ जी गत दिनों आप सफर में लगे हुए हैं, ऐसा क्यों?
1: सफर में अब तो यही मौका है खाए पिए घूमे के।
0: अब तो यही मौका है खाए पिए घूमे के।

0: सुनो न, जैसे कि हमारे भाई यूसुफ जी, यूसुफ जी के ये कहना है कि अब वो समय है खाए पीकर और घूमने को। ऐसा आपने क्यों कह रहा है, ऐसा क्यों है भाई यूसुफ?
1: बात ऐसे है कि एक वक्त आता है कि 20-22 बरिस के बातें बिगिन कर ले काम करे क्या, तो 55 बरिस 7 बरिस तब स्टॉप हो देना। अब फिर तनी दुनिया के खबर अभी ले लो, चलो सफर पर।
0: दुनिया की खबर भी ले लो और चलो सफर पर। ये बताइए, गत दिनों रेडियो तो यहाँ लगातार 24 घंटा चलते रहते हैं, पर गत दिनों आप कहाँ सफर करके आए यूसुफ जी?
1: अमेरिका गए रेली, न्यूयॉर्क, ऑरलैंडो, मियामी, फिर बहामास एंड कैमन आइलैंड।
0: तो कैमन आइलैंड में आपको मगरमच्छ काटा नहीं?
1: जी ना, ये सब चीज मोई आइलैंड हैगा, टूरिस्टिस
0: टूरिस्टिस आइलैंड।
1: और न्यूयॉर्क से हम लोग क्रूज कर ली है 8 रोज।
0: न्यूयॉर्क से आपने क्रूज किए हैं 8 दिन तक, और ऐसा ये क्रूज के बारे में सोरा हम सबको सुनाइए।
1: या ईसाइट क्रूज जो है वो ईसाइट एन हैगा, ढेर आदमी क्रूज करे हैं। एंड हमारी यही कहना है जे कर पाए है कुछ आमदनी करो, दैट इज संस्टुकी पैराडाइस ऑफ अर्थ।
0: अतिसंस्टुकी पैराडाइस ऑफ अर्थ।
1: ग्रोट स्किप बरका है 385 मीटर, 19 verdiepingen, met we zaten met 5200 आदमी रहा बोट में पैसेंजर्स, और 2300 बमानिस लीड कैप्टन जो काम करे हैं रेस्टोरेंट में, और जो बेद खुतुत सब सफाफा करे हैं, सब चीज करे हैं मन। दिस वो सातों बेना 7,500-8,000 मेंस ऑफ द बोट, एंड यू मेरक नेक्स्ट फन बोट चले को ना हल्पा ना कुछ।
0: इतना बड़ा जहाज होते हैं? हाँ,
1: बहुत, उससे और बड़का है।
0: और ऐसा आपने कभी आगे में भी किए थे या नहीं?
1: ये तीसरा बार है, दो नए और हो चुके हैं।
0: पर हमारे लॉयसरास जो इस समय सुन रहे हैं, उसे आप कौन सा संदेश देना चाहते हो?
1: हम लौट के लिए है तो ढेर आदमी बैल करी से हमें कि Hoe heb je het beleefd? Ik zeg heel goed. En een paar mensen hebben gezegd dat volgend jaar of de jaar daarop wel zoiets willen meemaken.
0: Dekhiye Yusuf bhai, hum Surinam mein hamare janam hua hai aur hum apna jo janam bhumi se jude hue hai aur log zyada tadad mein jab bhi vakansi hove aur fursat mile to apne parivar ke sath jate hain milne ko। पर जैसे कि आप कहते हैं ऐसा क्रूज, वहाँ आप सिर्फ वेकेशन पे जा रहे हैं, वहाँ कोई परिवार आदि मिलने का इच्छा थोड़ो है?
1: ना, ये है कि बोतिया में कैनस फ्रेंडशिप हो जाए, और हम लोग ना रह ले हिंदुस्तानी सूरीनाम के, और रहा इतरह के रहा आमस्टरडाम के रहा रईसवाई के बड़का परिवार रहा, और बोट में उतना आदमी जो रहा 30% पैसेंजर्स जो रहा वो हिंदुस्तानी रहा, ना सूरीनाम के, इंडिया के, मॉरिशियस के, ऑस्ट्रेलिया के, फिजी आइलैंड के, कनाडा, और 30% रहा चिनुआ मन।
0: 30%
1: 30% हिंदुस्तानी या?
0: चलो एक गीत की ओर बढ़ते हैं। मैं देख रहा हूँ आप जो पुराने गीतों को लेकर आए हैं,

0: भाई यूसुफ जी, जो सफ़र हमारे सफ़र किंग कहलाते हैं ना, क्योंकि आप हमारे साथ और हम सबको छोड़ छोड़ करके यहाँ से और सफ़र पे रहते हैं हर बार, अगला सफ़र किस ओर आपका है?
1: वो है 3-4 हफ्ता बाद, 3-4 वीक लातर नसेते को लास पाल्मास।
0: लास पाल्मास पे
1: मायोर्का एक आइलैंड है, तो 2 हफ्ता हो इसी बिताए।
0: और वहाँ किस कारण जा रहे हैं आप, वेकेशन या
1: फकांसी? फकांसी से।
0: फकांसी से। सुनो वालों, हमारे साथ शांता भी उपस्थित है स्टूडियो में।

0: सुनने वालों, हम यहाँ से भी उपस्थित हो गई हूँ, आकाश में आ गई हूँ, और स्वीकार कीजिए मेरे भी शांता की प्यार भरी राम राम नमस्कार और आदाब अर्श होवे। तो यहाँ से हम दूसरे कमरे में बैठे थे और सुन रहे थे कि हमारे अनाउंसर साथी जो हैगा योसेफ जी, वो क्रूस करके आई है। तो हाँ, जब मैं उनके तरफ देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ अगर मैं भी चाहती हूँ उनके तरह जैसे वो सफ़र कर रहे, कि उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर भी लगे, हम सब के ऊपर लगे, ताकि हम भी ऐसे निढड़क होकर सफ़र करें। तो मेरे ये सवाल है योसेफ जी के तरफ, हम उनके तरफ देख रहे हैं, उनकी तरफ ये सवाल भी भेज रही हूँ कि योसेफ जी, आपको ऐसा क्या उत्साह करी कि आप व्हाट यू इंस्पिरेट दैट यू निदखवोन फकांसी दूत मार अपार्ट फकांसी वाज यू दैट नेट हैड डन हैड क्रूस डन वन आसत वार आसे खुद है सैन वै सुरनाम से हिंदुस्तान एरदर खनेग ओम regelmatig naar Suriname te gaan en op de tweede plaats naar India en daarna volgt dan andere plaatsen zoals korte vakanties met busreizen. Maar wat heeft u zo geïnspireerd dat u nou een linkse weg hebt afgeslaan?
1: U zegt Suriname, het staat ook op mijn lijst, want in september ga ik naar Suriname, maar een tussendoor wil ik wel dan om de 2 of 3 jaar zo'n cruise doen. Dit is de 3e cruise van mij. En het is echt een hele belevenis. Je zit op zo'n groot schip, je leert mensen kennen. Vriendenkring wordt steeds groter. En je trekt samen met bepaalde mensen op. We waren met ons 2 en mijn dochter was er, mijn schoonzoon en kleinzoon. Wij waren met ons 5. En we hebben daar ook heel veel mensen van andere landen ontmoet. Ook Hindustanen en Nederlanders ook.

0: So immer dann immer die nicht kennt.
1: Ah, das mit anderen Worten, haben apan Sarnam ke Hindustani lon ke baat kari na. Aur anya befolkning ke hamot na jaane lo bar ke usap mein bhi aise hoga ki dad the drempa soms to hoch is om sulke stappe te nemen. Voor sommige mensen, maar so, vandaar dat we dit gesprek hier voeren, dat mensen dan laagdrempelig worden om deze stappen te nemen. Je zegt ook Kruisbuil of andere des jijke, jahan pe koi soche ki jahan pe bahut mushkil hoga baat karne mein of safar karne mein sab. Maar jab tak wo kadam aap nahi badhaoge, tab kaise janoge?
2: Kyunki agar aap chahe duniya ko dekhne ko तो कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा और जैसे कि शांता जी आप कह रहे हैं कि हम खास करके हम हिंदू लोग जो है तो शायद यही सोचते होंगे कि वहाँ जा कर के कैसे बातचीत करेंगे वहाँ जा कर के और कैसे अपना सफ़र कैसे और बढ़ाएंगे ना.
1: हाँ, और आसान एखलक कई प्रोग्राम है योसेफ जी के बर हम यहाँ पकड़
0: ठीक तब तब तब सवाल जवाब हम लोग दे ला तो सवाल जवाब हो है
1: ना. और इतना आसान भी हो गए है ना कि गूगल महाराज है
0: ऊपर सब चीज मिले.
1: ऊपर जाए से पहले अगर आप एक देश में जाना चाहते हो तो उस पर आप सर्च कर सकते हो खोज सकते हो कौन गली में आप रहोगे आपके होटल कहाँ पे रहेगा आपके होटल कैसे रहेगा और उस इर्द गिर्द में कौन सा चीज़ है कि आप कहाँ ऐसा जा सकते हैं वहाँ के पैसा कैसे है कहाँ की बदलना पड़ेगा यानी सब और जो आप उसको वहाँ उस देश के बोल बाला नहीं है ना तो उसके लिए भी गूगल महाराज में हैगा ट्रांसलेटर वो है जो आप हिंदुस्तानी में बात करोगे जैसे हम ऐसे बात करते हैं तो वो देश के जो भाषा है जैसे क्रोएशिया भल इंग्लैंड भल एंगल्स भल फ्रांस भल तो उस लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट कर देगा कि जो सामने रहेगा आप सवाल करोगे तो वो समझ जाएगा तो वो उस जवाब में देगा तो तुम्हारे लैंग्वेज में यानी तुम्हारे भाषा में वो तुमको बता देगा. इतने आसान हो गए.
2: क्यों ना एक गीत की ओर बढ़ते हैं और गीत का बोल क्या है कि सुहाना सफ़र

0: मौसम हसी
1: जी, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, और सफ़र करके आए हैं। अगर आप भी सफ़र करे होंगे तो आप भी फ़ोन करके बता सकते हो। पर हम चलते सुनने के लिए, अब तैयार हो गए हैं बबली जी, संजय जी, योसेफ जी। तो आप लोग भी बताइए क्या क्या सफ़र, कहाँ कहाँ सफ़र आप लोग ने किए।
2: शांता जी, सफ़र के बात ये है कि हमें तो सफ़र जब चाहे, मेरा भी दिल करता है सफ़र करने के, पर ये अभी जो हमारे साथी जो जा करके सफ़र करके आए कि क्रूज़ करके आए हैं, तो क्रूज़ में एक अहम एक हम लोग तो कितने सफ़र किए, कहीं सऊदी अरबिया तो कहीं इंडिया तो कहीं, बस वो फ्लाइट ले लो और वहाँ पहुँच जाओ। पर ये है कि आप पानी में जब हो और समुंदर में हो तो उसमें एक नीदरलैंड्स वर्ड है सही सीख नहीं होते,
3: नहीं नहीं एक को पते ना लगे है बहुत का है खरा है कि कहूँ रुकल है कुछ, एक को हल्पा ना कुछ हल्पा रहा खोलफो वारा तो सद सेफ आख नहीं हमें इधर हो और मत कुछ पते ना लगे भाई उतना वो भारी बहुत है।
2: तो इसमें कौन कौन सा फैसिलिटेटर रहता है एक एक, एक क्रूज शिप पे, जैसे कि स्पोर्ट आप मंगलो करे तो आप कौन सा स्पोर्ट वहाँ पर कर सकते हो?
3: ओमन हमारा वॉलीबॉल हुए ट्रेनिंग है सब करे हैं, और स्वयं बात है, बबल बात है, सौना है, आलस से तरफ अतेसन दौरप ऑफ सिक्स सेल्फ
2: पर जैसे आपने कहा कि क्रूज में कभी कभी तो हजारों तथा एक क्रूज जो स्टार्ट होता है तो हजारों के तादाद में लोग उसमें होते हैं।
3: जी हम लोग रही 5,200 आदमी पचास साल
2: 5,200
3: एंड बमाने से ले दवार में तो रेस्टोरेंट हो जो पकावे कावे है और जो बेडियो दी सफा करे उस सब रहा 2,200
2: तो देखा जाए तो लगभग 7,500 ऐसे आदमी एक क्रूज में हो सकते हैं। बबली जी, आप कब सफर करने वाले हैं?
4: अभी अभी मेरे को पता चला है, शायद अगले साल हम लोग जाएं क्रूज करने, जब बेटे की वोकेशन होगी तब।
2: शांता जी, क्या आप तैयारी भी कर चुके हैं या नहीं?
1: हम तो बहुत उत्साह हो गए हैं, अभी जैसे यूसुफ जी ने कहा है तो दिल मेरा बहुत सालों से कर रहे क्रूज करने के लिए। पर अगर एक ग्रुप से जाए या दो जने से जाए तो अच्छा लगता है।
2: अगर शांता जी, अगर इस कार्यक्रम में लोग फोन करने को इच्छा करते हैं तो कौन सा नंबर फोन कर सकते हैं?
1: आपने कुछ अच्छा बात की, अगर फोन करना चाहे तो हम देखे मेरे नाक के सामने हैगा, तो मैं आपसे बता दे कि आप अगर फोन करना चाहते हो तो जरूर से आप ये नंबर पर फोन कर सकते हैं 9712136598 पर, यानी कि एक बार हम यहाँ से दोहरा देते हैं 9712136598 पर। जी हाँ
2: जी हाँ, तो यूसुफ जी कुछ और सुनाइए अपना सफर के बारे में।
3: और कौन जी, तू लोग कुछ सवाल कर तो हम जवाब दे,
2: तू लोग कुछ सवाल कर तो हम जवाब दे। तो अब अभी आपने भी कहा सूरीनाम भी जाने वाले हैं आप,
3: सितंबर में
2: सूरीनाम में, पर आजकल तो मस्कीटो ज्यादा है ना, निकेरी में है परमारीबो में नहीं है, तो परमारीबो में नहीं आते,
3: बहुत कम है, बहुत कम थी,
2: एक दूसरे को प्रेम नहीं करते हो मस्कीटा लोग?
1: नहीं नहीं, सुनने वालों आप शायद भी सोचते होंगे कि यूसुफ जी कहते हैं कि निकेरी में है पर के सूरीनाम में नहीं है, हालांकि निकेरी भी सूरीनाम है, निकेरी भी सूरीनाम है, पहले बल्कि पहले के लोग निकेरी के निवासी लोग ऐसे ही कहते हैं कि निकेरी वो सब निकेरी कहते हैं और बैठता निकेरी तो वो सूरीनाम है।
3: हाँ, बोले मेरे को सूरीनाम,
1: या
3: बोले निकेरी कहाँ, तो सूरीनाम है।
2: यूसुफ भाई, शायद आपको इस बात को ख्याल होगा कि पहले जब निकेरी से लोग आते थे शहर में ना, यहाँ आकर के जैसे कि गए तो जैसे छोटे छोटे गांव होते थे, वेलकदाख बेई, बुद्धू पासी, कफड़िया पासी, मजिदिया पासी, ऐसी इधर यानी कि शहर से ना बहुत दूर, पर वहाँ पर गांव होते थे, सब रास्ता ऐसे जैसे कि आजकल हो गया पत्थर का रास्ता, वो नहीं होते थे, और सब में और एक चीज अहम होता था, पहले जो जा करके सभी अपने खेतों में जो धान उगाते थे ना
3: जी,
2: क्योंकि पहले ऐसे चावल हम नहीं खरीद सकते थे, पहले जो सभी अपने अपने परिवार के लिए धान खुद बोते थे। और ख़ास करके आजकल वो चीज़ देखने को नहीं मिलता है कि पहले जब देखा जाए, इस बात पे शायद कुछ लोग जो 50 साल से ऊपर होंगे तो ही शायद ख्याल कर पाएंगे कि घर ऐसा बनाया जाता था, पास में गाय पोसा जाता था और घर के ऊपर एक ऐसा स्थान बनाया जाता था जहाँ पर चावल का और बस्ता रखा जाता था, धान और बखार, और उसी के नीचे लोग रहते थे। उस प्रकार का घर बनता था ना, यानी कि ऊपर में जो चावल रखा जाता था और नीचे में जा कर के लोग रहते थे और पास में गाय आदि का, और यानी कि जो कुयस्ताल आदि होते थे तो वहाँ ऐसे इस प्रकार से बनता था। पर उस रकम का घर अब कहीं नहीं दिखता है,
1: नहीं बिल्कुल नहीं,
2: अब बिल्कुल नहीं दिखता है। और पर ये भी होता था कि वो जो ऊपर वाला भाग होते थे ना तो वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता था, लगभग उसमें 10-15 बस्ता और चावल रखते थे, धान कहते थे ना उसे,
3: पादी पादी,
2: पादी। और समय आने पे उसे और झुरवा करके और ले जाकर हर एक गाँव में, ज्यादा तादाद में गाँवों में, और एक का बोले पैल राइस पैल मोलन हुआ करते थे, और वो अपना एक साका एक बस्ता को और ले जा करके और वहाँ पैल करवा करके फिर उसके पास चावल हो जाता था। पर ये इन द यार एंड यार सेस तक बखेन यार सेवन तक में ये बस बिल्कुल धीरे धीरे एकदम खत्म हो गया,
3: बहुत कम थी।
2: चावल
3: निकेरी में है,
2: नहीं नहीं निकेरी दतवास आलताइत अनराइज डिस्ट्रिक्ट, पर जो परमारीबो अभी, पहले तो नाम परमारीबो अब कुछ और ज्यादा बढ़ गया है और वानिका रखा गया, पहले ये नाम वानिका था ही नहीं। उस समय की बात है कि उस प्रकार का घर अब हम लोग को देखने को मिलते नहीं। दत्वासन बिसोंद्र इंजीनियरिंग, और उसमें क्या था कि चावल जो एकदम जो धान है उसे गर्म रखने के लिए ऊपर में रखा जाता था ना, ताकि वो साल भर तलक और बढ़िया रहे। कैसे बोलते थे, ऐसे ऐसा है ना,
1: नहीं नहीं
3: महाराज चौरों मिलत रहा उपाधि के, हम लोग राइस पैन में जाते रहे और जैके घोड़ा रहा, गाय रहा, बकरी रहा, ऑफ कुछ ज्यादा गाय तो ओकर उ
1: पल पल वन जना
3: जन सेट मेल की कौन चीज हो रहा,
1: सेमल
3: सेमल, हां तो उस सब वो फोर दे रहा था धानो भगवो मिला तरह चौरो और इसी सेमल भी मिल जाता,
1: एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा
3: जानवर लोग
1: एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फूडिंग वो सब के हो जाता रहा, सेमल सेमल स्लैप मेल,
2: स्लैप मेल कहा जाता था ना,
1: स्लैप मेल
2: ऐसे ही कुछ
3: अंतर सुनान समा हम लोग सेमल बोलते रहे,
1: सेमल और स्लैप मेल
3: अपना है वो सब चीज ना मिले अब देखे
1: के, कारण कि हम कैसे जानी लो, हम लोग हम बाप लोग मुर्गी पोसत रहा तो रास मुर्गी तो हम बाप जा तक खरीद के लावे तो हम लोग तो बच्चे रहे तो हम लोग कब दरा खरे सवेरे संझा के दाना देवे के पानी में बाल्टी में धर के हम पानी और पानी में बाल्टी में स्लैप मेल या सेमल धर के तो के पानी से मैंग करके तो हम लोग जाए मुर्गी के दरबा में तो हम लोग धरी वो सब खाती।
2: चलो शांता जी आपने तो थोड़ा काम किए वहाँ सूरीनाम में, बबली जी ये बताइए आपने कभी अपने घर पे ऐसा काम किए कि नहीं।
4: मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, मेरे भैया वगैरह ने ये किया और मेरी बड़की माई ने, हमारे घर में भी मुर्गी थी पहले तो बड़की माई करते थे और भैया करते थे, उन्होंने मुर्गी के वो दाना देना और उनका घर साफ करना सब कुछ करना।
1: ये सब जी आप कैसे था आपका बचपन आपका ये कैसे
3: हम लोग
1: था?
3: तो परमारी को करे ले हम लोग, अब मैं बोल अब तदमी लोग बोली इतनी बार कही बताए हम वह हाथ कहीं प्रॉब्लम है दी देंगे हम लोग कभी काम हम ना कर लिया ना बोले गाय के हम लोग जाए हर्ष वारक बनाए के बदरेस में काम करो बाप के
1: अंदर
3: या
1: खेत में जाओ,
2: हाँ, और
1: पेड़ पे चढ़ो,
2: हाँ, और हाथ जकड़ जाओ तब कुंजी लगावल जाता हाथ में, मोको मोको मो और ऐसा, इन चीजों को आपने नहीं किया। बबली जी, आपने पता है कभी हाथ कटा आपका कि नहीं?
4: ना, मेरा कभी नहीं कटा, थोड़ा सा चक्कू लगा होगा लेकिन ज्यादा नहीं।
2: तो हम लोग के समय पे शांता जी, कभी हम लोग गाय का घास आदि और जब काटे तो कभी हंसुआ जब पजल रहे, हाँ, तो कुछ ज्यादा ही कट जाता था और कोई डॉक्टर के पास जाता ही नहीं था।
1: ना ना, में हम देख रहे थे, हम बाबूजी ने कोई टेंशन नहीं लेते, चलो चलो ठीक है, जाके मोको ऐसे काट के करो करो कर फैलवा जो है ना, खुरुच के एक थोड़ा से मासी मासी करके कर रसवा जो है ना, वही पे धर के भांग निकला दो रोज में। दो रोज
2: नहीं, और घास, लेकिन घास लेकर जाना था घर पे ना।
1: और वो भी ना, पहले तमाकू,
3: तमाकू है माते बोले,
1: ब्लाकते
3: ब्लाकते वाइटर
1: ब्लाकते पहले कहते ना, ब्लो ब्लो पाकी रहा इसे, तो उसको भी भेग भिगो कर और लगा देते थे, जहाँ जितना गहरा कटल लतरा उस पर लगा दो और दो रोज तीन रोज ऐसे प्रबंध कर दो, एकदम छुट्टी। कारण कि पहले के तम्बाकू और आज के तम्बाकू में बहुत अंतर है, पर इस साइड में बहुत सारे केमिकालियों में उनमें सब मैंग कर है, दोस्त एक सौ नित आ रहा दे आसुबा सेल्फ वेल प्रोबेरम होती हुआ सेल्फ, ये एक फ्राम तो ओडिंग नहीं हुआ ना, बोलिए कि ओ ये लड़कियाँ बोले रहा फाँ रेडियो पे तो हम जाए, नहीं नहीं नहीं, पहले के तम्बाकू में वो करके में दूसरा रकम था आज वाला। और बबली जी कुछ कहना चाहते हैं?
4: हाँ शांता जी, पहले की चीज़ें ज़्यादा असर करते थे, आजकल हर चीज़ में थोड़ी मिलावट है, खेमिस है, तो देरी से असर होता है।
1: हाँ, देरी से असर भी होता है, और अच्छा असर करेगा ये तो मुझे पता नहीं,
4: हाँ, उसकी गारंटी भी नहीं होती।
1: तो योसेफ जी, आप ये सब चीज से वंचित रह गए।
3: हम लोग तो नहीं, सुकवार में पोसहलीला वैसे बोली।
1: मतलब योसेफ जी, आप सुरीनाम में रहते, आपके कोई ऐसे परिवार ना था जो गांव में था, या बैत पारामारी वो जहाँ पे आप जाते?
3: बोना
1: सरनाम में बोला प्लटका बोंकी, गोलका बोंकी बोना।

0: सुनने वालों, हम कार्यक्रम जो भाई यूसुफ फाहोन वाला के साथ में जुड़े रहे, आशा ये रखता हूँ कि कार्यक्रम में कुछ न कुछ संदेश आप तक पहुँचे होंगे।
1: मैं सब सुनने वालों के, फाहोन के जितना सुनने वाले है, इति प्रेमी जान पे ताए रिश्तेदार सबके शुक्र अदा करेला और धन्यवाद।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तैयार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

0: कार्यक्रम जो यहाँ फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो से प्रस्तुत किया जा रहा है, फनकारों की दुनिया। दोस्तों सुनने वालों, यहाँ से कार्यक्रम जो प्रारंभ हो रहा है फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो से, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बबली आसरा जी, शांता खेमाई जी, और ख़ास करके आज हमारे साथ अनुराधा जी जो ये कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं। तो अनुराधा जी, आपको हम जरूर ये कहना चाहूँगा कि अच्छे कार्य करने वाला कभी सम्मान का और भूखा नहीं होता है, क्योंकि उसका कार्य खुद उसे सम्मान का पात्र बना देता है। और ऐसा सोच लेकर आपने हम सब के साथ सहयोग दिए हैं। तो पहला आवाज जो आपके और हम सब रेडियो फाहोन द्वारा आपका और सुनेंगे, तो आप अपना इंट्रो दीजिए।
1: धन्यवाद संजय जी, और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने मेरे को यहाँ पर आमंत्रित किया, और मैं कुछ थोड़ा सा आप लोग के साथ कुछ सुना सकूँ, कुछ बात कर सकूँ।
0: तो हमारे साथ आप जुड़ गए हैं, और आप हम सब के लिए भी जरूर कुछ ना कुछ सुनाएंगे। पर आज का कार्यक्रम में जो हम सब फनकारों की दुनिया लेकर आ रहे हैं, और उसमें ख़ास करके यश चोपड़ा के बारे में बातचीत होगा। यश चोपड़ा एक ऐसा और फनकार, ऐसा फिल्म डायरेक्टर जो हुए, बड़े बड़े पिक्चर, बड़े फिल्म बनाए। पर उस ओर बढ़ने से पहले बबली जी, आप अपना इंट्रो दीजिए, और शांता जो पैनल के पीछे बैठे हुए वो भी अपना पहले सहयोग देते हैं।
2: हाँ जी, जरूर। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

0: तो सुनने वालों, बबली जी भी अपना एंट्री दे चुके हैं और बबली जी के बाद में तो शांता खेमाई जी जो हमारे साथ बैठे हुए। तो शांता जी, आज फनकारों की दुनिया की ओर हम सब छलांग लगाने वाले हैं कि हमारे सुनने वालों क्या इसके बारे में क्या एक्सपेक्ट करेंगे।
1: तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे क्या मुझे को न पता, बस आप सुनते ही रहना हमारे साथ। जैसे सुने आपने खास व्यक्ति आई है अनुराधा जी, तो उसको भी हम साथ में मिलकर यहाँ प्रोग्राम बनाएंगे। पर उससे आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बताता है, मगर हंस के किया हुआ कार्य आपकी पहचान बताता है। इसी वाणी के साथ आपको हम यहाँ बहुत प्यार के साथ स्वागत कर रही हूँ, और स्वीकार कीजिए सेविका शांता की भी प्यार भरी राम राम प्रणाम।
0: सुने वालो, आप सुनते रहना यश छोपड़ा, जो जिनका जन्म पंजाब से हुए और उन्होंने जा कर के ऐसा बड़े बड़े पिक्चर हम सब के लिए बनाए, बड़े बड़े और फिल्मों जो जाने की आ फिल्म्स उन्होंने और बनाए, उसके बारे में हम सब अभी काफ़ी जानकारी सुनने वाले हैं। पर क्यों ना शांता जी, उसकी एक फिल्म का एक झलक हम सुनते हैं। फिल्म का जो वीर सारा से निकाला गया ना,
1: उनकी आवाज़ में, यश चोपड़ा जी की आवाज़ में,
0: जरूर यश चोपड़ा जी की आवाज़ में हमें, और उसका आवाज़ पहले सुनते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सुनते रहना सुनने वालों।

सुरमई से अंधेरे की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर

0: ये सारा से निकाला गया है ये फिल्म जो यश चोपड़ा जी ने बनाई, और उन्होंने जो नई खंतीन ट्वेन दर्तक में जन्म हुआ और जाकर के ट्वे दर्शन तोलफ में उनका और देहांत हो गया, उन्होंने कितने बड़े बड़े फिल्मों बनाए और जाकर के, और हमारे साथ जो आज के कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं, तो बबली जी यश चोपड़ा जी के क्या आप लेकर आए हैं हमारे सुनने वालों के लिए?
1: हाँ जी, यश चोपड़ा जी की जीवनी। यश चोपड़ा का जन्म 27 सितंबर 1932 को हुआ। हिंदी फिल्मों के वे प्रसिद्ध निर्देशक थे। बाद में उन्होंने कुछ अच्छी फिल्मों का निर्माण भी किया। उन्होंने अपने भाई बी आर चोपड़ा और आई एस जौहर के साथ बतौर सहायक निर्देशक फिल्म जगत में प्रवेश किया था। 1959 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म धूल का फूल बनाई थी। उसके बाद 1961 में धर्मपुत्र आई। 1965 में बनी फिल्म वक्त से उन्हें अपार शोहरत हासिल हुई। उन्हें फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कई पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुए। बॉलीवुड जगत से फिल्म फेयर पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अतिरिक्त भारत सरकार ने उन्हें 2005 में भारतीय सिनेमा के उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। यश चोपड़ा जी का जन्म 27 सितंबर 1932 लाहौर पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ और उनकी मृत्यु 21 अक्टूबर 2012 मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई। उनका पेशा था फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता व पटकथा लेखक, और उनका कार्यकाल था 1959 से 2012 तक।

0: यश चोपड़ा जी की शादी हुई, उनकी पत्नी का नाम था पामिला चोपड़ा और उनके दो बच्चे हैं आदित्य चोपड़ा और उदय चोपड़ा और उनके बड़े भाई का नाम है बी आर चोपड़ा। सुनने वालों, मैं आपको थोड़ी जानकारी देती हूँ यश चोपड़ा जी की जीवनी के बारे में कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया और कौन कौन सी फिल्में बनाई और उनके परिवार में कितने लोग थे और सारी बहुत सारी जानकारी। यश चोपड़ा ने हिंदी सिनेमा का रुख ही बदल दिया। शशि कपूर, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और शाहरुख खान को यश चोपड़ा अपनी ज़्यादातर फिल्मों में लेते थे। ये फिल्म स्टार उनके बहुत फेवरेट थे, उनकी हर फिल्म में ये लोग होते थे। सुनने वालों, यश चोपड़ा के फेवरेट दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान रहे और इनको लेकर यश चोपड़ा ने कई फिल्में बनाई। यश चोपड़ा की फिल्मों में रोमांटिक सीन बहुत दिलचस्प होते थे और वह अपनी हीरोइनों को शिफॉन की साड़ी के साथ बारिश में भिगवाते ज़रूर थे। उनके लिए खूबसूरत लड़की का मतलब तभी होता था जब वो शिफॉन के लिबास हो और इसी लिबास में वो अपने प्रेमी के करीब आए। यश चोपड़ा के बारे में कई किस्से हैं, चलिए मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। यश चोपड़ा जी की पत्नी का नाम था पामिला चोपड़ा और वह अपनी पत्नी का गाना फिल्म में ज़रूर रखते थे क्योंकि उनकी पत्नी को गाने का बहुत शौक था। और चांदनी फिल्म में आपने उसका गाना ज़रूर सुना होगा। और उनके बेटे थे आदित्य चोपड़ा और उदय चोपड़ा और उनके बड़े भाई थे बी आर चोपड़ा। यश चोपड़ा के पिता लाल विलायती राज चोपड़ा ब्रिटिश पंजाब एडमिशनरी में पे वे दी अकाउंट थे और पूरे परिवार के साथ जलंधर में रहते थे। यश चोपड़ा 8 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इनके सबसे बड़े भाई बी आर चोपड़ा इनसे 18 साल बड़े थे और वह हिंदी सिनेमा के पॉपुलर फिल्म मेकर थे। सुनने वालों, आपको पता होगा कि बी आर चोपड़ा जी ने बहुत सारी हिट फिल्में दी। वो ज़्यादातर समाज के ऊपर फिल्में बनाते थे। उन्होंने वक्त फिल्म बनाई और माँ भारत सीरियल बनाया है और निकाह फिल्म जो कि एक मुस्लिम फिल्म थी और उसमें दिखाया कि औरत को कैसे आदमी लोग तलाक दे देते हैं, वो उसके ऊपर थी। और एक उन्होंने फिल्म बनाई थी इंसाफ का तराजू, जीनत अमान और राज बब्बर को लेकर, और पद्मिनी कोल्हापुरी, वो भी उन्होंने औरत के ऊपर बनाई थी। यश चोपड़ा की शुरुआती पढ़ाई से ग्रेजुएशन जब जलंधर से हुआ लेकिन इंजीनियर की पढ़ाई इन्होंने लुधियाना से की थी। चोपड़ा और जौहर का रिश्ता इनके बी आर चोपड़ा और करण जौहर के दादा आई एस जौहर से चला आ रहा है। यश चोपड़ा के घर वाले उन्हें एक बड़ी कंपनी में जॉब करते देखना चाहते थे लेकिन उनका मन भाई के साथ फिल्मों में लगता था। इनके पिता इनके लिए तैयार नहीं थे तो माँ ने इन्हें मुंबई इनके भाई बी आर चोपड़ा के पास भेज दिया जिससे यश चोपड़ा का सपना पूरा हो सके। हर किसी की तरह इनका सपना भी हीरो बनने का था लेकिन बात नहीं बन पाई और इन्होंने अपने भाई को असिस्ट करना शुरू कर दिया। मगर साल 1959 में इन्होंने अपनी फिल्म धूल का फूल से निर्देशन की शुरुआत की। हालांकि इस फिल्म को उनके भाई बी आर चोपड़ा ने निर्मित किया था। यश चोपड़ा ने अपने भाई के प्रोडक्शन में धर्मपुत्र, इत्तेफाक, वक्त, आदमी,
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अल्फर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9765 3747। Of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Het kabinet zal niet aandringen op een alternatief voor de snelle stijging van de AOW-leeftijd. Dat heeft minister Hans Velbrief van Sociale Zaken duidelijk gemaakt in een Kamerdebat over de ruzie tussen het kabinet en bonden over de sociale zekerheid. De Drentse gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. En dan het weer. Vanavond nog kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen in het oosten, vooral in de middag, kans op enkele buien. Het wordt morgen ongeveer 18 graden.
2: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Hari kaam ke liye, har advertensi ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 0703652247। मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl. Of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Het kabinet zal niet aandringen op een alternatief voor de snelle stijging van de AOW-leeftijd.

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 20 6 9 8। फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ प्रोग्राम लेकर स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया।

सुनने वालों, मैं आप सबको स्वप्न विज्ञान में से कुछ वृत्तांत सुना रही हूँ, यानी सपने, कि जो लोगों ने सपने देखे और उनको सपने आए उनका क्या महत्व था। पिता द्वारा पुत्रों का कत्ल। मैनचेस्टर शहर में एक महिला ने स्वप्न में देखा कि उसका पति उसके दो बच्चों को चेस्टर सिटी के भयानक खंडहर में जान से मार रहा है। वह चिल्लाकर नींद से जाग गई और पुलिस को साथ लेकर खंडहर ढूंढ निकाला। तलाश के बाद वहां से बच्चों की हड्डियां प्राप्त होने पर पति को जेल हो गई।

अब मैं एक और वृत्तांत आपके लिए रखती हूँ, मृतक पुत्र के जलने की चेतावनी। एक दिन रात्रि में सिंह मान फ्राइड के एक मित्र के बेटे का देहांत हो गया। सुबह अंतिम संस्कार हेतु रखे शव के चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी और पहरेदार को वहां छोड़कर पिता दूसरे कमरे में सोने के लिए चले गए, जिसने एक स्वप्न में देखा कि उसका मरा हुआ पुत्र उसके पास खड़ा हुआ कह रहा है, क्या मुझे ऐसे ही जलने दोगे? पिता ने जागकर बाहर आकर देखा तो एक मोमबत्ती गिरने से शव का कान जलने लगा था। थोड़ा विलंब होता तो शव के साथ वह मकान भी जल जाता।

सुनने वालों, अब मैं एक और आपको सपने के बारे में बताती हूँ जो टीपू सुल्तान को आया। टीपू सुल्तान मुगल बादशाह हुए हैं, एक सुल्तान हुए हैं बहुत बड़े, टीपू सुल्तान तथा कांच की खान। टीपू सुल्तान ने रात में देखा कि एक बूढ़ा कांच का एक पत्थर लेकर उसके पास आया और बोला, सेलन के पास जो पहाड़ है वहाँ कांच की खान है, यह कांच मैं वहीं से लाया हूँ। इस तरह सुनते ही उसकी नींद खुल गई और वहाँ कांच की खान मिल गई।

सुनने वालों, एक डॉक्टर फिशर हुए हैं, वो कहते हैं कि एक स्थान पर प्रेत आत्मा का होना, जब एक स्त्री एक विशेष स्थान पर सोती थी तो उसे एहसास होता था कि उस पर कोई झपटा रहा है। तलाश करने पर पता चला कि यह स्त्री जिस स्थान पर सोती थी उस स्थान पर एक मनुष्य ने एक नवयुवना का गला घोंटकर खून किया था। स्थान विशेष में मानवीय विद्युत कंपन लंबे समय तक रहते हैं। शमशान की भयानकता एवं देव मंदिर की पवित्रता उसकी साक्षी होती है।

सुनने वालों, अब मैं आपको सुनाती हूँ भगवान महावीर पर 14 स्वप्नों का प्रभाव। भगवान महावीर बहुत बड़े भगवान हुए हैं, उनको 14 सपने आए। भगवान महावीर के जन्म के पहले रानी त्रिशाला ने 14 स्वप्न देखे थे। पहले में एरावत हाथी, दूसरे में सफ़ेद बैल, तीसरे में शेर, चौथे में लक्ष्मी जी, पाँचवें में फूलों की माला, छठे में पूरा चांद, सातवें में सूर्य दर्शन, आठवें में पानी से भरा कलश, नौवें में नील सरोवर, दसवें में बहता सागर, ग्यारहवें में सिंहासन, बारहवें में देवव्रत, तेरहवें में रतन राशि, चौदहवें में धुआं मुक्त अग्नि। भगवान महावीर का जीवन इन 14 स्वप्नों के अनुकूल, स्वप्न के हर प्रतीक के अनुसार इस प्रकार था। हाथी धैर्य मर्यादा, एक बड़प्पन का प्रतीक, महान धर्मात्मा, अनंत शक्तियों का स्वामी, मोक्ष प्राप्त करने वाला, अनासक्त ज्ञानी, सुख शांति का उपदेशक, महान गुणवान, शांत गंभीर, त्रिकलाज्ञ एवं देवता। महावीर जी, भगवान महावीर बहुत अच्छे गुणवानी, संतोषी और एक अच्छे भगवान हुए हैं।

ये है फाहून हिंदुस्तानी रेडियो, आप सब सुन रहे हैं फाहून हिंदुस्तानी रेडियो। सुनने वालों, पिछले बार मैंने आप सबको फड़कने के बारे में बताया था कि अंग फड़कते हैं तो उन सब का क्या मतलब है, जैसे सिर का फड़कना, नेत्रों का फड़कना आदि आदि। तो आज हम चलिए कंधों का फड़कना कि जब कंधे फड़कते हैं तो उसमें से क्या क्या लाभ होता है या हानि होती है। कंधों का फड़कना, जब दायां कंधा फड़कता है तो बहुत शुभ, शीघ्र ही धन, वैभव और सम्मान और बिछड़े भाई से मिलन होता है। और जब बायां कंधा फड़कता है तो रक्त या वात संबंधी रोग होते हैं। पीठ का फड़कना, जब दाई तरफ पीठ फड़कती है तो राज सम्मान मिलता है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। और जब बाई तरफ पीठ फड़कती है तो अशुभ है, मुकदमे में लड़ाई में हार होती है। जब ऊपरी भाग का कंधा फड़कता है तो धन की प्राप्ति होती है। अब निचला कंधा फड़कता है तो बहुत से अनुयायी काम होते हैं।

घुटनों का फड़कना। सुनने वालों, हमारे घुटने जो हैं वो भी कभी भी फड़कने लग जाते हैं। जब दायां घुटना फड़कता है तो स्वर्ण प्राप्ति होती है, जब दाएं का निचला भाग फड़कता है तो शत्रु का सामना करना पड़ता है, और बाएं का निचला भाग फड़कता है तो कार्य पूर्ण होते हैं। सुनने वालों,

गर्दन का फड़कना। सुनने वालों, हमारी जो गर्दन है जिसे आप लोग नेक कहते हैं वो भी कभी कभी फड़कती है। तो गर्दन के फड़कने से विदेश यात्रा उपरांत धन कमाकर कुशलतापूर्वक लौट आता है। कान का फड़कना। सुनने वालों, हम सब के कान भी कभी कभी फड़कते हैं तो उसका भी कोई ना कोई मतलब होता है। जब हम लोगों का दायां कान फड़कता है तो हम लोगों को शुभ समाचार मिलते हैं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जब हम लोगों का बायां कान फड़कता है तो प्रियजन से मिलन मेल होता है। जब हमारे कान का पिछला भाग फड़कता है तो मित्र शत्रुवाद व्यवहार करते हैं।

बोहों का फड़कना, सुनने वाले बोहें कहते हैं वैन ब्रो को, वो भी हमारी कभी भी फड़कती हैं लेकिन हम लोग जान नहीं पाते कि वो कब फड़कती हैं। जब हम लोगों की दाई वैन ब्रो फड़कती है तो हमें इज्जत शोहरत मिलती है, जब बाई फड़कती है तो मित्र मिलन, अपने मित्रों से मिलाप होता है। गाल का फड़कना, जब गाल भी फड़कते हैं सुनने वालों, जब हमारा दायां गाल फड़कता है तो विलंब से स्वास्थ्य लाभ की स्वास्थ्य में लाभ हमें देरी से मिलता है, और जब बायां गाल फड़कता है तो काम में विघ्न बाधा तथा चिंताजनक समाचार, कन्या का जन्म या कन्या से शुभ समाचार मिलते हैं। अब जो दोनों समान फड़कते हैं तो अतुल धन की प्राप्ति होती है, तो हम लोगों को ढेर सारा धन प्राप्त होता है सुनने वालों।

ये है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सब सुन रहे हैं स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि नाक का फड़कना, सुनने वालों जब हम लोगों का नाक फड़कता है तो हमें क्या क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, लेकिन हम लोग जान नहीं पाते कि हम लोगों का नाक कब फड़कता है। व्यवसाय की वृद्धि होती है, किसी से झगड़ा होता है, आने वाले संकट रोग की सूचना मिलती है, अनेक प्रकार से सुख मिलते हैं।

करने वालों अपने शरीर के सभी अंग फड़कते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वो कब फड़कते हैं। अब मैं आपको सुनाती हूँ मुंह का फड़कना। हम लोग के मुंह भी फड़कते हैं सुनने वालों। आचार मिलता है, सुखों की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है। होंठ का फड़कना, जब हम लोग के होंठ फड़कते हैं तब हमें सुख समाचार मिलता है, शत्रुओं से समझौता होता है, हितेशी का आगमन होता है कि जो हमारा कोई अपना जानने पहचानने वाला है वो हमारे घर पर आते हैं।

सुनने वालों, अब मैं आपको सुनाती हूँ कि भोजन करते समय कौन कौन से शगुन होते हैं और उसमें से कौन से अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं। यदि भोजन करते समय सामने ही बिल्ली आ जाए तो शुभ नहीं होता, कुत्ते का रोना सुनाई दे तो अधिक अशुभ होता है। जब हम भोजन कर रहे हैं और कुत्ता रोता है तो वो शुभ नहीं होता सुनने वालों, अशुभ होता है, ग्रह क्लेश उपस्थित हो जाए, अन्न संकट है, रुदान का शब्द सुनाई दे। जब कोई रोता है तो स्वास्थ्य की हानि होती है सुनने वालों, उबकाई आने लगे। जब हमें खाना खाते खाते हम उबासी लेते हैं तो हमें अधिक नहीं खाना चाहिए, तो उसका मतलब है पेट भर गया हमारा। कुत्ता भौंकने लगे, अनाज की चोरी होती है। जब कुत्ता भौंकने लग जाता है तो अनाज चोरी होने का डर रहता है। काली चिड़िया शरीर पर बैठ जाए, सामान्य जब काली चिड़िया कभी शरीर पर बैठ जाए तो वो ना हानि है ना लाभ है सुनने वालों। पकती रोटी अधिक जल जाए, अन्न नष्ट हो। जब हमारी रोटी बनाते बनाते ज़्यादा जल जाती है तो हमारे अन्न का नाश होता है सुनने वालों।

सुनने वालों, जब हम लोग घर पर भोजन करते हैं तो क्या हमें जूते पहनकर भोजन करना चाहिए कि जूता खोलकर भोजन करना चाहिए कि जूते उतार के भोजन करना चाहिए? अब मैं थोड़ा सा वो आपको बताती हूँ सुनने वालों। जब व्यक्ति भोजन करता है तो अपने शरीर में एक विशेष ऊष्मा को संचित करता है। भोजन करते समय जो कैलोरी या ऊष्मा मुंह के द्वारा शरीर में जाती है तो उसमें एक विशेष विद्युत का निर्माण होता है। यदि इस विद्युत का पृथ्वी से संबंध हो जाता है तो उसे पूरा परिपथ मिल जाता है और वह जो भी भोजन करता है उससे पूरी शक्ति प्राप्त होती है। जब हम नंगे पांव बैठते हैं तो हमारे पैर पृथ्वी से स्पर्श करते हैं, फलस्वरूप हमें आर्थिक मिलती रहती है। परंतु जूते पहने होने पर चमड़ा विद्युत अवरोधक बन जाता है और भोजन करते समय जो ऊर्जा या विद्युत पैदा होती है उसे अर्थ ना मिलने के कारण उसका प्रवाह विपरीत हो जाता है और जो भोजन किया जाता है वह विषैला बनकर शरीर को हानि पहुंचाता है। इस प्रकार जूते पहनकर भोजन करने वालों को गैस, कब्ज आदि रोगों की शिकायत बनी रहती है।

सुनने वालों, ये स्वप्न विज्ञान है। मैं आप सबको सुना रही हूँ सपनों की दुनिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब हम रात को सोने जाते हैं तो जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं या सुनाई देती हैं उन सब का क्या मतलब है, कि वो शुभ हैं कि अशुभ हैं। सुनने वालों, जब हम रात्रि में सोने जाते हैं तो जब हम लोगों को शंख ध्वनि सुनाई दे, बैल की हुंकार सुनाई दे, वीणा का शब्द सुनाई दे, तो उन सब का शुभ मतलब है कि वो सब अच्छी चीज़ें हैं। जब हम अपने बेड पर बैठते हैं या चारपाई पर बैठते हैं, अगर चूहा दिखाई दे तो वो भी शुभ है। सुनने वालों, घर में प्रसन्नता का वातावरण हो तो वो भी लाभकारी है। जब सब घर के सदस्य हंसते हैं और हमें लाभ मिलता है, हम लोगों को अच्छी नींद आती है। सुनने वालों, अगर पत्नी की आँख में आंसू हो तो वो अपशकुन है। गीदड़ बोले या कुत्ता भौंके तो चोरी का भय रहता है। रात को जब हम सोते हैं सुनने वालों, अगर कुत्ता भौंके तो उससे हमें चोरी का भय रहता है। बिल्ली या कुत्ता लेटा हो तो अच्छा नहीं होता। घर की पालतू गाय सहसा रो पड़े तो वो अपशकुन होता है। अगर घर में हमारे गाय हैं तो अगर वो रो पड़े तो वो अपशकुन कहलाता है। पलंग पर छिपकली पाँव की तरफ भाग जाए तो वो शुभ है। कोई पान या सुपारी लाकर दे तो वो भी शुभ है। सुनने वालों, कोई सामने छींक दे, अच्छा शकुन नहीं है।

यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रख लेते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच सकते हैं। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा।

और आज भी हम आप लोग को करीब एक घंटा कुछ हिट सॉन्ग सुनाएंगे, और वो कौन सा सॉन्ग होगा? कुछ मोहम्मद रफी का, परमा श्री मोहम्मद रफी का हॉट सॉन्ग, और कुछ माइथी मुकेश का सॉन्ग आपको हम आज सुनाएंगे। आओ बढ़ा जाए, सबसे पहला सॉन्ग की ओर हम चलते हैं, और वो है माइथी मुकेश का, ये सॉन्ग है, फिल्म के नाम है पूरब और पश्चिम।

कोई जब हमारा कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। और ये फिल्म कलाम है पूरब और पश्चिम, जिसमें मनोज कुमार ने काम किया है। कितने लोग इस फिल्म को देखकर बहुत प्रसन्न किया है। और फिल्म पूरब और पश्चिम में जिसने माइती मुकेश ने काम किया है दोस्तों। और अगला गीत की ओर हम जाते हैं, वो है परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सॉन्ग है प्यार का सागर, जिसमें मीना कुमारी राजेंद्र कुमार ने काम किया है। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले कौन है, आओ सुना जाए।

और मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले कौन हैं आपको तो पता है। आज कुछ पद्मश्री मोहम्मद रफी का गाना और नायती मुकेश के गीत से आपको हम सेवा करेंगे हमारे दोस्तों। और दोस्तों जैसे आपको पता है हम चलते हैं फिर से एक फिल्म के नाम है मिलन, जिसमें नायती मुकेश ने इस सॉन्ग को गाया है नी खतिर हों जीवन शस्त्र का। ये गीत है मैं तो दीवाना दीवाना और दीवाना लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का और ये जंग है।

और आपको आज हम दोस्तों पद्माश्री मोहम्मद रफी का गीत और यानी कि माइती मुकेश का गीत आज हम आप लोग को सुनाएंगे। तो एक माइती मुकेश का, तो अब हम जाते हैं पद्माश्री मोहम्मद रफी का और मूवी का नाम है घराना निहत हो का गीत है, जिसमें पद्माश्री मोहम्मद रफी आशा जी ने और इस गीत को बहुत खूबी से गाया है। इस एन हिट सॉन्ग जिसमें राजेंद्र कुमार आशा परीख ने काम किया है, आओ सुना जाए।

और जब से तुम्हें हमने देखा है, अगर ये आपको हमने जब से देखा है तो सिर्फ आंखों में कौन है, तुम ही तुम हो। तो दोस्तों आगे तो अगला गीत की ओर हम बढ़ते हैं, तो हम तरुण जाते हैं ओल्ड इन गोल्ड जोंग, और है माइटी मुकेश ए नाइटिंगेल लता मंगेशकर का ये जोंग है। फिल्म के नाम है हम तो तेरे आशिक है, हम तो तेरे आशिक है, और देखो क्या गाया है।

Our movie can arm hit those two first 1967 gig. But ma Janiki, mighty mukis, oh nighty gil, lataji ka song hai, ham to tiri aashik hai, song ka naam hai dosto, aur aap jante hai, aaj hum aapko khushi karenge, aur wo hai Dal Mensidi, fan, literature fan, mighty mukis, and Mohammad Rafi, par ma shri Mohammad Rafi ko geet ko pasand karte hai, aap sab ke liye, aaj aapko hum mauka deti hai, ki ye dono ko geet aap suniye, to hum chalte hai, ab बारी है अब की बारी है परमा श्री मोहम्मद रफी और आशा जी भी साथ में हैं मूवी का नाम है कश्मीर की कली

और दीवाना हुआ बादल। फरमाइश श्री मोहम्मद रफी आशा भोसले का ये गीत है, मूवी के नाम है कश्मीरी, कश्मीर की कली दोस्तों, जिसमें शमी कपूर और शर्मिला टैगोर ने काम किया है हमारे दोस्तों। उसके बाद तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो भी है, वो है मधु मुकेश का, ये सॉन्ग है और इस फिल्म में मनोज कुमार ने काम किया है। फिल्म के नाम है हिमालय की गोद में, माला सिन्हा और मनोज कुमार ने काम किया है। मैकी मुकेश का एक टॉप सॉन्ग यहां से हम चलाते हैं।

और मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। ख्वाब से कहाँ प्यार करते हैं लोग, ख्वाब में रोक सिर्फ ख्वाबों में गुम रहते हैं। तो मुकेश की बात में और हम चलते हैं परमा श्री मोहम्मद रफी की और हम जाते हैं दोस्तों। और आशा जी इस गीत में काम किया, ओल्ड इज गोल्ड क्लासिक सॉन्ग। और ये मेरे हाथ में तेरे हाथ, जिस फिल्म में शर्मिला टैगोर ने काम किया है दोस्तों, मूवी के नाम है कश्मीर की कली।

मोहम्मद रफी जी, परमा श्री मोहम्मद रफी जी और आशा जी क्या करते हैं। वाह वाह वाह, तो अगला गीत की ओर हम जाते हैं और वो गीत तो होगा मैथिली मुकेश का, ये सॉन्ग है हमारे यारो, और ये गीत जो है ये फिल्म के नाम है हरियाली और रास्ता का, ये सॉन्ग जो है एक सुपर हिट सॉन्ग है मुकेश का, मैथिली मुकेश और नाइटिंगेल लता का ये गाय

एक नहीं ढूंढे ना मिला, तारो गिना एक नहीं मिला। और क्या क्या क्या माइती मुकेश और यानी कि लता जी, नाइती की लता जी आपकी सुनाई हैं हमारे दोस्तों। तो हम आपको सुनाते हैं, फिल्म के नाम है हरियाली और रास्ता, निखिल रोंद त्वेन सस्ता का फिल्म है जिसमें मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। और यहाँ पे बताए गए है माइती मुकेश एंड नाइटिंगेल लता मंगेशकर का सॉन्ग है।

0: वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरुमे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा रुब्ररू मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। स्वाहो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए आज हम सब फिर एक बार उपस्थित हो गए हैं स्टूडियो में। हमारे साथ एंट्री देने वाले हैं शांता जी, फिर उसके बाद में बबली जी, और हमारे पनेल के पीछे हमारे भाई राजेंद्र जी जो इस समय बैठ चुके हैं। तो अभी धीरे धीरे हम सब कार्यक्रम में एंट्री करते हैं और फिर कार्यक्रम के विषय की ओर बढ़ने वाले हम सब।
1: हाँ जी, कहते हैं कि कर्म अच्छा हो तो वही धर्म बन जाता है, कर्म अच्छा हो तो वही धर्म बन जाता है, ऐसा इंसान ईश्वर का भक्त बन जाता है। आप सभी फाहर रेडियो के सुनने वालों हार्दिक से स्वागत है और स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम।
2: दर्द कम करना है तो उसे समेट कर मत रखो, उसे बह जाने दो, क्योंकि आँखें हमारे दिल का आईना है। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार।
3: बबली जी ने भी दर्द की बात बताई है, तो दर्द ना चाहिए किसी को। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से यानी राजेंद्र सिंह की तरफ से हार्दिक नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम है वो बड़ा ही विशाल कार्यक्रम होने वाला है, और उस कार्यक्रम के जो रूपरेखा रहेगी,
0: तो रूपरेखा की ओर बढ़ने से पहले राजेंद्र जी, पहले हम चला देते हैं वो गीत जिनका इंतजार हमारे सभी सुनने वालों हर हफ्ता करते हैं।
3: हाँ,
0: तेरा राम जी करे बेड़ा पार जिसका मन अभी उदास है, तो राम जी हम सबका बेड़ा पार तो अवश्य करते रहेंगे, पर पहले वो गीत जो हरिओम सरन जी ने हम सबको लिए छोड़कर गए हैं, पहले हम वो सुन लेते हैं, फिर उसके बाद में विषय की ओर छलांग लगाते हैं।

0: तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे। जब राम जी बेड़ा पार कर लेते हैं तो उदासी मन को न चाहे डरे किसी से। उदासी मन तब नहीं डरता जब किसी का बेड़ा पार हो जाता है। तो आज का जो विषय था हमारा पुराना समय और कनक भवन, अयोध्या का कनक भवन। तो अयोध्या का कनक भवन कैसे रहा इस बारे में बातचीत रहेगा, लेकिन उससे पहले पुराना समय कैसे रहता था उसके बारे में थोड़ा सा एक चर्चा, इसके बाद रहेगा विषय की ओर बढ़ेंगे आगे। तन ढकने को कपड़े न थे, फिर भी लोग तन ढकने का प्रयास करते थे। आज कपड़ों के भंडार हैं, फिर भी तन दिखाने का प्रयास करते हैं। समाज जो सभ्य हो गया है, जो समाज आजकल का वो थोड़ा सा अलग हो गया है, और उस हिसाब से ये कविता के माध्यम से समझाया जा रहा है। समय पुराना था, आवागमन के साधन कम थे, फिर भी लोग परिजनों से मिला करते थे। आज आवागमन के साधनों की भरमार है, फिर भी लोग न मिलने का बहाना बनाते हैं। समय जो सभ्य हो गया है।
1: तो राजेंद्र जी, जैसे कि अभी आपने कह रहे थे कि पहले समय, जरूर समय बदल गया है, और ये भी हमें जानना है कि समय के साथ साथ कुछ कुछ चीज में भी तरक्की होता है ना।
0: हाँ,
1: और कुछ कुछ चीजें जो अब नया फैशन आ गया है, आजकल जींस जिसमें होल नहीं है वो कोई नहीं खरीदते।
0: हाँ,
1: शांता जी भी नहीं खरीदता
0: ना, कोई नहीं
1: ना। तो जीन्स जो हो और जिसमें छेद ना हो,
0: हाँ,
1: तो वो नहीं बिकेगा, तो वो भी तो नहीं चलेगा ना
0: ना।
1: तो जरूर संदेश हमारा ये है कि पहले जो नहीं था तो लोग अपना और बदन के लिए इतना व्यवस्था कर लेते थे, पर आजकल ये जो हो गया है कि फैशन ऐसा बन गया है जिसे जा कर के बस कैसे कहा जाए इसे, कि शरीर दिखाने के लिए। कि
2: अगर हम सोचे देखे तो पहले जिनके पास कपड़ा नहीं होता था, गरीब जो होते थे, तो वो फटे पुराने बस पहन लेते थे। तो ये विज्ञान लोग जो है ना, जो डिजाइनर लोग हैं, वो जाकर वही सब चीज़ लेकर और यहाँ फैशन में डाल दी। तो कैसे कहे कि धनी वाला गरीब है या गरीब वाला गरीब है,
1: ये एक मुश्किल बात हो जाता है कि धनी वाला गरीब है या गरीब वाला, कैसे आपने कहा कि वो
2: गरीब वाला गरीब है।
1: हाँ, तो सोचने की बात हो जाता है। राजेंद्र जी, हमारा जो ये पुराना समय के बारे में आपने कुछ छेड़ी दिए हैं, तो जरूर आगे बढ़ते हैं कि क्या संदेश और है।
0: संदेश है कि समय जो पुराना था, घर की बेटी पूरे गाँव की बेटी होती थी, आज की बेटी पड़ोसी से ही असुरक्षित है। समय सभ्य जो हो गया है। समय पुराना था, लोग नगर मोहल्ले के बुजुर्गों का हालचाल पूछते थे, आज माँ बाप तक को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। समय जो सभ्य हो गया है।
1: समय जो सभ्य हो गया है और माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल देते, तो ये तो जरूर एक सोचने वाला बात है। पर क्या हम माँ बाप तथा अपने वृद्धों को और वृद्ध आश्रम में डालने से और बढ़िया होता है या उसके और खराबी होता है?
0: खराबी होता है। माँ बाप को वृद्ध आश्रम में न चाहे डालना, उनका सेवा सत्कार अपने घर में ही चाहे करना, क्योंकि वो देखेंगे अपने परिवार को तो वो और लंबे समय तक जिएंगे और अच्छे से रह सकते हैं। जब वृद्ध आश्रम में जाते हैं तो वहाँ एकदम अकेले हो जाते हैं और उनको, मुझे लगता है कि अच्छा नहीं लगता होगा।
1: राजेंद्र जी, ये बात भी हो जाता है कि आप जब अपने घर से कितने यहाँ हॉलैंड में एक ऐसा देश है, यहाँ इतना ज़्यादा तादाद में व्यवस्था किया गया है ना कि आप अपने बुढ़ापे पे भी अपने घर से रह सकते हो।
0: हाँ।
1: और काफ़ी जैसे का बोले उसे शांता जी, आन लोइन वोनेगा तथा और वहाँ आप अपने से खाना बना सकते हैं और अपने को सुरक्षित रह सकते हैं। पर ऐसा भी है कि कभी काल के जो हमारे यहाँ के आश्रमों बनाया गया है, जैसे हॉलैंड में, भारत में तो कुछ और तरीका से है, पर वहाँ पर कुछ कुछ चीजें रखा जाता है, कुछ कुछ एक्टिविटाइट रखा जाता है, जिसमें हमारे पुरखों तथा हमारे माँ बाप लोग और पिताए जा करके उसमें भाग ले सकते हैं ना, तो उसमें उसका दिल भी बहतनी हल्का होता कि नहीं?
0: हाँ, हल्का होता है।
1: दख बस्ती देन उसे कहते हैं। और खास करके हॉलैंड में जितना व्यवस्था बनाया गया है हमारे बूढ़ों के लिए, अब वैसे तो यहाँ बूढ़ा किसी को कह देना, बुजुर्ग को किसी को कह देना तो वो दूसरे आंखी से देखने लगता है। हाँ,
2: समय बदल गया।
1: तो पर फिर भी कहने के तात्पर्य ये है कि अरसाइन सौ फेल मोख लखे दे, जैसे कि हमारे बस आदि में पहले बस होते थे जिसे हम दो सीढ़ी तीन सीढ़ी चढ़ के अंदर जाते थे, आजकल हमें हमारे बस ऐसा बना दिया गया है, हमारे त्रोतवार ऐसा बनाया जाता है जिसे हमें बिल्कुल तकलीफ ना हो। हॉलैंड में ऐसे बनते जा रहा है व्यवस्था और बढ़िया होते जा रहा है। पर ख़ास करके ये है कि गत दिनों कुछ व्हाट्सएप बरेख आया राजेंद्र जी हमारे पास, व्हाट्सएप बरेख आया, उसमें कहा कि भाई मैंने आज रात में बहुत देर से घर से निकला, तो मैंने मुझे ये लगा कि ये कह क्या रहे हैं, तो उन्होंने ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम को सुन करके और अपना बदलाव लाया है कि उन्होंने ये कहा हमसे, क्योंकि हमने समझा नहीं था, तो जरूर उनसे प्रश्न किया कि बात क्या है भाई, तो उन्होंने कहा कि रोज जो 6000 फुट स्थापना कहते हैं शांता जी, जो रोज करते हैं, तो रोज उन्होंने ऐसा किया। और आजकल हमारे शांता जी तो 9000 रोज रखते हैं ना।
0: ओ शांता जी थोड़ा ज्यादा करें,
1: थोड़ा से ज्यादा, पर ये जवान हैं और ज्यादा तादाद में कर सकते हैं। पर राजेंद्र जी क्यों ना हम एक अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर कार्यक्रम में हम सब और आगे जो पुराने बातें हैं, और फिर हमारा विषय जो आज है, विषय अयोध्या के कनक भवन, उस ओर छलांग लगाएंगे।
0: जरूर बढ़ते हैं, एक सुंदर सा जो गाना है, मुहे रंग दो लाल।

0: मोहे रंग दो लाल, बहुत ही बड़ा बढ़िया जो मनमोहक गाना रहा, बड़ा अच्छा, सब लोगों को अच्छा लगा होगा। बात चल रही थी समय जो पुराना था, खिलौनों की कमी थी फिर भी मोहल्ले भर के बच्चों के साथ खेला करते थे। आज खिलौनों की भरमार है पर बच्चे मोबाइल की जकड़ में बंद हैं। समय जो कम था, समय जो सभ्य हो गया है।
1: ऐसे सुरीनाम में हम बताए ना, सुरीनाम में तो जैसे कहते हैं ना, कैसे कहते हैं, स्मेरोली के ब्लैक, पहले स्मेरोली ब्लैक में आते थे।
2: हाँ
1: संजय जी, तो हमने देखे थे कैसे हमारे भाई, मेरे भाई लोग उसको गड़गाड़ी बना रहे थे, उन समय हम गड़गाड़ी बना
2: रहे होते थे ना।
0: हाँ टायर होते थे, एक और ऐसे बांध,
1: हाँ लकड़ी के साथ है और टायर उसमें बांध देते रसरी, ताकि उसको लिंक्स या रैक्स घुमा कर और चला सकते थे। ऐसे ऐसे हम लोग बना कर और उससे खेलते थे।
3: भारत में भी ऐसे था।
1: हाँ तो
3: टायर होता है बांध, हाँ उससे खेलते लकड़ी करके,
1: एमर के ढपना ऐसे जब मिल जाए भी तो उसको बनाकर स्टीर बनाकर और आंगन भर में ऐसे घूमते थे गाड़ी की तरह।
2: राजेंद्र जी आपको शायद नहीं पता होगा, हम लोग बच्चे जब थे ना
0: जी,
2: तो सभी के घर से गाय होते थे ना, गाय बकरी होते थे, पर गाय बकरी भानने से पहले हम लोग बोतल गटाई में भान के भानते थे, चलाते थे ना।
0: हाँ।
2: तो वो भी समय था,
1: लुका चोरी हम खेल रहे थे भी, एलक खेलते थे, जूल खेलते थे उन समय पर। पर आज के बच्चे से तो जो पूछ तो वो क्या है उसको पता नहीं है।
4: भारत में भी बच्चे जाते गुल्ली डंडा, पिट्ठू गरम, लुका छुपी, सब ऐसे खेल खेलते थे। और लड़के ज्यादा कंचे,
0: वो तो आज भी रहता है ना।
4: हाँ जी कंचे हैं, लेकिन अब थोड़े दूसरे तरीके से खेलते हैं, पहले दूसरे तरीके से खेलते, गुल्ली डंडा। तो गुल्ली डंडा कहाँ खेलता है, कोई नहीं खेलता।
0: खेलते हैं, मैं तभी भी खेलता हूँ गाँव में जब जाता।
4: हाँ खाली गाँव में रह गए, बाकी शहरों में नहीं, शहरों में तो आज कल बच्चे नहीं खेलते।
0: समय पुराना था, गली मोहल्ले के पशुओं तक को रोटी दी जाती थी, आज पड़ोसी के बच्चे भी भूखे सो जाते हैं। समय जो सभ्य हो गया है। समय पुराना था, पड़ोसी के घर में आए रिश्तेदार का भी पूरा परिचय पूछ लेते थे, आज तो पड़ोसी का नाम तक नहीं जानते। समय जो सभ्य हो गया है, वो आ रहे आधुनिक समय। क्यों ना हम एक सुंदर सा, संजय जी आप क्या बोलते हो समय के बारे में?
2: मैं तो बस यही कहना चाहूंगा राजेंद्र जी की समय के अंतर्गत क्यों ना एक सुंदर सा पिटारा शांता के जो लेकर आए हैं आज, काफी भारी है।
1: संजय जी आप जिसे समय के बात करते हैं ना, समय के बात, तो हम ये समझ नहीं पाते हैं कि समय बदला या हम सब बदले।
4: समय तो वही है शांता जी, इंसान बदल गया।
1: हाँ वही मैं, मेरे दिमाग में ये हमेशा चलता है, हम सब हम हमेशा कहते कि समय बदल गए। समय तो वही है, क्योंकि सूर्य अभी वहीं से उगता है, चंद्रमा वहीं से उगता है, अभी तो वही समय पे सुबह होते हैं, वही समय शाम होते हैं, तो समय कैसे बदला। हाँ
0: शांता जी ने याद दिला दिया कि सूर्य वहीं से उगता है, चंद्र भी वहीं से उगता है, तो इसी उपलक्ष्य में एक गाना भी है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, सूरज बदला चांद ना बदला, लेकिन बदल गया इंसान। तो इंसान बदला है, सूरज चांद तो अपनी जगह है और प्रकृति सब वैसी है, केवल मनुष्य जो इंसान है वही बदला है।
2: तो राजेंद्र जी क्यों ना हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ते हैं, और फिर गीत के बाद अभी हम सब छलांग लगाने वाले हैं कि अयोध्या की कनक भवन।
0: जी जरूर,
2: ऐसा भवन ओ, उनके बारे में काफी जानकारी यहाँ हमारे विशेषज्ञ लोग खोज करके रखे हुए हैं, तो अभी हम सभी सुनने वालों को लिए वो जरूर रखने वाले हैं। पहले एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।
0: जरूर।

0: जीना यहाँ मरना यहाँ। फिर तो बबली जी, आप कौन सा संदेश हमारे लिए रखे?
1: संदेश का विषय है परबंध।
0: तो परबंध बस सुना दीजिए हम सबको। परबंध के मतलब बोले तो
1: इंतजाम।
0: इंतजाम,
1: हाँ जी।
0: तो इंतजाम की कितने चीजों का हो सकता है ना राजेंद्र जी? प्रबंध जो हो गया तो आपको क्या और सुनाना है?
2: खरेखर
0: तो प्रबंध, शांता जी कहते हैं कि प्रबंध यानी कि आलस इशार खरेखर, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब प्रबंध हो गया है तो बबली जी को सुनाना क्या है?
1: हाँ जी, तो अब मैं सुनाती हूँ। एक व्यक्ति हमेशा ईश्वर के नाम का जाप किया करता था। धीरे धीरे वह काफ़ी बुजुर्ग हो चला था, इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच स्नान आदि के लिए जाना होता था, वह अपने बेटों को आवाज़ लगाता था और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी कभी कभी आते, और देर रात तो आते ही नहीं थे।
0: देर रात तो आते नहीं थे। तो राजेंद्र जी, क्यों ना हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर ये संदेश जो बबली जी हम सबको सुनाने वाले हैं आगे की ओर बढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में हमारा विषय जो है आज का विषय अयोध्या के कनक भवन, उस ओर छलांग लगाने वाले हैं। पर बबली जी, अगर आपका कोई इतराज ना हो तो हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ेंगे, फिर ये कार्यक्रम ये संदेश को आगे बढ़ाएंगे।
1: हाँ जी, जरूर, पहले गीत सुन लेते हैं।
2: जरूर।

0: राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई हरी क्या पाला, शोर मचाऊं गली गली। कहने का भाव ये है कि जो राम नाम के हीरे मोती हैं उसको भजना चाहिए, उसका भजन करना चाहिए, और गली गली में आप कहीं भी कर सकते हो। तो हरी का प्याला जो है एकदम अमृत समान है, अगर आप चाहे तो उसको ले सकते हो, न चाहे तो आपके ऊपर। बबली जी, आप कुछ सुंदर सा उसकी तरफ बढ़ रहे थे।
1: हाँ जी।
0: तो जरूर आपका स्वागत।
1: इस दौरान वे कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे।
2: तो बबली जी, थोड़ा से फिर रिफ्रेश कि किसके बारे में बात हो रहा है, कि एक एक एक एक पिता जो अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं ना।
1: हाँ जी।
2: पिता जो अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, और पिता के कभी काल के और मुसीबत आते हैं तो बच्चे उन्हें और सहयोग देते हैं, पर कभी कभी गोहराते रहते हैं पिता और बच्चे, जो सहयोग में थोड़ा से गड़बड़ हो जाता है ना।
1: हाँ जी। शुरू शुरू में बच्चे आते हैं रात को, और जब धीरे धीरे रात में बच्चों ने आना बंद कर दिया,
2: ऐसा
1: जब पिता आवाज लगाते हैं। हाँ जी।
2: तो आगे संदेश क्या है बबली जी?
1: अब और ज्यादा बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा था।
2: ऐसा होता है राजेंद्र जी, बुढ़ापा होने से कम दिखते?
0: हाँ, धीरे धीरे नजर कम हो जाता है, पैर घुटना में चलना कम हो जाता है,
2: ऐसा
0: एक
2: होता।
0: उम्र के अनुसार सब रहता है।
2: तो आगे ले चले बबली जी।
1: हाँ जी। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई, तुरंत एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त करवा कर बिस्तर पर लेटा जाता है। अब यह रोज का नियम हो गया। एक रात को उनको
2: हुआ क्या, तो जो लड़का आ रहा है उनके मदद करते हैं, ऐसा वो उसी का लड़का था?
1: हाँ जी, ये तो अभी आगे पता चलेगा।
2: अच्छा।
1: एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो बेटों को रात में कई बार आवाज़ लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन यह तो आवाज़ लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और एक कोमल स्पर्श से सब निवृत्त करवा देता है। एक रात वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि सच बता, तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं हैं।
2: यानी कि वो बूढ़ा आदमी ने, वो जो व्यक्ति उनका मदद करते थे, वो लड़का के रूप में जो बिल्कुल उसकी लड़का की तरह, और वो उनके हाथ पकड़ के पूछते हैं कि ऐसा तो मेरा बेटा नहीं है, पर आप कौन हो?
1: हाँ जी,
2: ये प्रश्न रखते
1: हैं। हाँ जी, प्रश्न करते हैं। तो फिर अब वो उत्तर देंगे। अभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्त के कार्य कर रहे हैं, यदि मुझे इतने प्रसन्न हो तो मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रबंध हैं, आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरे नाम का जाप करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रबंध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं काट रहा हूँ। व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे प्रबंध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रबंध नहीं काट सकती है? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, यह अवश्य आपके प्रबंध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको यह प्रबंध भुगतने फिर से आना होगा, यही कर्म नियम है। इसलिए आपके प्रबंध मैं स्वयं अपने हाथों से कटवा कर इस जन्म मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं, प्रबंध तीन तरह के होते हैं, मंद, तीव्र तथा तीव्रतम। मंद प्रबंध मेरा नाम जपने से कट जाते हैं, तीव्र प्रबंध किसी सच्चे संत का संग करके श्रद्धा विश्वास से मेरा नाम जपने पर कट जाते हैं, पर तीव्रतम प्रबंध भुगतने ही पड़ते हैं। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं उनके प्रबंधों को मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। प्रबंध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुबीर।
2: तो ये सुंदर संदेश जो बबली जी ने अपने ओर से रखे, और राजेंद्र जी घड़ी देख रहा हूँ कि हमें उस ओर बढ़ना है जहाँ की हमारे परप्लेक्सिंग है, हम सबको कहते हैं कि न्यूज और कमर्शियल्स।
0: जरूर जरूर, बहुत ही सुंदर जो गाना, तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही नगमे सब लुटाता रहूं। तो संजय जी आप क्या कहते हैं, साथ देने का वादा करें तो?
3: तो मैं उस पर यह कहना चाहती हूँ कि एक बार जो मैंने शुरुआत में कही तो वो मैं फिर एक बार कहती हूँ कि कर्म अच्छा हो तो वही धर्म बन जाता है, ऐसा इंसान ईश्वर का भक्त बन जाता है। तो ब्रेक से पहले तो बबली जी ने कहा कि जो आप भुगत रहे हो वो आपका प्रारब्ध है। तो हम भी आज के दौर में भी देखें तो जो हमारे जो हम पिछले कर्म कर चुके हैं वो आज में हम भोगते हैं, और ऐसे ज्ञान पाते ही जो हम उसमें ये सुधार कर सकते हैं तो भी हम अपना सुधार कर ले, ताकि हमारे ऊपर जो विपत पड़े तो यही समझे कि इससे हम भोग ले, भोगने के बाद जो हम मर जाए तो उसके बाद जो हमारा जन्म हो ये पर्वत ये बात जो अपने आपने उसके अनुसार में बात करी तो जीवन शायद अलग से होगा,
1: वो चीज़ दोबारा नहीं भुगतनी पड़ेगी,
3: वो भी दोबारा नहीं भुगतनी पड़ेगी। अगर हम ऐसे सुनते हैं ना, ऐसे ऐसा प्रवचन ऐसे ऐसे बातें जो हम सुनते हैं तो हमको भी हिम्मत मिलता है कि हमारे ऊपर जो परेशानी आते हैं तो ये एक कारण होगा, और इससे जो हम घबरा जाए तो हमारा जो राह है जो भटक जाएगा, हम खुद भटक जाएंगे। और ऐसे ऐसे बात जो सुनकर हम अपने को एक विश्वास ठान ले कि ना ये अंधेरा है, कुछ समय के लिए वो जरूर से थम जाएगा, उजाला आएगा, ऐसे हम देख रहे हैं।
2: शांता जी अपने ओर से जो सुंदर संदेश हम सबको सुनाए, जरूर दोस्तों इसमें मैं ये जरूर जोड़ देना चाहता हूँ कि उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा हिस्सा रोशन किया जा सकता है। हमारे साथ राजेंद्र जी जो एक वृतांत दिल्ली शहर में हुआ था और उसे बांटने वाले हैं, तो राजेंद्र जी क्यों ना हमें वो वृतांत की ओर आप ले चले।
0: वृतांत का जो शीर्षक है वो है अपना काम खुद करें आत्मनिर्भर बने। बात एक समय की है जब दिल्ली से गोवा की उड़ान एक सज्जन जा रहे थे, साथ में उनकी पत्नी भी थी। सज्जन की उम्र लगभग 80 वर्ष की रही होगी, मैंने पूछा नहीं, लेकिन उनकी पत्नी भी 75 के पार ही होगी। पत्नी खिड़की की ओर बैठी थी, सज्जन बीच में और मैं सबसे किनारे वाली सीट पर था। प्लेन के उड़ान भरने के साथ ही पत्नी ने खाने का कुछ सामान निकाला और पति की ओर किया। पति कांपते हाथों से धीरे धीरे खाने लगे। फिर फ्लाइट में जब भोजन सर्व हुआ तो उन लोगों ने राजमा चावल का ऑर्डर किया। दोनों आराम से राजमा चावल खा रहे थे।
2: राजेंद्र जी ये एक विशेष बात हो जाता है ना
0: जी,
2: कि भारत का जब आप जहाज यानी कि प्लेन से सफर करें तो ज्यादा तादाद में 1.5 घंटा में पहुंचा देते हैं ना।
0: हाँ 1.5-2 घंटा,
2: पर उसमें ये भारत के एक ऐसा पॉलिसी है कि चाहे जोन भी एजेंसी रहे वो 1.5 घंटा में आपको गर्म खाना भी खिला देते।
0: हाँ खिला देते,
2: यहाँ पर तो चाय भी नहीं पूछते जो
0: डोमेस्टिक
2: किया था जो यहाँ से यूरोप के देश में
0: अलग अलग रकम रहा हर जगह का काम धाम। तो राजमा चावल जब वो खा रहे थे तो कोल्ड ड्रिंक में भी उन सज्जन ने कोई जूस लिया था। खाना खाने के बाद जब उन्होंने जूस की बोतल का ढक्कन खोलना शुरू किया तो ढक्कन उनसे खुला ही नहीं। सज्जन कांपते हाथों से उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे और मैं लगातार उन्हें देख रहा था। मुझे लगा कि ढक्कन खोलने में उन्हें दिक्कत हो रही होगी, तो शिष्टाचार बस मैंने कहा लाइए मैं खोल देता हूँ। सज्जन ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और बोले, बेटा जी ढक्कन तो मुझे ही खोलना होगा। मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन प्रश्न भरी निगाहों से उन्हें देखता रहा। ये सज्जन ने कहा, बेटा जी आज तो आप खोल देंगे, लेकिन अगली बार कौन खोलेगा, इसलिए मुझे खुद खोलना आना चाहिए। पत्नी भी पति की ओर देख रही थी, जूस की बोतल का ढक्कन उनसे अभी भी नहीं खुला, लेकिन सज्जन उसे खोलने की कोशिश में लगे रहे और बहुत कोशिशों के बाद अंततः उन्होंने ढक्कन खोल ही दिया।